0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल ला रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, वीकेंड में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, गुरुग्राम में पिछले दो दिनों में हुई 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। गुजरात के सापुतारा में मॉनसून फेस्टिवल मेघ मल्हार का शुभारंभ हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने बांधा समा, 29 अगस्त तक चलेगा समारोह। महाराष्ट्र के बीट मिलावटखोरों के खिलाफ FDA को मिली बड़ी कामयाबी, 1,19,000 किलो नकली खाद्य तेल किया जब्त, करीब 2 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर की वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए चयन, आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के चलते मिला मौका, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाएगी वान्या। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।

0: राधा रानी ने एक बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ,
1: जाओ।
0: तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना, तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे ना, तो राधा जी दिन भर रोती,
1: आहा,
0: गोपियां वृंदावन के गली में पूरे दिन बैठी रहती, आज आएंगे, आज आएंगे। शाम हो जाती जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते, तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर आएंगे। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो, 100 साल किसी के याद में टिके रहना,
1: ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो।
0: एक बार हमारी श्री राधा रानी वृंदावन में रो रही थी यमुना जी के किनारे, रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया, पत्तल के दोने में एक माला रखी और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी में बहा दिया। अच्छा दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना का मतलब हे कृष्ण हम और तुम दो ना, दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना में ही क्यों रखा माला को, मानो श्री राधा जी कहना चाहती कन्हैया हम तुम दो नहीं हैं, दो ना हम एक हैं, एको हो। दोना को छोड़ा, इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए,
1: आहा,
0: यमुना जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ी, गले में पड़ी। भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो इतने वीर और आपकी आंखों में आंसू, कन्हैया आप पूरे दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या कहना। ठाकुर जी कहते

परी आंखों में आंसू कैसे? ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू। किनके आंसू? हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं। आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमय बात छिपी। भगवान कहते ये आंसू हमारे नहीं है, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगनाएं भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं है। ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी रो रहे, और यहां पर ये लाइन सिद्ध हो गई।

कहते महाराज, रो तो आप रहे हो, आप कह रहे कि आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं, उद्धव ब्रजांगनाओं में और हम में कोई भेद नहीं है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि भक्त में और भगवान में पर कोई भेद नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते,

सकता है। भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया, भगवान को वही जान सकता जो भगवान का प्यारा हो, जिसे भगवान जनाएंगे वो भगवान को जान सकता, लेकिन एक शर्त और है। क्या? माई बाप जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते ब्रजांगनाओ उद्धव, गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं है, ना ना ना, हम दोनों एक हैं। उद्धव कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं, ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम रेम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ। और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना ना ना ना, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी बात। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं विद्या ददाति विनयम्। हमने रामायण में और हनुमान जी में एक बात देखी, पूछो क्या? हनुमान जी हैं विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान इसलिए है कि जो विद्वान रहेगा उसे अभिमान आएगा, लेकिन जो विद्यावान रहेगा उसे अभिमान नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्वाभिमान आएगा, अपने गुरु का स्वाभिमान आएगा। तो रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी

किया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव ज्ञानी को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा है। क्यों? क्योंकि विद्वान आदमी को अभिमान होता है, अरे हम ऐसे, हमें पता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती गुरु कृपा से उसे अभिमान नहीं होता, उसे अपने गुरु पर स्वाभिमान होता है। हनुमान जी तो

0: महाराज, हम वृंदावन जाकर ना ब्रजांगनाओं को समझाएंगे, आप चिंता मत करो।
1: भगवान कृष्ण बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बोले, हाँ तुम अगर जा रहे हो ना तो कपड़े हमारे पहन जाओ, रथ हमारा ले जाओ, मोर पंख लगा जाओ।
0: क्यों? उद्धव, गोपियां और ब्रजांगनाएं और राधा रानी सिवा हमारे किसी दूसरे पुरुष को देखती ही नहीं है, और हमारे कपड़े होंगे, हमारा रथ होगा, हमारा मोर मुकुट होगा, तो हमें मानकर वो देखने आएंगी, तो कम से कम तुम्हारी वार्तालाप तो हो जाएगी, इतना प्रेम है गोपियों का। मीरा जब वृंदावन आई ना, वृंदावन, और पहली बार जब मीरा वृंदावन आई तो यहां पर श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत नाम सुना मीरा ने। वल्लभाचार्य परंपरा के कोई आचार्य के बारे में मीरा ने सुना, तो शाम के समय मीरा वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गई, तो दरवाजे पर शिष्यों ने रोक दिया कि प्रवेश नहीं होगा। मीरा ने कहा क्यों? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। अच्छा, मीरा की बात सुनकर के वल्लभाचार्य जी को मिलना पड़ा। पता है क्या कहा मीरा ने? मीरा ने कहा महाराज, आप अपने गुरुजी से इतना भर कह दीजिएगा, और मैं तुमसे भी कहती हूं कि मैंने तो सुना था ब्रज में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण कन्हैया, बाकी तो ब्रज में सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? हा हा, इतनी बात सुनते ही वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के वल्लभाचार्य जी ने मीरा को मिले। भैया मेरे माई बाप, गोपियां सिवा श्री कृष्ण के किसी को स्वीकार नहीं करते। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप, सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुकपीक वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे महाराज जी? कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों करें? ना ना ना ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की नटखटपन में भी कभी अपने हनुमान जी की चंचलता दिखाई पड़ती है। इसलिए माई बाप, सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, आहा, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पीह कहाँ है ये तो बतलाओ। आहा, वृंदावन गए। एक बात बोले,

उद्धव जब श्री राधा रानी जी के पास आए, गोपियों को देखा तो कांटों में उद्धव के कपड़े उलझने लगे, उलझ कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर आए, तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाएगा। हुआ भी वही, भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव, दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण सर्वत्र हैं, ऐसा ज्ञान दिया उद्धव ने। राधा जी बोली हमें तो भ्रांति है, उद्धव जी बोले नहीं नहीं कोई भ्रांति नहीं। राधा जी बोली कहीं आपको तो भ्रांति नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। उद्धव जी बोले हमें ज्ञान पर भरोसा है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ही जीवात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। राधा जी बोली तब तो जय हो। बोले क्यों? तो श्री राधा जी बोली जो है अद्वैत के कायल, फिर क्यों द्वैत लेते हो? जो है अद्वैत के कायल फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला ब्रह्म होकर तुम दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देते हो?

0: है शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या है नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: अयोध्या में रामलला के झूलन उत्सव की तैयारियां, 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा, अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल ला रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, वीकेंड में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, गुरुग्राम में पिछले 2 में हुई 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। महाराष्ट्र के बीड में मिलावटखोरों के खिलाफ एफडीए को बड़ी कामयाबी, हाथ लगी 1,19,000 किलो नकली खाद्य तेल, जब्त किया गया करीब 2 करोड़ रुपए है कीमत। राजस्थान के धौलपुर की वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए चयन हुआ, आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के चलते मौका मिला, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाएंगी वान्या।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ देखने के लिए उमड़े लोग, एक कांवड़ करीब 2,70,000 जबकि दूसरी कांवड़ सजाने में लगे 50,000 रुपए के नोट। कांवड़ की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे यूपी पुलिस के जवान हरिद्वार से चलकर हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी पहुंचे बाबा भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी कांवड़ियों पर बरसाए फूल, बाबा भोले को बांटी खाने पीने की सामग्री। बुरके में कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची मुस्लिम महिला, 11 अगस्त को पति अमन त्यागी के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवमय हुआ मुजफ्फरनगर, डीएम उमेश मिश्रा के साथ एसएसपी संजय कुमार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा सुविधा के पुख्ता इंतजाम, डीएम एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि से पहले उमड़ा कांवड़ियों का हुजूम, बम भोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुजफ्फरनगर में पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन मुस्तैद, भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर। बांदा चित्रकूट रेंज के डीआईजी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, शिव भक्तों की सहूलियत के लिए झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाई गुलाब की पंखुड़ियां। सहारनपुर में आसमान से बरसे फूल, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, कांवड़ मार्ग पर दिखा भक्तिमय नजारा। टिहरी गढ़वाल में कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा यात्रा मार्ग। कांवड़ियों के बीच पहुंची एसएसपी श्वेता चौबे, टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मार्गों का किया निरीक्षण, कांवड़ियों के लिए रूट किया फ्री। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च हुआ, घर बैठे करें बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन, ऐप से भीड़ से लेकर पार्किंग तक मिलेगी जानकारी। भगवा रंग में रंगा धर्मनगरी हरिद्वार, हर की पैड़ी पर कांवड़ियों का सैलाब, गंगाजल लेने के लिए उमड़ी भारी भीड़। हर तरफ नजर आ रहे कांवड़ी और डांक कांवड़ के वाहन, हरिद्वार की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला। ड्रोन तस्वीरों में दिखा कांवड़ मेले का भव्य और दिव्य नजारा, बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा हरिद्वार। डीजे पर भोले के भजन पर झूमे कांवड़िए, बैरागी कैंप से चमगादड़ टापू तक दिखा अद्भुत नजारा। नाचते गाते शिव भक्तों से गुलजार हुआ हरिद्वार, गंगाजल लेकर तेजी से रवाना हो रहे डांक कांवड़िए। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ, गंगा के तेज बहाव में फंसे सभी शिव भक्तों का किया सफल रेस्क्यू। हरिद्वार में एसडीआरएफ की मुस्तैदी से टली बड़ी अनहोनी, अलग अलग घाटों से 18 श्रद्धालुओं को बचाया गया। कांवड़ यात्रा में एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट, हरिद्वार और ऋषिकेश के संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ जवानों की तैनाती। 74 साल की उम्र में आस्था में कोई कमी नहीं देखने को मिली, दोनों घुटनों की परेशानी के बावजूद देवघर रवाना हुई शिव भक्त कृष्णा बम। कृष्णा बम लगातार करती आ रही हैं जलाभिषेक, 42 साल से जारी है बाबा बैद्यनाथ की भक्ति। बिजनौर में अनोखी कांवड़ देखने को मिली, दिखा देशभक्ति का अनूठा रंग, ब्रह्मोस मिसाइल और 100 मीटर तिरंगा, कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 400 से ज्यादा शिव भक्त ब्रह्मोस कांवड़ लेकर निकले, ब्रह्मोस मिसाइल कांवड़ के साथ तिरंगा भी लहराया। 100 मीटर लंबी तिरंगा कांवड़, 25 से ज्यादा शिव भक्त लेकर चल रहे तिरंगा कांवड़, कांवड़ यात्रा में मोदी योगी के कटआउट। देशभक्ति और भक्ति के रंग में रंगी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से संभल के लिए लेकर निकले शिव भक्त बोल बम की गूंज। गाजियाबाद में बहू का अनोखा संकल्प देखने को मिला, हरिद्वार से दिल्ली तक बुजुर्ग सास को कांवड़ में लेकर चल रही बहू काजल। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ। कांवड़ियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। दिल्ली नोएडा रोड किया गया वन वे। कांवड़ियों को रोड पार करा रहे सुरक्षा कर्मी। अगले सोमवार मंगलवार तक रहेगा डायवर्जन। कालिंदी कुंज पर कांवड़ शिविर तैयार। सीतामढ़ी पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। मां जानकी की प्राकट्य स्थली पर किया पूजा। तो वहीं नए मंडप में मां सीता और राम लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित। पुराने मंदिर से नूतन मंडप में हुआ विग्रह स्थानांतरण। 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ की नई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। नए मिल्क प्लांट का लोकार्पण किया। मत्स्य ब्रोड बैंक की भी शुरुआत। सावन के महीने में शिव भक्ति के रंग में नजर आ रही रामनगरी अयोध्या। सरयू घाट से लेकर रामपद तक हर हर महादेव की जयकार। पवित्र सरयू नदी में स्नान के बाद पवित्र जल लेकर रवाना हो रहे कांवड़ियों के जत्थे। डीजे की धुन पर आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन का भी सिलसिला जारी। सावन की शिवरात्रि के लिए आसपास के जिलों से पहुंच रहे हैं भोले के भक्त। रामनगरी अयोध्या में आगामी झूलनोत्सव की जोरदार तैयारी। समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की बैठक। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी कि 15 अगस्त की शाम कोबेल टीला जाएंगे रामलला। अपाल की यात्रा के बाद तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे भगवान राम। महाराष्ट्र के अकोला में स्वतंत्रता दिवस की जोरदार तैयारी। 15 अगस्त से पहले की तिरंगे की रोशनी से जगमगाया 100 फीट ऊंचा टावर। यूपी के गोंडा रेलवे स्टेशन पर देवदूत बना जीआरपी जवान। चलती ट्रेन से फिसली महिला की जान बचाई। तमिलनाडु के तिरुवलनमलाई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रमण महर्षि आश्रम का दौरा किया। विधि विधान से पूजा अर्चना की। गृहमंत्री ने श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। देश में सुख समृद्धि की कामना की। नवी मुंबई में बनेगा मेघालय हाउस। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भवन का शिलान्यास किया। टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च के लिए बेंगलुरु में लगा सितारों का जमावड़ा। नयन तारा कियारा आडवाणी हुमा कुरेशी तारा सुतारिया के साथ यश भी मौजूद। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों का जयपुर में सम्मान। अरुंधति चौधरी यशवीर सिंह मोना अग्रवाल और संध्या बिश्नोई के शानदार प्रदर्शन को सराहा। राजस्थान के धौलपुर की वान्या बोहरा ने रचा इतिहास। एशियन गेम्स के लिए वान्या का आइस स्केटिंग में हुआ चयन। वान्या की उपलब्धि से धौलपुर के खेल प्रेमियों के खिले चेहरे। रोलर स्केटिंग में नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं वान्या। अब अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर अपना हुनर दिखाएंगे वान्या। एशियन गेम्स में चयन की जानकारी मिलते ही लगा बधाइयों का तांता। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हरियाली तीज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता भी शिरकत करती हुई नजर। सहारनपुर में भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनूठे रंग देखने को मिले। पारंपरिक वेशभूषा के साथ लोकगीतों की धुन पर थिरके कदम। महाराष्ट्र के बीड में एफडीए की बड़ी कार्रवाई। करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1,19,000 किलोग्राम नकली खाद्य तेल जब्त किया गया। पंजाब के मोगा में 2 मजदूरों का सफल रेस्क्यू। सीवरेज पाइपलाइन डालने के दौरान हुआ था हादसा। स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाई सफलता। गुजरात के सापुतारा में मॉनसून फेस्टिवल का आगाज हुआ। मेघ मल्हार 2026 से सजा सापुतारा। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने शुभारंभ किया। बारिश के बीच रंगारंग कार्यक्रमों ने बढ़ाई रौनक। 300 से ज्यादा कलाकारों ने बांधा समा। 12 राज्यों के कलाकारों ने पेश की सांस्कृतिक झांकियां। मॉनसून फेस्टिवल में उमड़े हजारों पर्यटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। सापुतारा में दिखी देश भर की संस्कृति। व्हाइट फेदर सर्कल से निकली भव्य सांस्कृतिक रैली, सापुतारा को स्वच्छ रखने की अपील, बोले हर्ष संघ भी स्वच्छता से बढ़ेगा पर्यटन और रोजगार। सापुतारा में पर्यटन उत्सव की रंगीन शुरुआत हुई, आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मुहा मन, 29 अगस्त तक चलेगा मेघ मल्हार 2026। चाइना में घुड़सवारी के साथ शुरू हुआ मंगोलियाई नादाम फेस्टिवल, रंग बिरंगी मंगोलियाई पोशाकों ने खींचा सभी का ध्यान। घोड़ों पर सवार होकर फेस्टिवल पे पहुंचे लोग, लॉन्ग सॉन्ग से गूंजा फेस्टिवल स्थल, वाद्य यंत्र दे टोबुशर में धुन पर झूमे लोग। मंगोलियाई नृत्य ने लूटी महफिल, तो वहीं फेटियन डांस समेत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की गई। उत्सव में संस्कृति और खेल का अद्भुत संगम देखने को मिला। चाइना के हुनान में मियाओ डोंग संस्कृति का रंग देखने को मिला, पेड़ों की छांव में गूंजे पारंपरिक गीत, 48 गांवों को जोड़ा गया। ड्रम टावर के सामने सजी लोक संस्कृति की महफिल, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। शंघाई की टेलरिंग सेंटर बना विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद, कस्टम कपड़े बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं दुनिया भर से ग्राहक, नाप देकर तैयार हो रहे हैं परफेक्ट फिट कपड़े। साउथ बर्न में कस्टम टेलरिंग का क्रेज देखने को मिला, 95% दुकानें अब दे रही हैं टेलर मेड सर्विस, ड्रैगन एंड फ्लावर पैटर्न वाले सिल्क सूट पर्यटकों को पसंद आ रहे हैं। 200 से ज्यादा सप्लायर और टेलर एक जगह पर इकट्ठा हुए, ग्राहकों को कपड़ों और डिजाइन की मिल रही है बड़ी रेंज। जुलाई में चाइना की ऑफलाइन खरीदारी में सुधार आया, ऑफलाइन खर्च में सालाना 2.2% की बढ़ोतरी। घरेलू उपकरणों की बिक्री में 8.5% का उछाल आया, स्मार्ट और कूलिंग उपकरणों की मांग बढ़ी, शॉपिंग मॉल में बढ़ी ग्राहकों की भीड़। चाइना के चेंगदू में दो बच्चों की मां ने पेश की अनूठी मिसाल, सफाई कर्मी से यूनिवर्सिटी छात्रा बनी 33 वर्षीय लिया। कैंपस में सफाई करते करते आया पढ़ने का जुनून, ली जिया की कड़ी मेहनत लाई रंग। नौकरी के साथ पढ़ाई कर यूनिवर्सिटी में पाया दाखिला, ली जिया ने परिवार संभालते हुए पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के सपने को पूरा करने के लिए ली जिया ने म्यूजिक का शौक छोड़ा, संगीत सुनने के समय सुनने लगी लेक्चर। चाइना के सिचुआन में ये टॉर्च फेस्टिवल के दौरान दो भेड़ों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, रिंग में सींग भिड़ाते हुए नजर आए भेड़। चाइना में एआई खिलौनों का जलवा देखने को मिला, ग्वांगडोंग प्रांत में एनिमेशन एक्सपो में एआई प्लस टॉयज ने खींचा सभी का ध्यान। दुनिया भर में 2200 से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स शामिल, चाइना के एआई टॉयज की विदेशों में डिमांड बढ़ी। मैस्कॉट मेचा फिगर्स और बड़े आईपी इंस्टॉलेशन बने आकर्षण का केंद्र, चाइना के खिलौना उद्योग को मिला ग्लोबल बाजार। यूरोप अमेरिका समेत कई देशों में हो रहा है निर्यात, विदेशी खरीदारों को पसंद आ रहे हैं अनोखे चाइनीज डिजाइन। एआई से खिलौनों की दुनिया हुई स्मार्ट, नई तकनीक और
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: क्या है शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या है नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को
2: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक क्या होता है, इसको करने के नियम क्या हैं और इससे लाभ किस तरह के होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है। किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है।

0: इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है, अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है, तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है। देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ होते हैं। ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर शिव जी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं। ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं। ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता। देखिए, शिवलिंग पर आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वो अभिषेक नहीं होता। शिवलिंग पर जब मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तब उसको अभिषेक कहते हैं। आप अगर मंत्रों के साथ जल अर्पित करेंगे तो उसको जलाभिषेक कहा जाएगा। बिना मंत्रों के वस्तुएं अर्पित करने को अभिषेक नहीं कहते। अगर आपकी संतान बीमार रहती हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो क्या करेंगे? महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। रोज सुबह और शाम अपनी संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने संतान के नाम से, बच्चे के नाम से सार्वजनिक स्थान पर 1, 2, 3, 4 जितना भी कर सकें बरगद के वृक्ष लगवा दें। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: अयोध्या में रामलला के झूलनोत्सव की तैयारियां, 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा, अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल ला रहे कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, वीकेंड में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, गुरुग्राम में पिछले दो दिनों में हुई 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। महाराष्ट्र के बीड में मिलावटखोरों के खिलाफ FDA को बड़ी कामयाबी मिली, 119,000 किलो नकली खाद्य तेल जब्त किया, करीब 2 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। राजस्थान के धौलपुर की वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए चयन हुआ, आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के चलते मौका मिला, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाएंगी वान्या।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर
5: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: नमस्कार।
5: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। जी हाँ, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में अक्सर लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो इसका महत्व क्या होता है और कौन से माह में हमें रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: देखिए, शिवलिंग पर आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वो अभिषेक नहीं होता। शिवलिंग पर जब मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तब उसको अभिषेक कहते हैं। आप अगर मंत्रों के साथ जल अर्पित करेंगे तो उसको जलाभिषेक कहा जाएगा, बिना मंत्रों के वस्तुएं अर्पित करने को अभिषेक नहीं कहते।
5: और चलिए अब देख लेते हैं 9 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:04 तक, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: और चलिए अब जान लेते हैं कि ये रुद्राभिषेक होता क्या है और क्या है इसकी महिमा।
0: जी देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं, तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए, तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है।
5: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार के शिवलिंग पर हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए।
0: देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है। किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए, मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। अलग अलग तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है। अलग अलग तरह के शिवलिंगों पर अलग अलग तरीके से पदार्थ के रुद्राभिषेक होता है और उसके अलग अलग फल जीवन में प्राप्त होते हैं।
5: और चलिए अब जान लेते हैं किस पदार्थ से अभिषेक करने से हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है।
0: रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5: और आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, पारिवारिक उलझने परेशान करेंगी, शांति और धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होगा, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न निर्मला जी ने हमें लिखा है और निर्मला जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 13 मई 2002, जन्म का समय सुबह के 11:05, जन्म स्थान है ऋषिकेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी में जाना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा है, क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलेगी? निर्मला जी, आपके बेटे की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में प्रशासन में जाने के योग दिखाई देते हैं, तो अगर आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी करे या उत्तराखंड के स्टेट पीसीएस की तैयारी करे तो उसमें आपके बेटे का सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग इनके लिए बनते हैं। इनकी एकाग्रता बेहतर हो, मन लगाकर पढ़ाई कर सकें, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और सुबह शाम इनको कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा।
5: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न गरिमा वत्स ने हमें लिखा है और गरिमा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1985, जन्म का समय दोपहर में 3:55, जन्म का स्थान है देवरिया। मेल लिखती हैं लखनऊ से। गरिमा कह रही हैं कि मेरे पति का देहांत कोरोना काल में हो गया था और मैं फिलहाल लखनऊ में रहती हूँ, मेरा एक बेटा भी है, नौकरी कर रही हूँ मैं। क्या आगे मेरा दूसरा विवाह हो सकता है? क्या मेरे दूसरे विवाह की संभावना बनती है? गरिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपका दूसरा विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, और दूसरा विवाह कुल मिला जुला के आपका सफल रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
5: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि कब रुद्राभिषेक करना उत्तम और अनुकूल होता है।
0: देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है, अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है, तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है।
5: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: और चलिए अब जान लेते हैं कि कब शिवजी का निवास मंगलकारी होता है।
0: देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ होते हैं। ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
5: और चलिए अब जानते हैं कि कब शिव जी का निवास अनिष्टकारी होता है।
0: अगर शिव जी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं, ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं, ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं, ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं, ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता।
5: और आइए जानते हैं कि कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता।
0: रुद्राभिषेक में तिथियों का विचार करना अगर कामना वाला रुद्राभिषेक है तो जरूरी है, लेकिन कब तिथियों का विचार ना करें? शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को सिद्ध पीठ में या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में शिव जी के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थान और ये समय हमेशा मंगलकारी होता है। सामान्यतः अगर आप भक्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, अगर आप बिना किसी मनोकामना के केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, निष्काम अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसमें भी तिथियों का विचार नहीं किया जाता।
5: और चलिए अब जान लेते हैं आज के अंतिम राशि के राशिफल के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न शशिबाला जी ने हमें लिखा है और शशिबाला जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें मेल लिखती हैं। 13 जनवरी 1980 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 3:15 अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान है रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश। शशिबाला जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और लगातार समस्याओं की वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शशिबाला जी, आपके डाइजेशन में पेट से संबंधित समस्या की संभावना बनती है और आपकी दिक्कत भी पेट से जुड़ी हुई है, तो आपको अपने खान पान को ठीक रखना होगा और बेवजह की चिंता करने से बचना होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करें या सुने, निरंतर ऐसा करें, आप 1.25 महीने में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है और पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न कैलाश अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1965। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। कैलाश जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और फिलहाल मेरा बेटा भी मेरे व्यापार में शामिल हो गया है, लेकिन मेरे और मेरे बेटे का तालमेल नहीं बन पाता, जिस वजह से व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कैलाश जी कि आपको अपने बेटे के साथ मिलकर के व्यापार नहीं करना चाहिए। आप अपने बेटे को अलग से कोई बिजनेस करवा दीजिए, क्योंकि साथ में अगर व्यापार करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, आपके पुत्र को भी दिक्कत होगी। और अगर थोड़ा दूर दूर रहकर अलग अलग व्यापार करें तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की कर पाएंगे। आपके व्यापार के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर होंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रुद्राभिषेक के बारे में। तो जब हम घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो शिवलिंग पे हम क्या वस्तु है वो रखते वक्त कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण करें? अगर हमें वो मंत्र नहीं आते तो हमें क्या करना चाहिए?
0: जी देखिए, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र इतने आसान नहीं है कि कोई भी आदमी रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पढ़ के रुद्राभिषेक कर सके, जरा कठिन काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकते। भगवान शिव तो सबसे सरलता से प्रसन्न होते हैं और शास्त्र कहता है कि सिर्फ जल से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जो भी अर्पित करना है, जल है, शहद है, दूध है, दही है, पंचामृत है, आप जो भी अर्पित करना चाहें उस समय निरंतर अपने मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते जाएं और वस्तु एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित करें और उसका पूरा लाभ आपके पूरे परिवार को मिले, तब आप शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निरंतर कहते जाएं और वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय निरंतर जप करने के साथ शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपको रुद्राभिषेक का शुभ फल प्राप्त होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में चोट चपेट का ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की बाधाएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हो सकता है साल के अंत में कोई वाहन खरीदें। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या जो ग्रह कुंडली में खराब है उससे संबंधित वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो ग्रह कुंडली में खराब है सामान्यतः उसकी वस्तुओं की तरफ आदमी का आकर्षण वैसे भी नहीं होता है। फिर भी अगर खराब ग्रह की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया जाए तो नुकसान हो सकता है। संतुलित मात्रा में और सोच समझकर कोई भी चीज आप सावधानी से खा सकते हैं।
1: और अब वक्त हो गया है 9 अगस्त 2026 यानी कि रविवार के शुभ पहर को जानने का।
0: दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 9 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का मंत्र जपें ताकि उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मीन। इनको नियमित रूप से बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी।
1: और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हम एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही। पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है?
0: जी, अगर आपकी संतान बीमार रहती हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो, तो क्या करेंगे? महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। रोज सुबह और शाम अपनी संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और अपनी संतान के नाम से, बच्चे के नाम से सार्वजनिक स्थान पर 1, 2, 3, 4 जितना भी कर सकें बरगद के वृक्ष लगवा दें। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह तमाम इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बांदा और आसपास के इलाकों से श्रद्धालु कांवड़िए चित्रकूट से जल लेकर अपने क्षेत्रों में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। वही बहुत से कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना हो रहे हैं और इस दरमियान सावन में कांवड़ यात्रा के कई खास रंग देखने को मिल रहे हैं, आप भी देखिए।
2: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह शिव भक्तों में देखते ही बनता है। सनातन के रंग में रंगीन कांवड़ियों में बच्चे भी हैं और युवा भी। कोई धनुष की शक्ल वाली कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई आदि योगी भगवान शिव की झांकी के साथ आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं। शिव भक्ति में सराबोर सैकड़ों की संख्या में कांवड़े यहां से नाचते झूमते चित्रकूट जा रहे हैं। शहर में जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए। घोड़े पर सवार नारी शक्ति कांवड़ियों के इस कारवा की अगुवाई करती नजर आई। शहर के कई चौराहों पर शिव भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ। जिन बुलडोजर का इस्तेमाल तोड़फोड़ और विध्वंस में होता है उनसे यहाँ पर शहर से गुजर रहे कांवड़ियों के जुलूस पर फूल बरसाए गए। भगवान श्री राम के तपोस्थली चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का जल लेकर लौटने के बाद कांवड़िए बांदा में केन नदी के किनारे बांबेश्वर पर्वत की एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान वामदेव शिव मंदिर में जल अर्पित करेंगे।
3: कहाँ जा रहे हो कांवड़ ले? क्या करोगे वहाँ से?
2: उत्तर प्रदेश के बांदा और आसपास के इलाकों में लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए मंदाकिनी नदी का जल लेने धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। अलग अलग समूहों में कांवड़िए पवित्र जल लेकर भगवान कामनाथ के दर्शन करते हुए अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
4: लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को यह कांवड़िया तय करेंगे, जो अपने ग्रुप में लगभग ये 500 लोग है जो एक साथ होकर के यहाँ से यह चित्रकूट पहुंचे हैं और यहां से जल लेकर के बांदा के लिए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांवड़ियां हैं वह अपने कंधों पर कांवड़ लेकर के जल लेकर के पैदल जा रहे हैं और इनके घुंघरू भी पैरों पर बंधे हुए हैं, एक साथ बोल बम के नारे लगाते हुए बांदा के लिए निकल चुके हैं। और
2: यहाँ पर कांवड़ यात्रा में भगवान शिव की सुंदर पालकी भी साथ चल रही है। भगवान शिव के जयकारे और बोल बम के नारे लगाते हुए बिना थके आगे बढ़ते कांवड़िए भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, तपस्या, आत्मसंयम और समर्पण की अनूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं।
5: हम लोग फिलहाल जो हमारे ग्रुप है 9 सालों से बराबर करता चला आ रहा है।
6: तो क्या आस्था है, क्या मनोकामना है आप लोग? क्या
5: जो है मनोकामना बच जाइए, साल में एक बार सावन आता है इसीलिए हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं।
7: हम लोग मौदा से आए हुए चित्रकूट धाम आने हैं और आलोक धाम से पानी भरा हुआ है, अब हम जाएंगे मौदा के लिए। बांदा में अपना स्थान है, अभी बांदा की कमेटी है और हम लोग मौदा के, पूरी कमेटी हमारी मौदा जाएगी।
8: कहाँ जल करेंगे अर्पित उसको?
7: जल करेंगे हम मौदा में, हमीरपुर जिले में, और हमारा बड़ी देवी मंदिर है, माना हुआ मंदिर है मौदान।

0: उसमें आप समझ लेते हैं।
1: जहां एक और सावन में लाखों शिव भक्त भोले बाबा को पसंद करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस दरमियान श्रद्धा, सेवा और संस्कार की शानदार तस्वीर एटा में भी देखने को मिली। चार युवकों ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है। बेटों ने कांवड़ में एक और पिता को बैठाया और दूसरी ओर करीब 155 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की। ये यात्रा सोरों से गंगाजल भरने के बाद शुरू हुई और अब श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संदेश देती हुई आगे बढ़ रही है। लोग पिता की सेवा और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल के रूप में इनकी सराहना कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा दिखाई दे रहा है। यहां से ट्रेन पकड़कर शिव भक्ति कांवड़िये देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। बहुत से कांवड़ियों ने पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और इसके बाद अब बाबा वैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करने जा रहे हैं।
2: पूरी तरह से यहां पर जैसे ही ट्रेन आती है पूरा माहौल भगवामय हो जाता है और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग बस एक ही मन में उद्देश्य और उल्लास लिए हुए बाबा धाम की तरफ कूच करते हैं, देवघर जाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है जो ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल से ये तमाम कांवड़िये जो है वो सुल्तानगंज जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से और वहां से जल लेकर के पैदल यात्रा करेंगे देवघर तक की।
1: सावन का पावन महीना चल रहा है तो हर तरफ श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सावन के आखिरी सोमवार और उसके बाद रक्षाबंधन के अवसर पर सावन के समापन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहने वाला है। चंदौली से उदय गुप्ता, एटा से देवेश पाल सिंह, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ रिपोर्ट कुन्नी टुडे।
3: समस्तीपुर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने भक्ति, उमंग और उल्लास के रंग बिखेरे। हरे परिधानों में सजी महिलाओं ने कजरी और सावन के लोकगीतों पर नृत्य किया। मेहंदी, झूले और रंग बिरंगे छातों के साथ फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा। भोले की भक्ति, गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को भक्तिमय बना दिया।

0: सावन की हवा जब फिजाओं में घुलती है तो माहौल अपने आप भक्तिमय हो जाता है। हर तरफ हरियाली, चेहरे पर मुस्कान और दिल में भोलेनाथ की भक्ति। समस्तीपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सावन की मस्ती में महिलाएं इस कदर रंगी नजर आई कि पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। किसी के कदम गीतों की धुन पर थिरक रहे थे तो कोई अपने हाव भाव से प्रस्तुति में रंग भर रहा था। सजी धजी महिलाओं की खूबसूरत पोशाक, हाथों में मेहंदी और चेहरे के मुस्कान सावन की खुशियों को बयां कर रही थी। दरअसल सावन के पावन महीने में मारवाड़ी समाज के साथ दूसरी महिलाओं की टीम ने शहर के एक हॉल में सावन महोत्सव का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचने वाली महिलाओं का मुख्य द्वार पर सुहाग सामग्री देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद शुरू हुआ गीत संगीत और मनोरंजन का सिलसिला। कहीं पारंपरिक कजरी की मिठास सुनाई दी तो कहीं सावन के लोकगीतों पर सामूहिक नृत्य ने समा बांध दिया। की साड़ियाँ और आकर्षक परिधानों में सजी महिलाएं मानो सावन की हरियाली को अपने साथ लेकर आई हों। हाथों में रंग बिरंगे छाते लिए फैशन शो में भी जलवा दिखाया गया। सुरों में सावन की कहानी थी तो कदमों में उमंग। खास गानों पर महिलाओं ने एक्सप्रेशंस के साथ ऐसी प्रस्तुति दी कि मौजूद लोगों की नजरें थम गई। उत्सव में सिर्फ मंचीय कार्यक्रम ही नहीं, मेहंदी, झूले और गीतों का भी इंतजाम किया गया था। सखियों के साथ झूले की पेंग बढ़ी, हथेलियों पर मेहंदी सजी और हंसी ठिठोली के बीच खुशियां बांटी गई।
1: समस्तीपुर कैफे कनेक्शन में हम सभी महिलाएं इकट्ठे हुए हैं सावन उत्सव मनाने के लिए। ये सावन जो है, ये सावन अति पावन शंकर भगवान का दिन है। इसी ऋतु को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि जैसे सावन में शिव पार्वती भगवान रहते हैं, उसी प्रकार हम भी उसी उल्लास से यहाँ मनाने आए हैं। क्योंकि सावन जो है सिर्फ ऋतु ही नहीं, बल्कि हरियाली, उमंग, उत्सव और नई उम्मीदों का उत्सव है। ये इसी को मनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहेंगे कि हर वर्ष हम लोग इसी तरह, इसी उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पे समस्तीपुर में सावन उत्सव मनाते रहें और भोले बाबा शंकर भगवान की कृपा हम सब पे इसी तरह बरसते रहे, हम लोग इसी तरह हंसी खुशी सब लोग रहे।
0: इस आयोजन के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सावन की परंपरा और प्रकृति के प्रति आस्था भी जुड़ी रही। महिलाओं ने भोलेनाथ से हर परिवार में सुख, शांति और जीवन भर हरियाली बने रहने की प्रार्थना की। सावन भगवान शंकर की आराधना में लीन होने का पावन समय है। इसी भावना को महसूस करने के लिए महिलाएं एक साथ जुटी, क्योंकि सावन का मौसम केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि उमंग, उल्लास और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आता है। वहीं महिलाओं ने अपनी मधुर प्रस्तुति से महफिल में भक्ति का रंग घोल दिया। उनके गीतों में सखियों की बातचीत थी, सावन की सुंदरता थी और शिव के प्रति समर्पण का भाव भी। सातों श्रृंगारों से सजी महिलाएं हरे परिधान की छटा, झूले की पेंग, मेहंदी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और महादेव का नाम, इन सभी रंगों ने मिलकर समस्तीपुर के इस आयोजन को यादगार बना दिया। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब खबर चार धाम यात्रा की। चार धाम की तीर्थ यात्रा पर भी सावन का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो सावन में बहुत से श्रद्धालु गंगा जल लाने के लिए गंगोत्री जाते हैं और भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर केदारनाथ धाम भी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पावन सावन के रंग।

0: पावन महीने में बाबा केदारनाथ के धाम पर रौनक देखते ही बनती है। पूरी केदारनाथ घाटी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी से बाबा केदारनाथ की नगरी में इन दिन अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल है। समय समय पर हो रही बारिश के कारण मुश्किलें भी आती हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है, परंतु कठिन परिस्थितियों के बीच भी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद लगातार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: आजकल मॉनसून के कारण कई जगह कई बार मलबा और पत्थर आने की भी स्थिति बन रही है, जहां पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं और जो SDRF है वो लगातार कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ JCB और अन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मलबे और पत्थर को हटाया जा रहा है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा सके।
0: अब तक 14,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन दिनों कांवड़ यात्रा के कारण यहां श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। यात्रा मार्ग से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक खास चहल पहल दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या का असर सोनप्रयाग की पार्किंग पर भी साफ नजर आ रहा है। पार्किंग कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों से लगभग पूरी तरह भरी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।
1: देखिए, सावन के महीने में और कांवड़ के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसमें हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जो यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्यबद्ध है और वहाँ पर कार्य कर रहा है।
0: सावन के रंग बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर हर तरफ मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक कोना कोना श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। वैसे तो बीते वर्षों में भी कांवड़िए सावन में बद्रीनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफे से नया ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बरसात के इस मौसम में बद्रीनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी चार धाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है। मौसम और भारी लोगों की आस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट कुनिश्चरी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और बड़ा मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर। हरियाणा के नारनूल में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज, 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा, अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी। दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, वीकेंड में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, गुरुग्राम में पिछले दो दिनों में हुई 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात। राजस्थान के धौलपुर की वान्या बोहरा का एशियन गेम्स के लिए चयन, आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन के चलते मिला मौका, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना हुनर दिखाएंगी वान्या।

बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी अनोखी कांवड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है जिसे देखकर अब बस यही कहना पड़ता है, वह भोले के भक्त। यानी ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, उत्साह और अद्भुत कल्पना शक्ति का चलता फिरता उत्सव बन गई है। जैसे जैसे भोले के भक्तों का कारवां मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रा मार्ग पर शिव शक्ति के नए नए रंग भी बिखरते जा रहे हैं। कहीं कला से सजी हुई कांवड़ है तो कहीं अनोखी झांकियां, तो कहीं भक्ति का ऐसा जुनून जो हर देखने वाले को कुछ पल ठहर कर निहारने पर मजबूर कर देता है। देखिए

0: हर तरफ गूंजता बोल बम का जयकारा। भगवा सागर में डूबी सड़कें और शिव भक्ति का ऐसा जुनून जो हर देखने वाले को हैरान कर दे। कांवड़ियों का ये वही अटूट जोश और बेमिसाल उत्साह है जिससे आज पूरा देश गुंजायमान हो उठा है। इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ भक्ति का सैलाब ही नहीं बल्कि आस्था के ऐसे ऐसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले रूप देखने को मिल रहे हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देख पहली नजर में आपको लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। मैकलॉरेन स्पोर्ट्स कार थीम पर बनाई गई ये अनोखी कांवड़ दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर तैयार की है। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। दावा है कि इसे करीब 8 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है।
1: बोले बस हम बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर ही, हमारा ऑफिस है अपना, क्या नाम है, डीलर वगैरह का ऑफिस हमारा, तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे। बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं। भोले हम रहने वाले तो दिल्ली नवादा गाँव के हैं, हरकीपुरी से हमने जल उठाया है और दिल्ली नवादा गाँव शिव मंदिर पे हम जल अभिषेक करेंगे।
0: उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी इस हाइड्रोलिक कांवड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ ही फिटनेस का संदेश भी देखने को मिल रहा है। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई सामान मौजूद हैं। डंबल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज के सामानों से सज्जित इस कांवड़ के साथ कभी मुग्दर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित उर्फ मिट्ठू मदेरिया 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले हैं।
2: ये एक सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए, अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे।
3: लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं,
2: हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं, वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं उनको, जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: बिहार के समस्तीपुर से युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस दल के सदस्य एक दूसरे से जुड़े जो स्केटिंग करना जानते थे, और फिर समस्तीपुर से सब एक साथ बेगूसराय होते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े। 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करता हुआ बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
3: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। और आप देख सकते हैं अभी यह बेगूसराय के खातोपुर से निकले हैं और स्केटिंग करते हुए युवा बाबा नगरी देवघर जा रहे हैं, और लगातार यह यात्रा आज तीसरे दिन शुरू हुई है। क्या सोच है, सावन का माह है, बाबा नगरी में लोग श्रद्धालु जल चढ़ाने जाते हैं और यह युवा स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं। पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं।
0: कांवड़ यात्रा में इस बार भी आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के गांव छज्जूपुर के रहने वाले नरेंद्र को ही देख लीजिए, जिनकी कांवड़ यात्रा देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा सकता है। नरेंद्र अपने दांतों से ही कांवड़ वाली कार खींचते हुए ये यात्रा पूरी करने में लगे हैं। कार के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा है और 11 लीटर गंगा जल की कांवड़ है, जिसे हरिद्वार से लेकर नरेंद्र अपने गांव लौट रहे हैं, और वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।
4: एक तो आस्था तो उसकी वजह से 11 लीटर जल और भोले बाबा की मूर्ति साथ में और हमारे गुरुजी साथ में, हम छह लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक 41 लीटर जल लेके भी चल रहा मेरा भाई है, वो छोटा।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की कैसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। यहाँ 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर पूरे 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कराई। हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा केवल गंगा जल लाने का संकल्प नहीं थी, बल्कि अपनी दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव भी बन गई।
5: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
6: कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
5: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, दो बुआ जी हैं, और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है, और 4 भाई हम हैं, दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रही। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का यह अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ यात्रा को निहारते रह गए।
7: पर क्या रहता है, मर्दाड़ी जाऊंगे, मेरे 100 भी हैं।
6: कितनी उम्र है आपकी?
7: 100 तक जारी होगी एक आधी। पर
0: ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर के असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ की है। हरिद्वार निवासी दिव्यांग शिव भक्त बबलू भी देवघर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान बबलू भक्ति गीतों पर बैशाखी को किनारे रखकर एक पैर से ही जमकर झूमते नजर आए। चेहरे पर न थकान और न ही कोई तर, बस बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर बबलू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
8: नाम काव्या है और 1 साल 4 महीने की है। बाबा नगरिया पैदल ही पैदल जा रही है, तो नजर आ रही है, इसको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार जा रही है।
0: अब मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दंडवत होकर जाते इस शिवभक्त को देखिए, जो एक डोली को खींचते हुए बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। इस डोली में उनकी महज 2 महीने की बेटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी, 3 साल के बेटे और सिर्फ 2 महीने की बेटी राधा के साथ देवघर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मिथिलेश 6 साल से बैद्यनाथ धाम की दंडवत यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार की उनकी यात्रा अपनी 2 महीने की बेटी के साथ पूर्ण हो रही है। बेटी के लिए विशेष डोली बनवाकर मिथिलेश ने दंडवत यात्रा शुरू की। करीब 10,000 रुपए खर्च कर इन्होंने इस डोली को तैयार करवाया है। डोली में बेटी को धूप और गर्मी से बचाने के लिए ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई है, जिससे पंखा चलता है। मिथिलेश अपनी बेटी राधा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का इरादा रखते हैं।
9: एक बार पिछला बार यहीं से आए हैं, ये डोली था, छोटकी था भैया, वही में भतीजी दोनों का लाए थे। इनकी बेटे हम बाबा के बोले थे कि मेरा जो भतीजी के ले गए थे, मेरा बेटी होना चाहिए कि बेटी रहेगा तब मैं कन्यादान करेंगे, ताकि बाबा दाम सुन लिए। पर आए थे इनकी बेटी के लेके आए, सब रोका कि 2 महीना का बच्चा लेकर नहीं जाओ, बच्चा का मन खराब हो, बाबा की कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा, बेटी भाग से मिलता है, बेटा भाग से बेटी सब भाग से, कोई उनका नहीं, बेटी का जो होगा तो होगा, बाकी हम लेके जाएंगे बच्चा लाए।
0: इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ भक्ति का सैलाब ही नहीं, बल्कि आस्था के ऐसे ऐसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले रूप देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी कल्पना से परे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ सजाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल अर्पण करने की ये परंपरा शुरू कैसे हुई? आखिर क्यों कांवड़ उठाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आइए आपको लिए चलते हैं इतिहास और आस्था के उस सफर पर, जहां से शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा।

0: फिजाओं में गूंजती बोल पंप की गूंज, सड़कों पर उमड़ा भगवा सैलाब, कांवड़ियों का अलौकिक जज्बा और इस पर महादेव के मिलन का असीम उत्साह। कांवड़ यात्रा श्रद्धा, तप और त्याग का ऐसा महापर्व है जो हर साल करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में बांध देता है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और कहानी जुड़ती है समुद्र मंथन से। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की तपन भयानक थी, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और विष की गर्मी से उनका शरीर जलने लगा। तब गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तभी से सावन में शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
1: सब प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने धारण कर लिया कंठ में, तो भगवान के कंठ में वो भगवान को अति पीड़ा देने लगा। तो जब भगवान को पीड़ा देने लगा तो भगवान के भक्तों ने उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया। उनको जल की जो शीतलता है भगवान के विष को थोड़ा शांत देती है, तो भगवान उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान का जलाभिषेक करता है।
0: माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से भी जोड़ती है। कथा के अनुसार परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वो कांवड़ लेकर गंगा जल लेने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, जबकि दूसरी कहानी के अनुसार समुद्र मंथन के बाद विष की गर्मी को शांत करने के लिए सबसे पहले रावण ने महादेव का जलाभिषेक किया था। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर अब तक समय बदला, युग बदले, लेकिन कांवड़ उठाने का ये संकल्प और आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है। युगों युगों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और जोश के साथ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सैकड़ों किलोमीटर की ये कठिन यात्रा सिर्फ एक पैदल सफर नहीं, बल्कि भक्ति, कठिन नियमों और अटूट अनुशासन का एक महायज्ञ है, जिसे हर शिव भक्त बड़ी श्रद्धा से निभाता है। सबका रंग अलग, ढंग अलग, आकार अलग, लेकिन विश्वास एक है। यात्रा करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं, जिनके पालन के बिना कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती।

सैकड़ों किलोमीटर की ये कठिन यात्रा सिर्फ एक पैदल सफर नहीं, कठिन नियमों और अटूट अनुशासन का एक ऐसा महायज्ञ है जिसे हर शिवभक्त बड़ी श्रद्धा से निभाता है। लेकिन क्या कोई भी भक्त कांवड़ उठा सकता है, इस यात्रा में शामिल हो सकता है? आपको बता दें कि कांवड़ उठाने के लिए शास्त्र या परंपरा में जात पात उम्र या लिंग का कोई भेद नहीं है। हर शिवभक्त के लिए द्वार खुला है, चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या बच्चे। महादेव की भक्ति में हर कोई कांवड़ उठा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत संकल्प से होती है। कांवड़ ले जाने का फैसला किसी के दबाव भी नहीं, बल्कि भक्त की अपनी इच्छा और मनोती के आधार पर तय होता है। गंगा तट पर पंडितों की मौजूदगी में विधिवत संकल्प लिया जाता है कि भक्त किस प्रकार की कांवड़ उठाएगा। तब विधि विधान से पूजा के बाद भक्त कांवड़ उठाता है। एक बार कांवड़ उठ जाने के बाद यात्रा के नियम बेहद कड़े और सख्त हो जाते हैं, जिनका पालन हर कांवड़िया निष्ठा से करता है। चाहे राह में कंकड़ हो या पैरों में छाले, नियमों का ये कड़ा अनुशासन ही कांवड़ यात्रा को भक्ति और साधना की सबसे बड़ी मिसाल बनाता है। लेकिन कांवड़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पहली है बोलबम कांवड़, जिसमें लोग बिना जूता चप्पल की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़, इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। तीसरी है झूला कांवड़, इसमें बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़, इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। पांचवी होती है दंडवत कांवड़, ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा मानी जाती है। भक्त नदी तट से शिवधाम तक दंड देते हुए यात्रा करते हैं, अपने शरीर की लंबाई के बराबर लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य मन वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना भी होता है। इसलिए जलाभिषेक के बाद भी कुछ दिनों तक संयमित जीवन जीने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव भक्त सावन के महीने में पैदल चलकर ये तीर्थ यात्रा करता है, कंधे पर कांवड़ लेकर बोलबम का नारा लगाता है, उसे हरेक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। चाइना की हान कियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर बनी चैंपियन। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल। हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर मेडल। हरियाणा के नारनौल में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज। 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा। अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी। दिल्ली NCR में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। वीकेंड में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। गुरुग्राम में पिछले दो दिनों में हुई 200 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात।

शानदार खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अश्मिता चालिहा ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया है। अश्मिता ने हान कियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया है। अश्मिता ने चाइना की हान कियानशी को हराया है और ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें, भारतीय शटलर हैं अश्मिता चालिहा, जो कि कोरिया मास्टर्स चैंपियन बन चुकी हैं। अब एक और गौरवान्वित कर देने वाला पल भारत के लिए, चाइना के खिलाड़ी को हराकर भारत की खिलाड़ी अश्मिता ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है, अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण, सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सदगुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊ एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह्य तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस

डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणा मूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा 2 भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में 5 मुख हैं जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है।
अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का

0: भी प्रतीक है। पंचारण का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात, लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: भारतीय शटलर अश्मिता चालेहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, चाइना की हान कियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर चैंपियन बनी। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आज से तिरंगा अभियान का शुभारंभ, लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, कहा तिरंगा हमारी सादगी, विकास और विरासत का प्रतीक है। हरियाणा के नारनौल में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज, 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा, अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक क्या होता है, इसको करने के नियम क्या हैं और इससे लाभ किस तरह के होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:04 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं।
मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, पारिवारिक उलझनें परेशान करेंगी, शांति और धैर्य बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है। किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है, उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा,
अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है, अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है, तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है। देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ होते हैं, ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं, ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं, ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। धनुराशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर शिव जी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव श्मशान में समाधि में रहते हैं, ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं, ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं, ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं, ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता। देखिए, शिवलिंग पर आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वो अभिषेक नहीं होता। शिवलिंग पर जब मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तब उसको अभिषेक कहते हैं। आप अगर मंत्रों के साथ जल अर्पित करेंगे तो उसको जलाभिषेक कहा जाएगा, बिना मंत्रों के वस्तुएं अर्पित करने को अभिषेक नहीं कहते। अगर आपकी संतान बीमार रहती हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो क्या करेंगे? महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें, रोज सुबह और शाम अपनी संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने संतान के नाम से, बच्चे के नाम से सार्वजनिक स्थान पर 1, 2, 3, 4 जितना भी कर सकें बरगद के वृक्ष लगवा दें। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: भाग्य कहीं दूर नहीं,
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज़ टुडे।

0: राधा रानी ने एक बार नहीं कहा कि तुम मत जाओ,
1: जाओ।
0: तुम्हें सुख अगर हमसे दूर रहने में है ना, तो हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी प्रसन्नता उसी में है जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है। और भगवान जब मथुरा में रहने लगे ना, तो राधा जी दिन भर रोती,
1: आहा,
0: गोपियां वृंदावन के गली में पूरे दिन बैठी रहती, आज आएंगे, आज आएंगे। शाम हो जाती जब मनमोहन आते दिखाई नहीं पड़ते, तो गोपियां कहती हैं लगता है आज कोई काम बड़ा फंस गया होगा, कल जरूर आए। कब 100 साल बीत गए, आप विचार भी करो, 100 साल किसी के याद में टिके रहना,
1: ये तो ब्रज की ब्रजांगनाओं से सीखो।
0: एक बार हमारी श्री राधा रानी
1: आहा
0: वृंदावन में रो रही थी, यमुना जी के किनारे रोते रोते श्री राधिका जी ने एक पत्तल का दोना बनाया, पत्तल के दोने में एक माला रखी और अपने प्रेमाश्रुओं के जल से सिंचित करके उस दोना को युगल सरकार को याद करके यमुना जी में बहा दिया। अच्छा दोना कितना अच्छा प्रयोग है, दोना का मतलब हे कृष्ण हम और तुम दो ना, दोना कितना अच्छा प्रयोग, दोना में ही क्यों रखा माला को, मानो श्री राधा जी कहना चाहती कन्हैया हम तुम दो नहीं हैं, दो ना हम एक हैं, एको हम। दोना को छोड़ा, इधर मथुरा में उद्धव जी के साथ भगवान यमुना स्नान करने आए,
1: आहा,
0: यमुना जी में डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई तो वो दोना बहता बहता तब तक भगवान के पास आ गया। अब वो उलट गया और डुबकी लगाई तो उलटते ही वो जो माला थी वो भगवान कृष्ण के गले में पड़ी, गले में पड़ी। भगवान बाहर निकले तो आंखों से आंसू प्रेमाश्रु बहाने लगे। तो उद्धव कहते हैं ठाकुर आज आप रो रहे हो इतने वीर और आपकी आंखों में आंसू, कन्हैया आप पूरे दुनिया के अधिष्ठात्र हो और आपकी ही आंखों में आंसू रहेंगे तो फिर क्या कहना। ठाकुर जी कहते हैं

भरी आंखों में आंसू कैसे? ठाकुर जी कहते ये आंखों में आंसू हमारी नहीं है, जिनकी वजह से हैं उनके आंसू। किनके आंसू? हमारे ठाकुर जी कहते ये ब्रजांगनाओं के आंसू हैं। आंखें भर हमारी हैं, आंसू तो ब्रजांगनाओं के। कितनी अच्छी रहस्यमय बात छिपी। भगवान कहते ये आंसू हमारे नहीं है, आंखें हमारी हैं, आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। मानो कन्हैया कहना चाहते हो कि हम भक्त हैं, हमारे ब्रजांगनाएं भक्त हैं, हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान भी भक्तों से अलग नहीं है। ब्रजांगनाएं रो रही तो ठाकुर जी रो रहे, और यहां पर ये लाइन सिद्ध हो गई। भाग

कहते महाराज, रो तो आप रहे हो, आप कह रहे कि आंसू ब्रजांगनाओं के हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं, उद्धव ब्रजांगनाओं में और हम में कोई भेद नहीं है। मानो भगवान कहना चाहते हो कि भक्त में और भगवान में पर कोई भेद नहीं रह जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में

सकता है। भगवान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया, भगवान को वही जान सकता जो भगवान का प्यारा हो, जिसे भगवान जनाएंगे वो भगवान को जान सकता, लेकिन एक शर्त और है। क्या? माई बाप जो भगवान को जान लेगा वो भगवान के जैसा ही हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते ब्रजांगन आओ, उद्धव गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं है, ना ना ना, हम दोनों एक हैं। उद्धव कहते महाराज आप चिंता मत करो, हम आपकी ब्रजांगनाओं को समझा कर आते हैं, ब्रजांगनाओं को समझाते हैं कि प्रेम रेम कुछ नहीं है, कृष्ण को सर्वत्र देखो। भगवान बोले नहीं मान रहे हो तो जाओ। और भगवान ने ज्ञानी उद्धव को नहीं भेजा, ना ना ना, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गोपियों के पास। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं, पर ज्ञान का अभिमान होना बहुत बुरी बात है। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं विद्या ददाति विनयम। हमने रामायण में और हनुमान जी में एक बात देखी, पूछो क्या? हनुमान जी है विद्यावान, रावण है विद्वान। रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान इसलिए है कि जो विद्वान रहेगा उसे अभिमान आएगा, लेकिन जो विद्यावान रहेगा उसे अभिमान नहीं, अपने प्रभु श्री राम का स्वाभिमान आएगा, अपने गुरु का स्वाभिमान आएगा। तो रावण विद्वान है लेकिन हनुमान जी

किया भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव ज्ञानी को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा है। क्यों? क्योंकि विद्वान आदमी को अभिमान होता है, अरे हम ऐसे, हमें पता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती गुरु कृपा से उसे अभिमान नहीं होता, उसे अपने गुरु पर स्वाभिमान होता है। हनुमान जी तो

उद्धव ने कहा महाराज हम वृंदावन जाकर ना ब्रजांगनाओं को समझाएंगे, आप चिंता मत करो। भगवान कृष्ण बोले ठीक है जाओ, लेकिन एक बात बोले, हाँ तुम अगर जा रहे हो ना तो कपड़े हमारे पहन जाओ, रथ हमारा ले जाओ, मोर पंख लगा जाओ। क्यों? उद्धव गोपियां और ब्रजांगनाएं और राधा रानी सिवा हमारे किसी दूसरे पुरुष को देखती ही नहीं है, और हमारे कपड़े होंगे, हमारा रथ होगा, हमारा मोर मुकुट होगा, तो हमें मानकर वो देखने आएंगी तो कम से कम तुम्हारी वार्तालाप तो हो जाएगी। इतना प्रेम है गोपियों का। मीरा जब वृंदावन आई ना, वृंदावन, और पहली बार जब मीरा वृंदावन आई तो यहां पर श्री वल्लभाचार्य जी का बहुत नाम सुना मीरा ने। वल्लभाचार्य परंपरा के कोई आचार्य के बारे में मीरा ने सुना, तो शाम के समय मीरा वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए गई, तो दरवाजे पर शिष्यों ने रोक दिया कि प्रवेश नहीं होगा। मीरा ने कहा क्यों? तो वल्लभाचार्य के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। अच्छा, मीरा की बात सुनकर के वल्लभाचार्य जी को मिलना पड़ा। पता है क्या कहा मीरा ने? मीरा ने कहा महाराज आप अपने गुरुजी से इतना भर कह दीजिएगा, और मैं तुमसे भी कहती हूं कि मैंने तो सुना था ब्रज में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण कन्हैया, बाकी तो ब्रज में सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? हा हा, इतनी बात सुनते ही वल्लभाचार्य जी दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के वल्लभाचार्य जी ने मीरा को मिले। भैया मेरे माई बाप, गोपियां सिवा श्री कृष्ण के किसी को स्वीकार नहीं करते। अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए, ये अघट प्रेम है मेरे माई बाप। सच्चा और अच्छा भक्त वही है जिसे अपने आराध्य के अलावा कोई दूसरा दिखाई ना दे। परम पूज्य अनंत श्री विभूषण मलुकपीट वाले महाराज जी परसों सुबह एक बात कह रहे थे बहुत ऊंची। क्या कह रहे थे महाराज जी? कह रहे थे कि आप मानो एक को, लेकिन अगर अनेक जगह जाना पड़े तो उन अनेक में भी अपने एक आराध्य के ही दर्शन करो। कितनी अच्छी बात। हम राम कथा भी करते, कृष्ण कथा भी करते, हनुमान कथा भी करते, और हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, तो हमें कथा तो केवल हनुमान जी की करनी चाहिए कि नहीं? ये कृष्ण कथा क्यों कर? ना ना ना ना, मानते तो हम एक को हैं, लेकिन हमको तो भगवान कन्हैया की नटखटपन में भी कभी अपने हनुमान जी की चंचलता दिखाई पड़ती है। इसलिए माई बाप, सच्चा और अच्छा भक्त वही है जो अपने इष्ट के अलावा किसी दूसरे को ना पुकारे। तो उद्धव ने भगवान कृष्ण के वस्त्र पहने, आहा, रथ को लिया, मोर पंख लगाया, वृंदावन गए। कहा उद्धव ने मोहन से, मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा अनूठा रंग दिखलाया। पिटप झुक झुक कर कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता था पीह कहां है ये तो बतलाओ। आहा, वृंदावन गए। एक बात बोले

0: उद्धव जब श्री राधा रानी जी के पास आए, गोपियों को देखा तो कांटों में उद्धव के कपड़े उलझने लगे, उलझ कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उलझ कांटे लगे उद्धव को ये समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर आए, तुम्हारा ज्ञान धरा रह जाएगा, हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव, दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वैत दूसरा कोई है ही नहीं, केवल कृष्ण सर्वत्र हैं, ऐसा ज्ञान दिया उद्धव ने। राधा जी बोली हमें तो भ्रांति है, उद्धव जी बोले नहीं नहीं कोई भ्रांति नहीं। राधा जी बोली कहीं आपको तो भ्रांति नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा नहीं। उद्धव जी बोले हमें ज्ञान पर भरोसा है, भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इस दुनिया में, भगवान ही जीवात्मा है, भगवान ही परमात्मा है। राधा जी बोली तब तो जय हो। बोले क्यों? तो श्री राधा जी बोली जो है अद्वैत के कायल, फिर क्यों द्वैत लेते हो? जो है अद्वैत के कायल फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला ब्रह्म होकर तुम दूसरे ब्रह्म को ज्ञान देते हो?
1: आ रहा है सूर्य का पूर्ण ग्रहण, सूर्य के पूर्ण ग्रहण का दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, राशियों का क्या होगा हाल, और सूर्य का ये ग्रहण करने वाला है किसको बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है, यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
4: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
3: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
7: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
8: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
3: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
9: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक।

0: बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
1: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
2: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
2: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
7: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
8: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि

0: आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
1: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
2: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
3: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
4: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
5: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना दिशा लिया ये फौजी 360।
7: बिना सहारे के मैं दो कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
5: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है। और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बता। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
6: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
9: राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति। वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में आज तिरंगा अभियान का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, कहा तिरंगा हमारी सादगी, विकास और विरासत का प्रतीक है।
15: भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। चाइना की हान कियानशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर बनी चैंपियन। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल। हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर। हरियाणा के नारनौल में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज। 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा। अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्जर तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्जर सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्जर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दाव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेज़ी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, कि जैसे SH-15 का बम निकलता है स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाई 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है। इसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हार्ड टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: आ रहा है सूर्य का पूर्ण ग्रहण, सूर्य के पूर्ण ग्रहण का दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, राशियों का क्या होगा हाल, और सूर्य का ये ग्रहण करने वाला है किसको बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: इंडियन आर्टिलरी का एक ताकतवर हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसके एक्सटेंडेड रेंज का यूजर ट्रायल यानी सेना में शामिल होने से पहले का अंतिम ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी इसे जल्द ही अब सेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब पिनाका ईआर की रेंज में दो गुनी बढ़ोतरी हुई है। सेना में पहले से तैनात पारंपरिक पिनाका बैटरीज की मारक सीमा 37 किलोमीटर थी, लेकिन अब एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये 75 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है।
1: अगर दुश्मन 40 किलोमीटर से दूर है तो आर्मी के पास दुश्मन के ऊपर प्रहार करने का एक ही तरीका था, वो था कि एयरफोर्स को बुलाया जाए। लेकिन अब क्योंकि पिनाका रॉकेट जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर पाएगा, तो 75 किलोमीटर की दूरी तक जो दुश्मन के टारगेट होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए आर्मी को एयरफोर्स को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एयरफोर्स जो है वो दूसरी तरह के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, डेप्थ में है, उनको एंगेज करने के लिए फ्री हो जाएगी।
0: नया पिनाका सिर्फ रेंज में नहीं बल्कि सटीकता और शक्ति में भी बेहतर हुआ है। भारतीय सेना के आर्टिलरी में शामिल पिनाका की बात करें तो पिनाका रॉकेट फ्री फ्लाइट है, यानी बस उसे लॉन्च किया गया तो वो अपनी रेंज 37 किलोमीटर के हिसाब से जाकर गिरेगा। लेकिन उसकी सटीकता इतनी नहीं थी कि ठीक निशाने पर हिट करे, ये एक एरिया वेपन के तौर पर है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका की बात करें तो ये गाइडेड रॉकेट जीपीएस नेविगेशन से लेस है। इस रॉकेट में लॉन्च से पहले ट्रेजेक्टरी और टारगेट प्रोग्राम किए जाते हैं। अगर किसी कारण से ये रास्ते से भटक जाए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जीपीएस मिलकर इसे सही रास्ते पर ला देते हैं। इसके अलावा इसमें आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जो जीपीएस जाम होने या रुकने पर भी रॉकेट को टारगेट तक पहुंचाता है। इसकी सटीक मारक क्षमता की बात करें तो ये टारगेट के 25 मीटर के आसपास हिट कर सकता है, जो कि एक बेहतर रेंज है।
1: पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो ये उन्नत वर्जन है इसमें जीपीएस गाइडेंस लगा है, और जीपीएस गाइडेंस की मदद से यह शत्रु के टारगेट के ऊपर महज प्लस माइनस 25 मीटर की एक्यूरेसी से गिर सकता है। और भी अच्छी बात यह है कि अगर दुश्मन जीपीएस गाइडेंस सिस्टम को, जीपीएस के सिग्नल्स को जैम कर दे तो इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जीपीएस सिग्नल के फेल होने पर यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पिनाका को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर ले जाकर प्रहार कर सकती है।
0: नया गाइडेड पिनाका आने से इसकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लॉन्च होने के बाद लॉन्चर अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर से तैयार हो जाते हैं, जिससे दुश्मन का जवाबी हमला मुश्किल हो जाता है। अभी जो पिनाका सेना में शामिल है उसकी क्षमता की बात करें तो एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स हैं, यानी कुल 72 रॉकेट, और ये सभी 44 सेकंड में दागे जा सकते हैं। अगर ये एक साथ चल जाएं तो दुश्मन के 1000x800 मीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं।
1: जब ये पिनाका लॉन्चर सिस्टम्स इंडियन आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स में पहुंच जाएंगे तो एक एक बैटरी में 6-6 लॉन्चर दिए जाएंगे। जाहिर बात है एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती है, तो जरूरत पड़ने पर जो बैटरी कमांडर है वो 12 गुणा में 6 यानी 72 पिनाका एडवांस मिसाइल सिस्टम दुश्मन पर फायर कर सकता है। यह फायर महज 44 सेकेंड के अंदर लॉन्च की जा सकती है।
0: कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर रणभूमि में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शत्रु संहारक बनकर उतरा। पिनाका सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का हथियार ही नहीं बल्कि भरोसा भी है, और ये भरोसा और दमदार होता जा रहा है।
2: सेना
0: के सूत्रों के मुताबिक अब तक भारतीय सेना के पास पिनाका की 4 रेजिमेंट थी, जिन्हें बढ़ाकर 10 रेजिमेंट किया जा रहा है। इसके लिए मौजूदा 120 mm मोर्टार लाइट रेजिमेंट को ही अपग्रेड कर पिनाका रेजिमेंट में बदला जा रहा है। अब तक 2 रेजिमेंट बदले जा चुके हैं और अगले 2 साल में ये तादाद 10 हो जाएगी। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में आर्टिलरी की काफी जरूरत होती है, वहाँ टैंक सफल नहीं हो पाते हैं, तोप ज्यादा कारगर मानी जाती है। हालांकि यहाँ तोप के साथ ये चैलेंज होता है कि एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला दागने में करीब 20 सेकंड का समय लग जाता है। अगर दुश्मन ने रॉकेट से रैपिड फायर कर दिया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में ताबड़तोड़ हमले के लिए तोपों के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की भी जरूरत होती है, जिसमें पिनाका के प्रहार का कोई जवाब नहीं।
1: किसी भी जमीनी युद्ध में सबसे पहले कमांडर की पसंदीदा वेपन होती है टैंक, लेकिन टैंक की एक लिमिटेशन है कि वह मात्र 3, 4 या 5 किलोमीटर तक अपनी मेन गन से एनिमी के टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसी तरह से कमांडर अगर चाहे तो आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करके दुश्मन पर प्रहार कर सकता है, लेकिन आर्टिलरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो वॉरहेड होते हैं वो छोटे होते हैं, और दूसरी बात है आर्टिलरी को टो करके दुश्मन के पास ले जाना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन पिनाका जो MBRL सिस्टम है वह ऑलरेडी एक टोइंग ट्रक के ऊपर स्थापित है, यानी ये महज कुछ मिनट के नोटिस पर ही शत्रु की तरफ वो जो इसका जो लॉन्चर है, जो ट्रेलर है, जो व्हीकल है, वो शत्रु की तरफ महज कुछ मिनटों में ही 10, 20, 30, 40 किलोमीटर अग्रसर होकर फिर पिनाका मिसाइल फायर कर सकता है, जो कि और 75 किलोमीटर जाकर दुश्मन पर प्रहार कर सकता है।
0: पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है, इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी स्पीड Mach 4.7 यानी करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है।
1: पिनाका मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना स्पीड से टारगेट पर जाकर प्रहार करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन का कोई भी सर्विलेंस रेडार, फायर लोकेटिंग रेडार या जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है या एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने का जो रेडार है वो इस पर ट्रैक नहीं कर सकता, लॉक ऑन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दुश्मन के रडार को पता लगे कि पिनाका मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, उसके पहले ही पिनाका जाकर दुश्मन के सर के ऊपर जाकर फट जाता है।
0: स्वदेशी हथियार पिनाका हिंदुस्तान के रक्षा कवच का वो अचूक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो बॉर्डर पार किए बगैर ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए DRDO 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जुड़े हैं। पिनाका MK1 एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पिनाका MK2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन, और तीसरा है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड। पिनाका MK1 और पिनाका MK2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। DRDO में बना पिनाका MK1 एरिया डिनाइल एम्यूशन युद्ध क्षेत्र कई तरह से सेना के काम आ सकता है। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज भारत के लिए सिर्फ एक नया हथियार नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इसकी तैनाती से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन पर विध्वंसक स्ट्राइक करने की क्षमता में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको बता दें कि पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं, जिसमें मार्क 1 से लेकर मार्क 3 शामिल हैं। रक्षा जानकारों के अनुसार पिनाका की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितनी तेजी से ये प्रहार करता है, उतनी ही तेजी के साथ अपना लोकेशन भी बदल लेता है, जिससे दुश्मन के रेडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट की रणनीति कहते हैं। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की मैनुवरबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है।
1: युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ही आपने दुश्मन के ऊपर फायर किया, तो दुश्मन के ऊपर फायर गिरते ही और दुश्मन अपने फायर डिटेक्टिंग रेडार्स को ऑन कर लेता है। दुश्मन के जो है फायर लोकेटिंग रेडार है, यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्यूटर की मदद से यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पिनाका सिस्टम ने कहां से अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया था, और तुरंत दुश्मन का जो काउंटर बम्बार्टमेंट यूनिट है वो काउंटर अटैक करता है। हमारे पिनाका मिसाइल का जो लॉन्चर है, उसका जो प्राइम मूवर है, गाड़ी है, उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर क्या करता है कि जैसे ही उसने पिनाका मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया, उसके बाद वह तुरंत उस फायर बेस से दाएं बाएं 200 मीटर 400 मीटर आधा किलोमीटर हो जाता है।
0: पिनाका को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी मोबिलिटी इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। यानी साफ है, चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के शक्तिशाली महायोद्धा पिनाका से कोई बच नहीं सकता। साल 1999 के कारगिल युद्ध में पहली बार जब पिनाका ने पाकिस्तानी पोस्ट पर प्रहार किया था, तब पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा तकनीक को एक नए नजरिए से देखा था।
2: 1986 में DRDO ने इसे रूस के BM-21 ग्राथ सिस्टम के विकल्प के रूप में तैयार किया था। आज ये सिर्फ भारतीय सेना की रीढ़ नहीं, बल्कि दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी का दम है। और इतना ही नहीं, आज भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। साल 2023 में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लिया था, और अब फ्रांस भी इसे खरीदने की तैयारी में।
0: भारत ने बड़े लगन से अपने आप को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने स्वदेशी उपकरणों और हथियारों को विकसित किया है।
2: भारतीय सेना के हथियारों को मॉडर्न बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए अब ऐसे रॉकेट गोला बारूद बनाए जाएंगे जो देश भर में तैनात किए गए लॉन्चर्स से दागा जा सकता है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में मौजूद 122 mm ग्राड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए रॉकेट गोला बारूद खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है।
0: सेना ने यह भी साफ किया है कि नया गोला बारूद मौजूदा लॉन्चर के साथ आसानी के साथ फिट होना चाहिए, ताकि पूरे सिस्टम में कोई बदलाव न करना पड़े। ग्रेड BM-21 रूसी तकनीक पर बना रॉकेट लॉन्चर है, जो भारतीय सेना में कई साल से इस्तेमाल किया जा रहा है।

0: सेना चाहती है कि नया गोला बारूद देश के किसी भी हिस्से में अच्छी तरह काम करे, चाहे वो मैदान, अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान या फिर ऊंचे पहाड़ हो। इसके अलावा इसे छोटी और लंबी दोनों दूरी तक मार करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि इसे अलग अलग सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जा सके।
1: सेना ने यह भी कहा कि रॉकेट कम से कम 10 साल तक उपयोग करने लायक होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मरम्मत या कुछ हिस्सों को बदलकर उसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ड्रैग महज 60 सेकंड और 40 अटैक की क्षमता इसे बेजोड़ बनाती है। 20 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन इसके रडार में आएगा उसका सर्वनाश तय है।
0: सोवियत संघ के समय में बने ग्राड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी करीब 100 देशों में हो रहा है। ये बेहद भरोसेमंद और भयानक तबाही मचाने वाला हथियार माने जाते हैं। पूरी दुनिया में BM-21 ग्राड के करीब 1,00,000 यूनिट बनाए गए हैं। 1 दर्जन देशों ने इसके अपने वेरिएंट यानी कि वर्जन भी बना लिए हैं।
1: BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से दागा जाता है, जो 1 मिनट में 40 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में 40 बैरल होते हैं और इन 40 बैरल से 40 राउंड फायर करने में ये 20 सेकंड लेता है। इन रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है, जो 690 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखते हैं।
2: B-21 ग्रेड सिस्टम एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके अंदर 40 के करीब ट्यूब होती हैं, जो कि इमीडिएटली इकट्ठा फायर कर सकती हैं, और ये इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के करीब होती है, और ये एक प्रकार से जो टारगेट है एरिया टारगेट को कवर करता है, ना कि पिन पॉइंट।
1: 70 के दशक में भारत ने इस ताकतवर हथियार को रूस से खरीदा था। BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर मिनटों में दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। आज भारतीय सेना के पास आर्टिलरी ब्रिगेड में ऐसे ऐसे योद्धा शामिल हैं जो दुश्मन के किसी भी रणनीति या दांव को चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हैं। यानी पाकिस्तानी रणनीति का काउंटर प्लान रेडी है।
0: इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं।

0: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: लखनऊ में आज विधान भवन का इलाका राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मौका है हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का, युवाओं के साथ शुभारंभ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा चली। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ नौजवानों के साथ पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। खास बात यह है कि सीएम के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े चेहरे और कैबिनेट मंत्री भी इस यात्रा में शामिल रहे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के तमाम मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। आज काकोरी कांड की 101वीं वर्षगांठ भी है, लिहाजा आज के दिन शुरू हो रही इस तिरंगा यात्रा को स्वतंत्रता आंदोलन के वीर क्रांतिकारियों की याद और राष्ट्र गौरव से जोड़कर देखा जा रहा है। लखनऊ से शुरू हो रही ये यात्रा सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं, बल्कि युवाओं को राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से जोड़ने का संदेश भी दे रही है। अब खबर चारधाम यात्रा की। चारधाम की तीर्थ यात्रा पर भी सावन का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो सावन में बहुत से श्रद्धालु गंगा जल लाने के लिए गंगोत्री जाते हैं और भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर केदारनाथ धाम भी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पावन सावन के रंग।

0: के पावन महीने में बाबा केदारनाथ के धाम पर रौनक देखते ही बनती है। पूरी केदारनाथ घाटी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी से बाबा केदारनाथ की नगरी में इन दिनों अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल है। समय समय पर हो रही बारिश के कारण मुश्किलें भी आती हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है, परंतु कठिन परिस्थितियों के बीच भी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद लगातार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: आजकल मानसून के कारण कई जगह कई बार मलबा और पत्थर आने की भी स्थिति बन रही है, जहां पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं और जो SDRF है वो लगातार कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ JCB और अन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मलबे और पत्थर को हटाया जा रहा है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा सके।
0: अब तक 14,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन दिनों कांवड़ यात्रा के कारण यहां श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। यात्रा मार्ग से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक खास चहल पहल दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या का असर सोनप्रयाग की पार्किंग पर भी साफ नजर आ रहा है। पार्किंग कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों से लगभग पूरी तरह भरी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।
1: देखिए, सावन के महीने में और कांवड़ के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसमें हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जो यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्यबद्ध है और वहाँ पर कार्य कर रहा है।
0: सावन के रंग बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर हर तरफ मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक कोना कोना श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। वैसे तो बीते वर्षों में भी कांवड़िए सावन में बद्रीनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफे से नया ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बरसात के इस मौसम में बद्रीनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी चार धाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है। मौसम और भारी लोगों की आस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट कोनी स्टूडियो।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति। वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आज से तिरंगा अभियान का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, का तिरंगा हमारी सादगी, विकास और विरासत का प्रतीक है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में 2 और मेडल। हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर मेडल, शहनवाज को मिला कांस्य पदक। भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। चाइना की हांग कियान को भी 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर बनी चैंपियन। हरियाणा के नारनौल में नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए यूथ मैराथन का आयोजन। सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज। 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा। अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की। ग्रहण दुनिया भर में परिवर्तन की सूचना देते हैं, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और प्रकृति पर, देश पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की और जानेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर आपके राशियों के हिसाब से कैसा पड़ने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः। ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, 6, 8 या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज सवेरे इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी नकारात्मक हो, अगर आप नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करें तो सूर्य से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। मंत्र एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, ग्रहाणा मादिरात्यो लोक रक्षण कारक विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर तुमे रवि। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। इस बार सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, कब लग रहा है, किस राशि और नक्षत्र पर इसका प्रभाव है, ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। 12 और 13 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, दरमियानी रात है, 12 और 13 अगस्त के बीच वाली, इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात के 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा जब मध्य रात्रि के बाद 13 अगस्त का आरंभ हो जाएगा तो प्रातः 1:27 पर इसका समापन होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्क राशि जो है ना वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए, और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नकारात्मक नक्षत्र है तो प्रकृति के सेंटर पॉइंट पर और बुध के नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को, और ये आंशिक खग्रास खंडग्रास नहीं है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दर्शनीय नहीं होगा। मध्य रात्रि के समय में होने की वजह से सूर्य उस समय भारत में उदित नहीं होंगे, इसलिए भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की जरूरत नहीं होगी। जो सूतक के नियम होते हैं या जो खान पान का परहेज होता है, विश्राम का परहेज होता है, वो इस ग्रहण में लागू नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जैसे अपना जीवन जीती हैं उस तरह से अपना जीवन जी सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं और सो सकती हैं। किसी तरह का नियम या किसी तरह की वर्जना भारत में किसी के ऊपर लागू नहीं होगा। देखिए ग्रहण जो होता है, खासतौर से सूर्य ग्रहण, अगले 3 महीने तक देश दुनिया पर असर डालता है अपने राशि और अपने नक्षत्र के अनुसार, और लोगों पर असर डालता है अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक। तो अब ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है, उसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस समय ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है उस समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न भी जल का लग्न है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं ग्रहण लगने के समय में, और शुक्र भी मंगल शनि के साथ केंद्र में संबंध बना रहा है। पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है जल की राशि कर्क राशि में, और राहु और मंगल इस ग्रहण के समय निकट के अंशों में हैं, नजदीक के अंशों में हैं। चूंकि जल से संबंधित राशियां प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इस ग्रहण से दुनिया भर में जल की और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप की संभावना और जल की आपदाएं दुनिया भर में दिख सकती हैं। सूर्य राजनीति और सत्ता के स्वामी हैं, इसीलिए जो लोग सत्ता में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। स्वतंत्र भारत की अपनी राशि भी कर्क राशि है, और कर्क राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थितियां बनेंगी। इंटरनल बेवजह के विवाद जनता और सरकार के बीच में पैदा होंगे। शनि मंगल परस्पर केंद्र में हैं, तो न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला इस समय आ सकता है, और शनि मंगल का परस्पर केंद्र में होना, मंगल राहु का निकट अंशों में होना आतंकवादी घटनाओं की, विस्फोट की या बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना दे रहा है। जो तटीय स्थान हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल, इन जगहों पर ज्यादा प्राकृतिक समस्याएं हो सकती हैं, और इन जगहों पर राजनीति में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये दुनिया भर में बड़ी दुर्घटनाओं और विस्फोट की सूचना दे रहा है, साथ ही राजनीति में बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे अगले 3 महीनों में पद परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात, विस्फोट से, आतंकवादी घटनाओं से और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। तो सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, और ग्रहण के दौरान अलग अलग राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की स्थितियां इस समय वैसे भी अधर में हैं, कुछ चीजें बेहतर हैं, ज्यादातर चीजें परेशान कर रही हैं। ग्रहण की वजह से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए को लेकर, परिवार में संबंधों को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लग सकती है, छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है और सर्जरी की नौबत आ सकती है। अगले एक महीने तक सतर्क रहें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। आप क्या करने जा रहे हैं अपने नौकरी या व्यापार में या प्रॉपर्टी और पैसे के मामले में, इसको दूसरों को मत बताइए, वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। इस एक महीने तक शांति और सावधानी रखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सुबह हो जाने के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ वालों के जीवन में परिवर्तन का बड़ा समय चल रहा है और कुल मिलाकर बेहतर स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वृषभ वालों के लिए अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। अगर वृषभ वाले इस समय प्रयास करें, वृषभ राशि वाले इस समय कोशिश करें तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, खास तौर से प्रॉपर्टी के और करियर के रुके हुए काम बन जाएंगे। वृषभ वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, या तो प्रमोशन होगा या मनचाहा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। वृषभ वालों के लिए स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और ये स्थान परिवर्तन कुल मिला जुला के आपके लिए बेहतर सूचना और बेहतर संकेत दे रहा है। यानी ये ग्रहण के बाद का जो एक महीने का समय है वो कुल मिला जुला के वृषभ वालों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। परिवर्तन होंगे लेकिन परिवर्तन फायदेमंद रहेंगे। ग्रहण का फायदा कैसे उठाएं? जितने समय ग्रहण चल रहा है लगभग रात में 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, उस समय में थोड़ा समय निकाल कर एक बार या 3 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि। कुछ चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर हुई हैं, जीवन में अच्छा परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर नहीं हैं। परिवार और करियर को लेकर जूझ रहे हैं। मिथुन वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव है? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अलर्ट रहें, कोलेस्ट्रॉल को लेकर, पेट को लेकर इस समय दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय आपके बहुत प्रयास करने के बावजूद आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, महत्वपूर्ण काम इस समय आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा है तो बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं, और अगर जाने की जरूरत ज्यादा है तो गाड़ी चलाने में या यात्रा करने में आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। अब ग्रहण की मुश्किल से बचेंगे कैसे? ग्रहण के दौरान लगभग 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में थोड़ा समय निकाल करके एक बार नारायण कवच पढ़ लीजिएगा, और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिएगा, या रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच पाएंगे। कर्क राशि, मानसिक दिक्कतें, भावनात्मक समस्याएं आपको काफी परेशान कर रही हैं, और काफी समय से जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। सूर्य ग्रहण की वजह से कर्क राशि वाले सावधान रहें, क्योंकि उनके करियर में अगले 1 महीने में समस्या दिख रही है। चूंकि ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है, इसलिए कर्क राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं, और इस समय आपको स्थान बदलना पड़ सकता है। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का और अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, ऐसे कर्क राशि के लोग इस समय सतर्क रहें, क्योंकि विवाह टूटने की नौबत आपकी आ सकती है। और नौकरी में अगर दिक्कत आती है, थोड़ा सब्र करिएगा, कुछ समय बाद आपको बेहतर मौके मिल जाएंगे। जितने समय ग्रहण चल रहा है उसमें कम से कम 3 माला या 11 माला सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा, और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिए, या गेहूं की रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा। ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। सिंह राशि, पारिवारिक तनाव इस समय बहुत है, करियर में मुश्किलें आ रही हैं, स्वास्थ्य भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर हम सिंह राशि के लिए ग्रहण की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहिए, क्योंकि बेवजह के विवाद हो सकते हैं, घर की अशांति बढ़ सकती है। इस समय ऐसा कोई काम मत करिए जिससे दुर्घटना हो। वाहन सावधानी से चलाएं, परिवार में, ऑफिस में, पड़ोसियों के साथ बेवजह के वाद विवाद से सावधान रहें। आपकी नौकरी या कारोबार यानी आपका करियर जिस भी तरह चल रहा है उसको चलने दीजिए। इस समय अपने करियर में किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिएगा। इस समय अगर करियर बदलने का रिस्क लेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा। लगभग 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक ग्रहण का समय है। इस समय में 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो ग्रहण की मुश्किलों से बच जाएंगे। कन्या राशि, पहले की तुलना में कन्या वालों का समय बेहतर हो गया है और ग्रहण के परिणाम भी कन्या वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर कोई करियर का मामला है, अगर रुके हुए पैसे का मामला है, अगर पैसा आने का मामला है तो ये तमाम काम इस 1 महीने में पूरे होंगे। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी, करियर में आपकी ताकत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप बहुत दिनों से अगर जाना चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे तो वो इस समय कन्या वालों का हो सकता है। कन्या वाले अपने महत्वपूर्ण काम अगले 1 महीने में निपटाने का प्रयास करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको ग्रहण का पूरा लाभ मिल जाए आने वाले समय में, इसीलिए ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार या 7 बार पढ़िएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। तो मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक आपने देखा कि वृषभ राशि के लिए और कन्या राशि के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं। अब तुला राशि से मीन राशि तक जानते हैं कि इनके लिए ग्रहण के परिणाम क्या हैं। देखिए, तुला वालों का वक्त अच्छा चल रहा है और तुला वाले अपने जीवन में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। इस समय जो ग्रहण आया है इस ग्रहण से भी आपको लाभ होगा। आपके काम में अगर किसी तरह की रुकावट चली आ रही है, किसी तरह की दिक्कत चली आ रही है तो आपके काम की रुकावट दूर होगी। खास तौर से करियर के मामले में कोई काम रुका हुआ है, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है तो वो काम इस समय पूरा होगा। आपकी सेहत के मामले में और आपके जीवन के मामले में इस समय सुधार होगा, स्वास्थ्य और जीवन आपका बेहतर होगा। तुला वाले अगर थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें इस समय, इस 1 महीने में, तो उनको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी इस समय तुला वालों को बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो तुला वाले ग्रहण का पूरा फायदा कैसे उठाएंगे? जितने देर ग्रहण का समय है, रात में 9:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि में, इस ग्रहण के दौरान 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपका कल्याण होगा, ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों के जीवन में परिवर्तन का समय है। प्रेशर जरूर है इनके ऊपर, लेकिन ये धीरे धीरे इस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम देखें तो वृश्चिक वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य की समस्या, खास तौर से पेट की, किडनी की, यूरिन की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। सेहत को लेकर सावधानी बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं, खास तौर से संतान पक्ष के साथ या माता पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान पक्ष और माता पिता के पक्ष को देखना जरूरी है। करियर में अचानक दिक्कत आ सकती है अगर आप लापरवाही करते हैं, करियर के काम ठीक से पूरे नहीं करते तो करियर में दिक्कत आ सकती है, ये संभावना बन रही है। तो वृश्चिक वालों के लिए ग्रहण ये कह रहा है कि जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में रुकावटें हो सकती हैं, इस बात की सावधानी बनाए रखिएगा। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें, या मंदिर में दे आएं, या गाय को खिला दें। ग्रहण के बाद गुड़ का दान करने से आप सूर्य ग्रहण की मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि। शनि की ढैया भी है आपके ऊपर और जीवन से जो सपोर्ट है, जीवन का जो मजबूत हिस्सा है, वो कमजोर हो रहा है। धनु वालों की मानसिक परेशानियां बहुत हैं इस समय, अपने परिवार और अपने लोगों को लेकर के। और ग्रहण भी आपके 8वें स्थान में लग रहा है, तो आपके लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव है। धनु राशि वाले अगले 1 महीने तक सेहत का बहुत ध्यान रखें, अपने हृदय का, अपनी हड्डियों का, चोट चपेट का और डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप चोट चपेट के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए अगले 1 महीने तक वाहन चलाने में सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। देखिए, धनु वालों के जीवन में इस समय ऐसे मौके आएंगे जब वो गलती करें और मुश्किल में पड़ें। इसीलिए धनु वालों को कहना ये है कि जल्दबाजी में आकर के, भावनाओं में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक मोटे तौर पे ग्रहण है, 12 और 13 की मध्य रात्रि वाले स्थिति में। तो ग्रहण के दौरान 1 बार या 3 बार नारायण कवच पढ़िएगा ताकि अगले 1 महीने तक आप सुरक्षित बने रहें। और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ और गेहूं का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ग्रहण के साथ तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच पाएंगे। जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। मकर राशि। मकर वालों के जीवन में कुछ चीजें बेहतर हैं और कुछ चीजें खराब हैं। जैसे करियर में उठापटक चल रही है, परिवार का मामला ठीक है, तो ग्रहण की वजह से करियर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ग्रहण की वजह से करियर में समस्या आ सकती है और करियर में मुश्किल की वजह से आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ऑफिस में शांति रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए कि नौकरी में आपको दंड मिले। वैवाहिक जीवन में शांति रखें और जो आपके मित्रों के साथ आपके संबंध हैं, जो मित्रों के साथ आपका रिश्ता है, उसका विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रहण का प्रभाव मकर वालों के करियर में उठा पटक दिखा सकता है, सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि। मानसिक परेशानी बहुत है और बहुत सारे काम आगे बढ़ बढ़ के रुक रहे हैं आपके। ऐसे इस कठिन समय में ग्रहण आपको सपोर्ट करने आ रहा है। अगले 1 महीने तक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन मजबूत होगा, सेहत अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी। नए काम की और करियर की शुरुआत इस समय हो सकती है, करियर में आपको सफलता मिलेगी। और आपके काम के लिए, आपकी मेहनत और आपके प्रयास के लिए आपको सम्मान मिलेगा, जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो कुंभ वालों की मुश्किलें कम होंगी, मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होगी और करियर में लाभ होगा। ग्रहण के दौरान अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें 3 बार या 7 बार तो ग्रहण का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। मीन राशि। मीन वालों के जीवन में थोड़ा बदलाव चल रहा है और परिवार को लेके, भावनाओं को लेके थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मीन वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। इनकी सेहत बड़ी तेजी से बिगड़ सकती है। इसलिए मीन राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई कोशिश कर रहे थे तो वो महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए रुक सकता है, परेशान मत होइए, कुछ दिनों बाद आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यात्राओं में विशेष सावधानी इस समय मीन वालों को रखनी है, क्योंकि दुर्घटना के योग आपके साथ बने हुए हैं। किसी भी छोटी या बड़ी यात्रा पर जाने में सतर्कता बनाए रखिएगा। ग्रहण के दौरान यानी 12 अगस्त की रात के लगभग 9:30 बजे से और 13 अगस्त के मिडनाइट में लगभग 1:30 बजे तक ग्रहण है, तो इस दौरान सूर्य मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में कहीं है ड्रामा तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन का पावन महीना चल रहा है, हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्सव मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, चाहे शिव पार्वती हों या श्री कृष्ण और राधा या फिर श्री राम, इन सब की गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र मिलता है। और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। और इसी कड़ी में अयोध्या के राम मंदिर में भी एक बार फिर से रामलला के झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट।

रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा

0: इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
1: तो निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहां वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहां पधार करके और सबके साथ वहां साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है, वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलनोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलनोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तर द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुंचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2-3 घंटे विशेष झूलनोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झूलनोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झूलनोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झूलनोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झूलनोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झूलनोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झूलनोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झूलनोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मैंग शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

सास बहू और बेटियां में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में कहीं है ड्रामा तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं से आज शाम मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह, ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में दो और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर, शहनवाज को मिला कांस्य पदक। भारतीय शटलर अश्विता चालिहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल, चाइना की हान की आन शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर बनी चैंपियन। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा, शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति, वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में आज तिरंगा अभियान का शुभारंभ, लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, कहा तिरंगा हमारी सादगी, विकास और विरासत का प्रतीक है। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज, 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा, अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: चाइना में आयोजित विश्व युवा ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर सामने आई, साग्निक रॉय और सयंतन कुशारी ने ब्रिज में जीता स्वर्ण पदक। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर मेडल। राजस्थान के बसंत ने इससे पहले एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भी जीता था गोल्ड मेडल, अब तक भारत के हिस्से में दो सिल्वर मेडल्स। अश्मिता चालिहा ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता, अश्मिता ने हान की आन शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। अश्मिता ने चाइना की हान की आन शी को हराकर जीता खिताब, भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा बनी कोरियन मास्टर्स चैंपियन। कामिका एकादशी पर शिवालयों में उमड़े कांवड़िए, बाबा का किया जलाभिषेक। मुंगेर में घुटनों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला शिव भक्त, 108 किलो की मूर्ति कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा शिव भक्त भी आया सामने। फरीदाबाद में दिखा जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया अनोखा शिव भक्त, प्रेमानंद महाराज के लिए कर रहा है दंडवत कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान नजर आया नन्हे शिव भक्तों का हौसला, स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही हैं नन्हे कांवड़िए। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों ने निकाली अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से बुलडोजर पर लेकर आए पवित्र गंगा जल। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उमड़ रही है कांवड़ियों की भीड़, बोलबम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा परिसर। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटे बीजेपी नगर विधायक, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन किए गए, लोगों को हेल्थ के लिए किया जा रहा है जागरूक। हरियाणा के नरनौल में यूथ मैराथन का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। यूथ मैराथन में लोगों ने तिरंगे के साथ लगाई दौड़, हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सावन मास की कामिका एकादशी पर जगन्नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भक्तों ने किए भगवान के दर्शन। पूरी जगन्नाथ मंदिर के आगे लगी लंबी कतार, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। एकादशी के पवित्र मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे भक्त, विधि विधान से पूजा अर्चना की। उज्जैन में कामिका एकादशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त भस्म आरती में शामिल हुए। प्रसिद्ध गायक बी प्राग भी पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार, आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में बढ़ी भक्तों की संख्या, हजारों की संख्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं राम भक्त। कामिका एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में लगाई डुबकी, जल भरकर शिवालयों की ओर रवाना हुए। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ी आस्था, शिव भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया। रामनगरी अयोध्या में आगामी झूलनोत्सव की जोरदार तैयारी, समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी की बैठक। श्रावण शुक्ल तृतीय यानी कि 15 अगस्त की शाम को बेल टीला जाएंगे रामलला, पालकी यात्रा के बाद झूले पर विराजमान होंगे भगवान राम। देश भर में आज से घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, 17 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, बड़ों के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी रैली में शामिल हुए। लखनऊ में सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी साथ मौजूद रहे। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम मोहन यादव भी रैली में शिरकत करते हुए दिखे। रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में घर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। धनबाद में दिखा चमत्कार, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी युवती को घंटों की मशक्कत के बाद जिंदा बाहर निकाला गया। स्थानीय युवकों की मदद से मलबे में फंसी नजमा को निकाला गया बाहर, जिंदा बचने पर भगवान का किया शुक्रिया। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप पर ट्रिब्यूट रन 5K का आयोजन किया गया, एवलॉन्च में जान गंवाने वाले पर्वतरोहियों को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों ने नाट्य संगीत लोगों से जागरूक किया। पुडुचेरी पुलिस गृह मंत्री ने सौंपा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान, गोरी मिड्डू पुलिस ग्राउंड में हुआ समारोह। पुडुचेरी में सभी धर्मों के गुरुओं की मौजूदगी में हुआ समारोह, सभी ने देश हित में प्रार्थना की। समारोह के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया, पुलिस जवानों की ओर से दी गई सलामी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर वायुसेना बैंड आज देगी खास प्रस्तुति, मास्टर वारंट ऑफिसर श्री हरि करेंगे नेतृत्व। वायुसेना बैंड में अग्निवीर, वायु, महिला बैंड सहित 40 संगीतकार होंगे शामिल। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का मनाया जाएगा जश्न। सिंगर विटनी भी बनी बाबी सिग्नेचर सीरीज का हिस्सा। मेटल ने म्यूजिक वीडियो वाले लुक से लॉन्च की उनकी डॉल। डॉल को रंग बिरंगे इयररिंग्स और हील्स के साथ माइक्रोफोन स्टैंड सजाया गया। विटनी की भाभी पैट ने मेटल की क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर तैयार किया है। एटलांटा में पांचवें लेजेसी ऑफ लेगेसी ऑफ लव गाला में डॉल का अनावरण किया गया। विटनी दुनिया की महान गायिकाओं में शामिल हैं। ब्रिस्टल में भव्य इंटरनेशनल बलून फेस्टा का आयोजन किया गया। सैकड़ों फीट ऊंचाई पर रंग बिरंगे हॉट एयर बलून ने आसमान को बेहद आकर्षक बनाया। ब्रिस्टल में आयोजित इस फेस्टा में 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून शामिल हुए। 1979 से जारी है समारोह की परंपरा। चाइना के अनहुई में तैयार किया गया स्मार्ट पेट कलर, तो वहीं कुत्तों के भौंकने को की आवाज को इंसानों के लिए समझने लायक जानकारी में करेगा ये कॉलर कन्वर्ट। कॉलर से पालतू जानवर की भावनात्मक स्थिति को समझने का दावा। मालिक को अपने पालतू के मूड और जरूरतों के समझने में मदद मिलेगी। कॉलर से जुटाया गया डेटा का एआई मॉडल करता है विश्लेषण। मोबाइल ऐप पर दिखाई देती है जानकारी। चाइना में विकसित इस तकनीक के एआई मॉडल को 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड से किया जा रहा है प्रशिक्षित। इंसानों और जानवरों के बीच तैयार होगा भावनात्मक पुल। अनहुई के वुहू इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पार्क में कंपनियां इस तकनीक पर कर रही हैं काम। क्लाउड कंप्यूटिंग की तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टीवी सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है ड्रामा तो कहीं तकरार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेताओं से आज शाम मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में दो और मेडल। हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर, शहनवाज को मिला कांस्य पदक। भारतीय शटलर अश्मिता चालिहा ने जीता अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल। चाइना की हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर बनी चैंपियन। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति। वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आज से तिरंगा अभियान का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने युवाओं के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, कहा तिरंगा हमारी सादगी, विकास और विरासत का प्रतीक है। अयोध्या में झूलनोत्सव की तैयारियां तेज। 15 से 18 अगस्त तक कुबेर टीला तक निकलेगी रामलला की पालकी यात्रा। अब से पीले परिधान पहनेंगे रामलला के पुजारी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सबका सास बहु अल्फेटिया के इस नए एपिसोड में। आप सोच रहे होंगे आज हमारे स्टूडियो के ये दोनों स्पेशल मेहमान कौन है। ये है सयानी बिल्ली और ये है भोला बिल्लू। आज ये दोनों ही अपने अपने नजरिए से सुनाएंगे हमें एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर कहानी। तो क्या आप हैं तैयार, क्योंकि ये दोनों तो हैं एकदम रेडी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
5: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी वीकेंड स्पेशल की गुड न्यूज में आज देखिए खतरे में होगी ईशान की जान, रोहिणीका पर फिर उठेंगे सवाल।
6: उसे प्रॉमिस किया था कि आप ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, फिर क्यों तोड़ा अपने वो प्रॉमिस।
5: गौतम के खिलाफ फिर एक बार रचेंगे रोहिणीका और गुरु नया षड्यंत्र, क्या हो पाएगा गौतम का खुलासा।
7: कुछ और सोचो, गुरु चौधरी हैं, बाहर बहुत इज्जत है हमारी।
8: चुप, कोटी से बाहर जाना ना, तो निक्की जो बोली वो करना पड़ेगा।
5: बाल बाल बचेगी राध्या, दादी मारेगी उसे ताने। सम्राज्ञी के गुंडे करेंगे विक्रांत और उसके परिवार पर हमला। तो खतरों के खिलाड़ी में दिखेगा डेयरडेविल अंदाज। सितारों की होगी धमाकेदार पार्टी। मोनालिसा से करेंगे खास मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। तो

0: हाँ हाँ सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू, देखिए जब तक कहानियों में नहीं आएगा ट्विस्ट तब तक कैसे आएगा एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये ट्विस्ट ही तो लेकर आते हैं कहानी में नए नए मोड़। अब तुम दोनों ही सोचो, अगर हमारी जिंदगी ऐसे ही सीधी साधी चल रही हो, रोजाना हर दिन हो बिल्कुल सेम टू सेम, तो कैसे होगा एक्साइटमेंट। ये तो ये चैलेंजेस ही लेकर आते हैं हमारी जिंदगी में भरपूर एक्साइटमेंट। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको सीधा इश्क जुनूनी के सेट पर और देखते हैं कैसा है यहाँ पर इश्क का जुनून।
1: तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ,
2: गुरु रूहानी के प्यार की कसम।
1: तू है तो मैं हूँ कसमें बादे क्यों, तू है
2: गौतम की एंट्री।
1: कसमें तेरा
3: नहीं नहीं हम ये नहीं करने वाले, कुछ और सोचो, गुरु चौधरी हैं हम, बाहर बहुत इज्जत है हमारी।
2: गुरु रूहानी का नया षड्यंत्र।
4: चुप, कोटी से बाहर जाना है ना तो निक्की जो बोली वो करना पड़ेगा।
2: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जैसे तैसे गुरु ने रूहानी की हल्दी रोक तली, लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे वही आज अपना प्यार निछावर करने के लिए रूहानी पहुँच गई है गुरु के पास और कर रही है प्यार भरी बातें।
4: मैं नहीं जानती कि तुमने ये सब कैसे किया और मैं जानना भी नहीं चाहती। जो राक्षस की हल्दी से बचाने के लिए थैंक यू।
3: ऐसे कैसे नहीं बचाते, जब तुम्हारे दिल पे हमारा नाम है तो हल्दी भी किसी और को कैसे होता।

0: तुम्हें गौतम सिंह के नाम से मेहंदी लगा
1: दूँ। कल नहीं आया ना तुम
2: इसी बीच गुरु को होती है किसी के आने की आहट और देखिए कैसे वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। भाई अच्छा हुआ क्योंकि ये तो गौतम था और देखिए कैसे रूहानी उसे देखकर डर गई।
0: पहले रसम केक में जल्दी गए और फिर खुद ही नहीं आए।
2: भाई जैसे तैसे रूहानी गौतम को टाल देती है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर एक बार होती है गुरु की एंट्री, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर गौतम के खिलाफ नया प्लान रच रहा है।
3: नहीं नहीं हम ये नहीं करने वाले, कुछ और सोचो। गुरु चौधरी हैं, बाहर बहुत इज्जत है हमारी।
0: चुप, कोठी से बाहर जाना ना तो निक्की जो बोली वो करना पड़ेगा।

0: गुस्से का ध्यान रखें। जीत के इतने करीब आकर मान नहीं सकते थे।
1: ये वाला थैंक यू हमें भी चाहिए। हम हल्दी में मदद किए ना तुम्हारी, इतना तो बनता हमारा भी।
0: रोमांस खत्म हो गया तो हम अपने काम पे लगे।
1: गाड़ी नहीं पहनेंगे।
2: ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गुरु और रूहानी का ये मास्टर प्लान गौतम को एक्सपोज करने में कामयाब होगा या फिर दुल्हनिया बन जाएगी रूहानी गौतम की। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू तो यहाँ घबरा गए हैं क्योंकि अब लेकर चल रहे हैं हम आपको खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 के मंच पर। और यहाँ तो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स जो हैं तैयार हर डेंजर को फेस करने। अब देखिए इन सब का एक ही एम है कि जीतना है खतरों के इस खेल को। यहाँ तो है ढेर सारा एक्साइटमेंट, सो लेट्स चेक इट आउट।
4: सर आपको पता है हमारे इस सीजन में 14 प्लेयर्स हैं। 14वां वो जिसको रोज शाम को बस में बैठ के शगुन बोलती, पता आज क्या हुआ? That Gaurav Khanna, he keeps overlapping me every ये ऋतिक, मैंने कहा क्यों आ जाता है बार बार? पैसे के लिए कह रहा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो यहाँ क्या करण भाई को प्रपोज करने आए?
5: स्ट्रेस मत ले,
6: इट्स ओके।
7: उठा, पूरी ताकत से उठा, आग बंद करो, उठा ले।
8: Very good.

0: दो बेबी।
1: सॉरी, वेरी गुड, तेरा काम खत्म।
2: क्रॉल करके जाओ यहाँ से।
3: यस।
4: हरी, गो टू द बिगनिंग। यहाँ से शुरू किया था माजा।
5: आज से मेरे सारे स्टंट तू करेगी।
0: वेरी गुड।
1: पहले बैठ के नंबर देख ले, फिर खड़ी होके खोलना वो लॉक।
2: 6-9-4-6-9 खड़े होना है।
4: हाँ, खड़े होके।
1: ये आराम से। यस
0: यस, गुड, होल्ड इट।
1: लॉक खोल आराम से पहले। और आना आराम से। खुले, लॉक खींचना है, नंबर डाल के लॉक खींचना नीचे।
2: 649
6: कमांड पर आना। यू गॉट इट।
2: 649-694-469
1: खुलेगा, खुलेगा।
2: अस्सलामुअलैकुम।
4: वालेकुम सलाम। अभी आपको टर्न हो गया, वापस जहाँ से शुरू किया था वहाँ आना है।
2: जहाँ से शुरू किया था
4: फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है।
2: ओके।

0: वेरी गुड फराना, आराम से।
1: चल क्विक क्विक, अब क्विक करेंगे।
2: बहुत बढ़िया,
0: चलो करो, आराम से करो पहले।
1: नहीं नहीं अभी आराम नहीं, अभी क्विक, टाइम बचाना है।
2: टाइम बचाना है, टाइम बचाना है।
1: बहुत अच्छा किया अभी तक।
0: वेरी गुड, वेरी गुड, करेगी करेगी, चलो
1: लेट्स गो। वेरी गुड, ट्रोल ट्रोल, वेरी नाइस फराना। दो
0: हां,
3: वंडर वुमन।
1: यस फराना, यहाँ से स्पीड बढ़ा, थोड़ा स्पीड बढ़ा,
2: यहाँ से वॉक करना है, यहाँ से वॉक करना है।
1: कल टाइम बचा अभी थोड़ा।
4: वेट गाइस, प्लीज दो मिनट चुप रहो प्लीज।
1: ओके ओके, गो गो।
2: बहुत अच्छा,
1: बहुत बढ़िया फराना।
4: वेरी गुड फराना,
1: क्या बात है, क्या बात है। काले प्लेटफॉर्म
0: पे अभी इसने किया, फास्ट किया,
2: फास्ट
1: बस
2: किया।
1: खड़े रहो अभी, दो मिनट रुको।
0: इसने गाना भी नहीं गाया ना।
1: नाउ वेट, टाइम स्टॉप किया। वेट, अभी वो सेफ्टी लाइन डालेगा आप पे।
4: कूदने को तो नहीं बोलोगे ना?
1: टर्न टर्न, फराना ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं बोलूंगा तब आपको जंप करना है।
4: अरे यार,
1: जब बोलूंगा लेकिन तब।
4: ये नहीं बोला था करने को,
1: सारा थोड़ी बताया था, ऊपर जाने के बाद बताया था क्या करना है।
4: ये नहीं था, ये नहीं था, ये था ही नहीं, बोला ही नहीं था आपने।
1: आप बोल दिया।
4: अरे यार,
3: फराना इट्स फाइन, यू गॉट इट, जस्ट जंप।
0: चल चल चल, होगा।
1: अभी टाइम शुरू कर रहे हैं वापस।
4: नहीं यार,
1: थोड़ा आ गया ना। और ना स्विंग करना है, जंप नहीं लेना पड़ा।
4: रोहित जी एक सेकंड, मेरा हार्ट मुंह में आ रहा है।
1: एकदम प्रोमो शॉट मिलेगा, ये याद रखो लाइफ टाइम के लिए।
4: सच लगेगा?
1: हाँ। कुछ नहीं होगा, रुको लेकिन रुको। रेडी एंड 3 2 1
3: Jump, jump, jump. Come on, Pranak. Go.
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: Nice tight.
4: यार सब कुछ ठीक था, मतलब सब चीज के लिए तो रेडी थे, लेकिन जंप के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी गाइस। जो मैं गिरी हूँ, मुझे बस लगा मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है।
0: मम्मी आप सही कह रही थी, नहीं आना था इस शो में। पापा आपकी वजह से आया हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूँ।

0: for level 2.
1: नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मजा आएगा।
2: मिलने के ऊपर

ये देखते रहे क्या हो रहा है, तो जब होगा तो तू विजुअल करना या बाहर से कैसा लगेगा।

0: Go.
1: Land.
2: He's given up.
1: Good. Good. Good. Good. Thank
3: you.
4: पुराने पापी लेकर
5: नए भी है हम
1: लोग और ही है इधर
6: भाई ये कौन है भालू
1: और
6: सर पहले इनके मुंह से कैमरा हटाओ अपने मुंह पे लेके जाओ पता है मेरा बेटा बड़ा वाला गोला जुहू में पड़ता है जब भी आपके घर के सामने से निकलते हैं ना वो चीखे मारने लग जाता है कहते अमीर पापा का घर इतने सारे माले हैं फर्स्ट वाला माला जो मेरा बेटा है काजू उसने चुन लिया है
1: आजा
6: उसे अपना देख लो कौन कौन सा
1: फर्स्ट वाले माले पे गोलियां चली है चाहिए
7: गोली वाला गोले को दिया

0: हर्ष ने तो सिर्फ नाम डुबाया था, मैं कल खुद डूब गया था।
1: डूब रहा है सबको।
2: अगर तुमने भी नाम डुबाया ना हर्ष, तो लोग अपने बेटों का नाम हर्ष रखना
1: पड़ेगा। एग्जैक्टली, हर्ष नाम कोई रखेगा ही नहीं।
2: मैं लेट लेट भी जागती रहती हूँ, वीडियो कॉल कर लेना।
0: चल बाय
3: बाय
4: बाय
5: बाय
1: बाय।
6: अरे सर मैं बताता हूँ सर, उसने
0: ये रियल नाम है।
6: हाँ ये रियल नाम है सर।
0: ये किसका नाम है? विनोद खन्ना
6: सर, पापा का।
0: और राजेश खन्ना
6: मेरे कजन का है। एक मेरा डिस्टेंट कजन है, उसका नाम ऋषि कपूर है। और एक उसका कजन है, उसका नाम राज कपूर है। तो मतलब थोड़ी फिल्मी फैमिली है सर।
0: क्या
6: तो,
0: बात है। एक और है
6: सर, वो थोड़ा
0: ये अपना हुसैन।
6: हाँ सर, वो आपके खतरों में भी आया था।
0: हुसैन, हसीन, हुसैन, हुसैन, सर।
6: तो उसको मैंने मैसेज किया था कि भाई मैं खतरों में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं आ पा रहा था। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं जाओ, रोहित सर बहुत हेल्प करते हैं और उनके साथ रहोगे बहुत कुछ कर पाओगे, सीखोगे। तो मैंने उसको बस वो लास्ट वीक जो हेलीकॉप्टर वाला था, तो मैंने उसको लिखा था कि मैंने किया। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन मैंने कहा यार मेरी वाट लग रही है हुसैन, आई एम शिट स्केर्ड एंड पेट्रीफाइड। यही लिखा है उसने कि वाट तो तेरी पहले भी लगती थी। तो मैंने
0: वही, क्या वाट लगी हुई है पहले
6: सर? ये मुझे नहीं पता, ये मोस्टली सब एक्टर्स हैं यहाँ, शायद इनके साथ ऐसा हुआ हो नहीं हुआ हो, पर वेरी अर्ली इन माय करियर मैंने जब टेलीविजन शुरू किया था, तो मेरे एक दो शोज जो चले उसके बाद मुझे काम मिलता रहा, बट समहाउ द शोज डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग बियॉन्ड अ ईयर। एक टैग लग गया था सर मेरे पे कि गौरव के शो नहीं चलते, एंड इट्स अ वेरी हैवी टैग फॉर एन एक्टर जो अपना सब कुछ छोड़ के अकेला मुंबई में रह रहा है, काम ढूंढ रहा है। तो जो भी रीजन था, मतलब जब भी शो चलते थे तो इट वॉज द क्रेडिट ऑफ एवरीबडी एल्स, एंड वेन द शो टैंक्ड इट वॉज ऑलवेज लाइक यार गौरव इज अनलकी, गौरव पनौती है, इसको मत लो। इनफैक्ट सर मैं, मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं कलर्स चैनल पे हूँ। कलर्स चैनल जब स्टार्ट हुआ था तो अविका बालिका वधू को प्रमोट करने गई थी, और मैं, मेरा शो था जीवन साथी 9 o'clock, तो मैं वो प्रमोट करने गया था। वो शो अच्छा चला। उस शो के बाद 2010 के बाद मुझे कलर्स में सीधा काम 2025 में मिला है गाइस, दैट आल्सो बिग बॉस। तो दैट वाज रियली वेरी, वो मेरा एक फियर है, जब भी मैं कोई ऑडिशन देता हूँ कुछ देता हूँ, मुझे आज भी लगता है कि यार अगर ये शो नहीं चला तो अगेन दैट मेडल दे विल गिव मी कि यार इसके शो नहीं चलते। आई डोंट नो, इट्स अ वेरी,
0: लेकिन अब जो पिछला बिग बॉस किया यादव विनर, कमाल का चला।
6: हाँ सर,
0: आई कैन गारंटी यू कि ये भी कमाल का जाएगा शो।
5: ये
0: वो सब नहीं होता है कुछ यार, सब किस्मत का खेल होता है, टाइम की बात होती, कभी पलटी मारेगा टाइम वो कोई नहीं जानता। दुनिया का तो काम ही है बोलना, वो बोलती रहेगी अपना काम है, काम करते रहो एंड बी हैप्पी।
6: थैंक यू सर।
0: लो
6: सर वापस
0: लेना है फोन, तो वापस लेना पड़ेगा, हाथ भी मिला लो, आओ।
7: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू को तो होना है हमारी एयरलाइन पर सवार, जो लेकर हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज के सारे हाईलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन का बोर्ड, बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की पेटी, और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर। गेट सेट गो।
8: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में भाई राध्या पर एक नहीं तो एक मुसीबत आती ही रहती है, तभी तो अब राध्या को विश्वकर्णिया ने पकड़ लिया है, और भाई देखिए कैसे उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाई आज तो राध्या के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन इन सब का जिम्मेदार दादी राध्या को ही ठहरा रही है, और देखिए कैसे उस पर इल्जामों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन भाई प्रथम आज उसका साथ दे रहा है।

0: मुझे उसने अपनी वर्दी दिखा दी। अरे तुझे हमारी नाराजगी नहीं नजर आई ना, तो कम से कम उसका इशारा तो समझ ले। सिर्फ हम ही नहीं, भगवान भी तुझसे नाराज है, समझी?
1: घर में किसी के साथ भी हो सकता था, पर हमारे नाथ ने तुम्हें बचाया है राधा। देखो कितना बड़ा झूठ तुम्हारे सामने आकर गया, हो सकता था ये तुम्हारे सर पे गिर जाता। फिर देखो मेरे नाथ ने ना तुम्हें सजा नहीं दी है, तुम्हें बचाया है।
0: प्रथम तुम्हें शायद ये सिर्फ हादसा नजर आ रहा है, लेकिन हमें तो इसमें भगवान की मर्जी साफ दिखाई दे रही है।
2: दरअसल अभी सबसे बड़ी मुसीबत गई थी हमारे घर से। फाइनली मित्तल्स को उनका घर वापस मिला है, कलावंती मोंटू बबलू सब चले गए हैं, और इसी खुशी में दादी ने एक गृह शांति की पूजा रखवाई थी। तो उसके गुरुजी कहीं बहुत शहर से बाहर एक आश्रम में रहते हैं, तो राध्या प्रथम उन्हें इनवाइट करने के लिए गए थे, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और बहुत मौसम ख़राब हो जाता है, तो वो लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे प्रथम बाहर चले जाते हैं फ़ोन लाने, राध्या गुफा के अंदर फंस जाती हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि राध्या का गला सूखने लगता है, उन्हें सांस नहीं आती है, तो वो वहीं कहीं गुफा का पानी पी लेती हैं जो नीला कलर का होता है, जो उन्हें दिखता नहीं कि नीला कलर का है। तो तब से विश कन्या उनके साथ घर में आ गई है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। राध्या पूजा में नहीं बैठ पा रही हैं, मंत्रों की आवाज़ से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, शंख से प्रॉब्लम हो रही है, उनके नाखून धीरे धीरे नीले होते जा रहे हैं, उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। विषकन्या जब उनकी बॉडी से बाहर निकलती है तो राध्या बेसिकली डेड बॉडी जैसा हो जाती है पूरी। तो अभी एग्जैक्टली राध्या को पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, प्रथम को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आउट ऑफ सडन राध्या की इतनी तबीयत कैसे ख़राब हो रही है। तो किसी को पता नहीं है, सब विषकन्या की वजह से हो रहा है। तो राधे अभी बस मंदिर में जा रही होती हैं कि कल पूजा में नहीं बैठ पाई तो मैं दिया जला के भगवान को सॉरी बोल देती हूँ, पर तभी विषकन्या झूमर गिरा देती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है कि भगवान के पास जाएगी तो प्रॉब्लम होगी, तो वो राध्या को हमेशा दूर रखने की कोशिश कर रही है। इसी चक्कर में राध्या को चोट भी लग गई है। अभी आगे जाके राध्या ने खीर बनाई है और राध्या का वो जहरीला नाखून खीर में लग जाता है, तो खीर भी जहरीली हो जा रही है, चूहा मर रहा है, दादी राध्या को डांट रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पर किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस रीज़न से हो रही है, क्योंकि अभी तक विषकन्या हमारे सामने नहीं आई है। तो अब जब विषकन्या सामने आएगी तो ही जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है घर में।
3: टीवी के सीरियल मन सुंदर में मैं आज दादी रुचिता और जानवी को ब्यूटी कंपटीशन में लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर मकसद ब्यूटी कंपटीशन का नहीं बल्कि रिश्ता तय करने का है। तभी तो रुचिता को मॉडर्न और जानवी को देसी बनाकर दादी इस कंपटीशन में लेकर आई है। भाई दादी हो और कोई चाल का आगाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से अपने मोहरे बिछाएंगी दादी।

देखो,

0: ये कंपटीशन का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसा ही ऐसी इच्छा लेकर के हम लोग आए हैं कि भाई किसी भी तरह से जान भी जीते। और ये कंपटीशन थोड़ा कठिन है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत एक्साइटिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस कंपटीशन के बीचों बीच, जो कि देख के हमारे दर्शकों को बहुत मज़ा आने वाला है।
1: अरे माय डियर सयानी बिल्ली एंड माय डियर भोला बिल्लू, तुम दोनों जानते हो इस सेलेब को? अरे हमारे ऑडियंस भी जानते हैं इन्हें, बताइए कौन है? अरे ये हैं वो। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की ओर, जहां हमारी टीम लगी है इनसे, जी हाँ इनसे एक खास मुलाकात। फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस इंटरेस्टिंग डे आउट की ओर।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे पॉडकास्ट पे खास मेहमान हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिनको मैं जानता तो बहुत वक्त से हूँ, इनका मैंने बहुत बड़ी जर्नी देखी है। इन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए, टीवी शोज किए, फिल्में की, लेकिन एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो आज कोशिश करूंगा कि पॉडकास्ट में आपको इस अदाकारा की, मैं आपको लाइफ जर्नी बता सकूं जो लाखों लोगों को इंस्पायर करके। तो मेरे साथ है मोनालिसा।
1: थैंक यू सो मच अमित जी।
0: तो मोनालिसा को जब भी मिलता हूँ मैं, इनको इनके ओरिजिनल नाम से बुलाता हूँ, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोनालिसा का ओरिजिनल नाम है अंतरा।
1: अंतरा
0: बहुत ही
1: विश्वास, राइट।
0: खूबसूरत अंतरा, अंतरा विश्वास, बहुत ही खूबसूरत नाम है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे कोलकाता के अंतरा विश्वास आज मुंबई की पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा बनी है।
1: एक्चुअली अंतरा से मोनालिसा तब हुई जब मैं मुंबई आई थी। तब यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी, अंतरा माली। मतलब somehow she was not doing so good। तो मैं यही सोचती थी कि ऑलरेडी एक अंतरा है। फिर वो क्योंकि मैं उस समय मैं बॉलीवुड ही ट्राई कर रही थी, तो मैं क्या मालूम फिर ये नाम से कंफ्यूज हो जाए लोग। और मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव रखती थी, तो उस हिसाब से आई वांटेड अ नेम जो न्यूमरोलॉजिकली सही हो और वर्ल्ड फेमस हो। एंड मोनालिसा को कौन नहीं
0: तो
1: जानता,
0: मोनालिसा
1: फेमस
0: बेसिकली
1: पेंटिंग।
0: ये तो ये फेमस पेंटिंग ही रेफरेंस दिया आपके नाम को। मैंने सुना आपके चाचा जी ने घर में किसी फैमिली मेंबर ने नाम दिया था, इज इट सो?
1: नहीं, हाँ, मतलब पहले के ये सब आई थिंक न्यूज में ऐसे आया होगा, बट इट वॉज अबाउट मी।
0: जी,
1: या
0: आई वर्क फॉर यू बिकॉज मोनालिसा,
1: या
0: जब से अंतरा मोनालिसा बनी द लाइफ चेंज्ड। बट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट था बिग बॉस जब आपने किया बिग बॉस 10, बिकॉज पर्सनली प्रोफेशनली आपके लिए वो बिकॉज टर्न अराउंड था। यू
1: नहीं,
0: वर
1: बट
0: वेरी,
1: एक्चुअली मेरे लिए भोजपुरी फिल्म्स ही मेन
0: यस आई
1: है।
0: वाज कमिंग टू दैट, बट
1: या
0: नेशनल लेवल पे
1: हाँ,
0: लोगों ने
1: समझ रही
0: जाना, एंड बिकॉज यू आई वेरी फ्यू पीपल हु एक्चुअली गॉट मैरिड इन बिग बॉस वाज यू। तो ये जो शादी बिग बॉस में की, तो ये कैसे हुआ? बिकॉज जनरली रियलिटी टेलीविजन आज की तरह नहीं था। मैं उस वक्त बिग बॉस 10 जब आया था, आज तो बहुत तमाशा बन गया है।
1: हाँ
0: तो लेकिन उस वक्त इट वॉज वेरी क्यूट मोमेंट एंड आई स्टिल रिमेम्बर, इट वॉज वेरी क्यूट, बिकॉज मुझे बिल्कुल फेक नहीं लगा था, एक बहुत रियल रिश्ता
1: थैंक यू।
0: निभा था, और अब तक उसके एग्जाम्पल है कि आप एक हैप्पी कपल है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।
1: थैंक यू।
0: तो कैसे हुआ था शादी का फैसला, एक इम्पोर्टेंट फैसला रियलिटी टेलीविजन नेशनल टीवी पर?
1: अगेन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हम लोग भोजपुरी फिल्म में मिले थे 2008 में, और जब हम लोग मिले थे तभी हम लोग दोनों ही स्ट्रगल ही कर रहे थे कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है इन भोजपुरी फिल्म्स। बट वी वर टुगेदर, वी स्टार्टेड लिविंग इन टुगेदर विद इन 3 मंथ्स। तो हम लोग एक साथ रहने लगे थे, फिर उसके बाद लंबा हो गया था, तो फैमिली प्रेशर तो काफी था ही कि आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, शादी कर लो, शादी कर लो, जब करना ही है तो क्यों नहीं। इनफैक्ट 2-3 बार ऐसे हुआ भी था, बट हमारे उस समय मॉनिटरी कंस्ट्रेंट्स भी थे कि मतलब एक कोलकाता वे में करना है, एक यूपी, क्योंकि विक्रांत यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे भी करना है। तो इट वॉज समहाउ इट वॉज नॉट हैपनिंग। तो बट जब मैं बिग बॉस गई तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और उस समय मैं एकदम न्यू थी। मतलब रीजनल जोन से जस्ट मैं इतने बड़े टेलीविजन शो में गई, रियलिटी शो जो मेरा फेवरेट हुआ करता था, अभी भी है। तो मैं वहां गई और फिर मैं उस वीक तो मैं नॉमिनेटेड थी, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बार मैं अब तो निकल ही जाऊंगी। मतलब लगता है अंदर रह के ऐसा लगता है, बट फिर मुझे अचानक से बुलाया गया कि आपको इस रूम में आना है।
2: बिग बॉस चाहते हैं कि मोनालिसा एक्टिविटी एरिया में आए।
1: तो मैं गई तो जाके देखा मैं विक्रांत, एंड आई वाज लाइक ओके, तो मुझे तुम लेने आए हो। मैंने ऐसे डायलॉग भी बोला था, आई डोंट नो वो क्लिप आया था कि नहीं।
3: चलिए
1: चलो
3: घर के अंदर जाते हैं, चलो।
1: सच्ची में?
3: मुच्ची में?
1: तो बोले नहीं, बिग बॉस हमारे यहाँ शादी प्लान किए हैं। और मैं तो मतलब मेरे क्या नो झूठ, ऐसे ऐसे मैं भी ऐसे बेवकूफ जैसे वैसे बोल रही थी। तो सीरियसली, और भी गेस्ट्स आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी आ रही है, मेरे घर से फैमिली वाले आ रहे हैं, और भी इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं। सो दिस वाज सच अ बिग सरप्राइज एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। सच्ची
3: करें।
1: क्योंकि मैं तो मुझे कुछ नहीं बताए थे अंदर एंड दे जस्ट गॉट इन टच विद विक्रांत और उसने जब उसको जब कॉल गया तो वो भी थोड़ा सा हो गया बट उसको ये भी बोला था ऐसा भी तो हो सकता है कि मोना तुमको मना कर दे तो ही वॉज कॉन्फिडेंट तो ही सेड कि वो कभी मना नहीं करेगी ऑफकोर्स मैं क्यों मना करूंगी और फिर हमारा ये सारी चीजें देख के वो रियल पंडित आए थे ही वॉज फ्रॉम बनारस एंड एवरीथिंग वॉज रियल
3: सच नहीं लग रहा
4: क्या बोल रहे हो
1: बट उसके बाद मुझे बहुत सुनने को मिला बहुत सारे रूमर्स आए कि हम लोगों को पैसे मिले हैं एंड ऑल ये तो इनफैक्ट करण जौहर सर ने तो बाहर आने के बाद मैंने देखा उन्होंने गलत कमेंट भी किया था कि मैं उसको फिल्म दूंगा और फिल्म का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना वो ज्यादा लंबा चलेगी रैदर देन देयर मैरिज सो दिस वॉज द कॉमेंट एंड मतलब मैं तो ऐसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे क्यों बोले एंड सलमान सर सपोर्ट कर रहे थे अरे ऐसे मत बोल अभी अभी नई नई शादी हुई है सो इट वाज वेरी नाइस और हिम क्योंकि सलमान सर हमेशा ही मुझे सपोर्ट किए हैं शो में बट यस दैट्स इट दिस इज आवर स्टोरी एंड वी आर टुगेदर
0: Yes. But Anta, jab Mona Lisa bani, to UP has been very special to you because it professionally gave you a career and personally gave you a husband. Bhojpuri film mein us waqt tak jab aapne karna shuru kiya tha. तो आज बताइए कि पहली फिल्म आपकी कौन सी थी पहली भोजपुरी फिल्म
1: मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी कहां जेबा राजा नजरिया लड़ाई के और ये मैंने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ किया था और जब मैं वहाँ एकदम वो उनका जस्ट एक फिल्म बहुत बहुत बड़ी वाली हिट हुई थी रिक्शा और उसके बाद मेरे साथ ये फिल्म एंड मैं मुझे पता था कि ये बहुत बड़े वहाँ के पहले सिंगर है ही प्लस उनकी बहुत बड़ी हिट हुई है तो और उस समय फिल्म रियल में मतलब कनेक्ट होते थे ऐसे गांव की और और मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे मुझे मौका मिला था सॉन्ग्स एंड ऐसे ऐसे हीरोइंस लोग जो काम करते हैं
0: ग्लैमर होता है भोजपुरी फिल्मों में ऑडियंस का प्यार
1: बट उस समय स्टोरी के साथ ज्यादा था मतलब धीरे धीरे आई थिंक 2011 के बाद ये जो ग्लैमर क्वेश्चन था बोल रहे हैं ना वो चेंज हुआ बट उस समय पहले पारिवारिक फिल्में हैं जिसमें स्टोरी होती थी एंड इमोशंस एंड लोग कनेक्ट होते थे
5: अब हम तो हर दिल से नहीं तो हमरे दिल से खेल रहल बाड़े
1: उसके बाद का जो आया दौर उसमें गाने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे गाने में थोड़ा बहुत जो आप बोल रहे हैं पैसा बट पहले ऐसा नहीं था तभी इतनी मतलब और मेरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म एंड उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक
0: भोजपुरी फिल्मों का
1: जो फिल्म विच यू आर टेलिंग मी मिथुन सर के साथ और मनोज जी के साथ वो मेरी तीसरी फिल्म थी भोले शंकर वो बाद में किया
0: खूबसूरत बात है कि मिथुन चक्रवर्ती इतने बड़े स्टार हैं उनके साथ भोजपुरी फिल्म करना तो बिकॉज़ ही इज लाइक द आइकॉन ऑफ बंगाल
1: आई नो
0: सो आई वाज वर्किंग विद मिथुन इन अ भोजपुरी फिल्म
5: ए बाबू हमरा के बचा ले
6: तू घबरा मत हम तो हर जेठ हम
1: मैं उनके साथ एक और फिल्म में भी बंगाली फिल्म में मैंने एक सॉन्ग किया था उसमें सर थे अगेन तो वो कर चुकी थी पहले बट मुझे नहीं पता था कि इसमें भी सर आएंगे तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स और मैंने विमो के साथ भी एक हिंदी फिल्म किया था बिफोर भोजपुरी
0: ओके
1: हाँ बट समहाउ वो रिलीज डिले होता गया होता क्या मैं भोजपुरी फिल्म केम फर्स्ट
0: आपने दिया कि विमो के साथ आपने एक फिल्म की थी बट उस वक्त जब हम नए नए आते हैं बाहर के शहरों से तो उस वक्त एक सफलता असफलता दोनों मिलती है तो ऐसे में खुद को चेयर अप रखना खुद को मोटिवेट रखना कितना जरूरी है एंड हाउ डिड यू मैनेज बिकॉज इट वाज नॉट एन इजी जर्नी
1: बिल्कुल मोटिवेटेड मैं हमेशा क्योंकि मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी क्योंकि मेरा फैमिली मैं बहुत मतलब वो लोग बोलते थे कि होगा होगा होगा एंड मतलब और उसके बाद जब विक्रांत मेरी लाइफ में आया वो तो और ज्यादा पॉजिटिव परफेक्ट है वो आज भी मुझे आज भी मैं जब मतलब उस समय तो इतना ये जो आजकल का जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी उतना नहीं होता था, कुछ काम नहीं है, यू नो ये है वो है, बट इस हद तक नहीं होता था जो आज है. बट आज भी, आज तो मैं मतलब थोड़ा बहुत हो भी जाती हूँ तो वो मुझे संभालता है. तो फैमिली सपोर्ट की वजह से आई थिंक ये मैं कोप अप कर पाई. तो बट मुंबई में आके यू नो जैसे लोग बोलते हैं सपनों की नगरी, यहाँ पे आके रह के सर्वाइव करके यू नो इतना आगे तक आना, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस.
0: हम हिंदी फिल्मों को पैन इंडियन इंडस्ट्री बिकॉज इसलिए मानते हैं जिस ज्यादा लोग देखते हैं, लेकिन हमारी जो रीजनल सिनेमा है खासकर बांग्ला फिल्म या भोजपुरी फिल्म, उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है और धीरे धीरे आज लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं. और आपने तो बहुत सारी क्षेत्रीय सिनेमा में काम किया, इनफैक्ट ओडिया फिल्में भी की है. तो क्षेत्रीय फिल्में जो रीजनल फिल्म रीजनल नहीं रह गई है आजकल, तो डब होकर आप पता नहीं कौन सी फिल्म देख रहे हो किस ओरिजिनल. तो व्हाट यू फील अबाउट योर एक्सपीरियंस विद रीजनल सिनेमा एंड नाउ फ्यूचर में हाउ डू यू सी रीजनल सिनेमा?
1: अभी अगर मैं देखूंगी तो मुझे लगता है ये मेरा सारा बेस बन रहा था, क्योंकि मेरी शुरुआत मैं कुछ बंगाली फिल्म्स में छोटा मोटा रोल या फिर आइटम सॉन्ग करी, फिर उसके बाद मुझे ओडिशा में बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस मिले और मैं ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता में ट्रेन से जाती थी ओडिशा में जस्ट फॉर वन डे, एंड मैं गाना करके फिर मैं आ जाती थी ओडिया एल्बम्स किया, फिर मुझे ओडिया फिल्म्स मिले और वो मेरा एक जर्नी रहा. फिर मैं मुंबई आई, फिर मुझे कुछ स्मॉल बजट हिंदी फिल्म्स मैंने किया, नॉट विद बिग बिग एक्टर्स बट वहां पे बिग मैं ही होती थी. फिर वहां से मेरा जर्नी भोजपुरी फिल्म्स की ओर गया.
3: प्रिया इतना जल्दी वहां से कहां चली लो, का बात बा?
5: कौनो बात नहीं के.
1: तो वो अगेन एक अलग, तो आई थिंक मुझे लगता है हर, और फिर मैंने तेलुगु तमिल कन्नड़ ये सब फिल्में भी करने लगी, तो सारी मतलब सारा कुछ कवर हो गया. आई थिंक दो लैंग्वेजेस अभी बाकी है.
0: okay.
1: तो वो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी, एक मराठी एंड एक पंजाबी.
0: ओके वेल दैट्स ये दोनों बड़ी खूबसूरत भाषाएं हैं, क्योंकि हम रहते हैं मुंबई में, पंजाबी ऐसे कि आजकल हर गाने तो पंजाबी में बनते हैं. तो कभी आप बोल कितनी लिए पर्सनली, हाउ मेनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक?
1: आई कैन स्पीक बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश,
0: बाकी सब.
1: एंड मैं जब यू नो इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सीखती थी फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मन एंड जापानीज, बिकॉज पहले मैं यू नो ग्राउंड जॉब होस्टेस के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, एयर होस्टेस के लिए भी मैंने अप्लाई किया था. तो मैं उस वो लैंग्वेज सीख, फ्रेंच तो अभी भी मैं थोड़ा बहुत बोल रही.
0: बट टेलीविजन ने मोनालिसा को एक अलग पहचान दी, नजर जब आया उसकी ओडियम दो गई और कैरेक्टर मोना वाज पिक्चराइज्ड, वो छोटी वो लुक.
1: मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, बिकॉज पहले मैं इस शो में ना बहुत कम रोल के लिए आई थी. मुझे नहीं पता था कि कुछ टाइम बाद यही कैरेक्टर इतना लोगों को अच्छा लग जाएगा. आई थिंक इंटरनली जब शो रिलीज भी नहीं हुई तो सब कुछ चेंज होने लगा, एंड देन एवरीथिंग वाज ऑन. तो आई थिंक कुछ तो ऐसा रहा होगा या क्या मालूम क्या हुआ कि ये डायन को ही लोग पसंद करने लगे. डायन वाज एवरीवेयर,
0: डायन वाज द हीरोइन,
1: या डायन को लोग पसंद करने लगे. मतलब ऐसा कौन होता है, मुझे ऐसे डीएम्स आते थे कि ऐसी डायन हो तो हमें चलेगी. इतनी खूबसूरत डायन, इतनी अच्छी ये, मतलब लोग मुझे पेंटिंग्स भेजते थे, मेरे को चोटी बना के फिर लोग खुद अपने आप को ऐसा लुक लेके मुझे फोटोज भेजते थे, वीडियोज भेजते थे. तो सच्ची में कुछ कुछ चीजें मेरा लिखा रहता है. गैस
0: रियलिटी शोज एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा आपकी करियर जर्नी में, आपने विक्रांत के साथ भी कुछ रियलिटी शो किए, कुछ अपने आप भी रहे. तो रियलिटी शोज आपको क्या लगता है कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं अभी? अभी जो आजकल चल रहे हैं डेटिंग वाले रूप बंद कर, मतलब आप तो क्योंकि बिग बॉस का जो कैप्टिव रियलिटी शोज जो आजकल टाइप पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं जुड़ रहे हैं, कहीं ये जो अभी जो ट्रेंड के बारे में क्या कहेंगे आप?
1: मैं कुछ राय बोलूं तो अच्छा है. क्योंकि मैं पहले ऐसा समझती थी रियलिटी शोज मींस रियल, तो जो हम लोग थे उस समय इतना कुछ नहीं होता था. बट आजकल मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शोज में ज्यादा रियल चीजें नहीं, बल्कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आपके पहले मान लीजिए एक दो शो आप कर लिए हो उसमें क्या हुआ था, वो प्रॉब्लम आप इस शो में लाके उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उस हिसाब से कास्टिंग भी हो रही है, फॉलोअर्स वाला एक मैटर हो गया है. तो आई डोंट नो, लाइक अभी थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है
0: जी.
1: हाँ,
0: और ओटीटी शोज एक तरह से एक सेविंग ग्रेस है, खासकर वर्टिकल शोज हो या फिर जो अभी कुछ शोज अभी डायरेक्ट ओटीटी पे आते हैं, तो बोल शो और आपका लेटेस्ट शो आ चुका है लव टू हेट यू.
7: आ गया तू तो मेरी कैसी,
8: बस किसी की नजर ना लगे.
0: टेल मी समथिंग अबाउट इट. आई थिंक बहुत देर बाद रोमांस करती हुई दिखेंगे आप, और वो जोड़ी भी नजर वाली पूरी रियूनियन हो रहा है. मेहती पत्नी राजपूत एंड मोनालिसा को हमने नजर में देखा, और एक बार फिर से लव टू हेट यू में ये क्या कर रही है नजर की जोड़ी.
7: तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा.
1: Love to hate you mein, I am totally hating them and I love to hate them because bahut sare reasons hai. Aur ye jo hamare hum tino ki jo pehle ka journey raha hai usse totally different. Aur main already TV ke sath first time jud rahi hu, aur wo log already season 1 mein kaam kar chuke hain ek sath dono. बट मैं जब मुझे जब स्टोरी सुनाया गया तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये टोटली डिफरेंट है. यू नो, मैं दूसरे भी वर्टिकल शो कर रही हूँ उससे भी डिफरेंट है. एंड हर दिन ये, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्मेट में है, लॉन्ग सीरीज फॉर्मेट में है, तो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया कुछ करने को मिल रहा है. एंड एक आर्टिस्ट के लिए यही चाहिए कि मैं हर दिन कुछ डिफरेंट करूँ, अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नया करूँ. तो वही मुझे मिल रहा है. मैं अलग गेटअप ले रही हूँ, अलग लुक ले रही हूँ, कभी भी कुछ भी बन जाती हूँ. एंड आई एम जस्ट लविंग इट. या
7: आ गया तू तो मेरी कैसी.
0: सुपर नेचुरल शोज का ट्रेंड वापस लौट के आया, आपने वो नजर से शुरू किया था, तो क्या लगता है सुपर नेचुरल शोज कितने जो सुपर नेचुरल शोज आजकल आ रहे हैं, हाउ डू यू सी देयर लेवल, द ग्राफिक, द स्टोरीज, डू यू थिंक. इनफैक्ट अभी एक और शो में भी आपने छोटा सा कैमियो किया था गुल खान के. तो क्या लगता है,
1: मुझे लगता है एक बार जो बन जाता है वो मतलब उसको हिलाना डिफिकल्ट है. वो एक शो था, वो एक आइकॉनिक शो था. उसमें उस शो को लेके आज भी बात होती है एंड सब लोग मुझे आज भी कनेक्ट करते हैं उस शो को लेके. एंड उस शो के बाद उस वही लुक लोग फॉलो भी करने के लिए बोलते हैं, हमको वो वाला लुक चाहिए, वो वाला आपके यू नो सीन्स चाहिए, वैसा सारा सारी चीजें चाहिए, वैसा आप करो वैसा. बट एक बार जो बन जाता है, हाँ वो बन जाता है
9: जब पूरी तरह दावंश बन जाएगा,
10: बिहान कहीं नहीं जाएंगे.
1: उसके बाद फिर उसको रिक्रिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड उस समय हम फुल टीम, हम लोग न्यू थे, रॉ थे, हम लोग फुल ऑन लगे रहते थे. वो अलग ही एक टीम बॉन्डिंग हो गई थी एंड अलग ही लक कैरी कर रहे थे हम लोग. फिर उसके बाद मुझे ऐसे बहुत सारे रोल्स आए भी और मैंने किया भी, लेकिन उस हिसाब का नहीं हुआ.
0: तो हम तो सोच रहे थे भोजपुरी बवाल में आप बवाल मचाएंगे, लेकिन आप कैसे, बिकॉज आपकी कभी बहुत खल रही है, बस आप ही नहीं दिख रहे हो.
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं. मैं आई थिंक सबको पता है कि मैं बवाली मूड हूँ, तो मैं बवाल कर ही नहीं सकती. मेरे लाइफ में कुछ ऐसे बवाल है ही नहीं. मेरे खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स इतने हैं, इतना मतलब अपने पेरेंट्स को लेके, अपने यू नो विक्रांत के पेरेंट्स को लेके सारी चीजें, हम लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़े हुए हैं. एंड तो हमारे साथ कोई ऐसा किसी के साथ कोई बवाल नहीं, तो बवाल नहीं कर पाए.
0: उन्होंने सब बदलते वक्त के साथ आजकल रिश्ते बहुत ही हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह हो गया, लेकिन हैट्स ऑफ आपने और विक्रांत ने इस इंडस्ट्री के बीच में रिश्ते को जगाए रखा. आप अपने दोनों परिवारों के साथ बहुत खुशी खुशी आपने निभाया.
1: हाँ, तो ये भी देखिए, कोई अगर कोई आपस में भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड नजर ना लगे. एंड कोई यू नो हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ये वो ये सब चाहिए होता है आजकल रियलिटी शो. मतलब पहले ये या तो फिर मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाओ, घर पे प्रॉब्लम्स लाओ, क्या बोले डिवोर्स हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये सब करो तो आपको रियलिटी शो मिलेगा. मुझे लगता है ये भी एक यू नो क्राइटेरिया हो गया.
0: मतलब जितनी डिस्टर्ब लाइफ उतने ज्यादा रियलिटी शो आपसे मिलेंगे. खुश रहने का
1: मतलब आप किसी बाहर में जाके किसी को मारो वारो या फिर पता नहीं, अब क्राइटेरिया ही चेंज हो गया है. कॉन्ट्रोवर्सी करो जबरदस्ती का जी. बट मुझे लगता है ये दौर भी आया है, ये भी चला जाएगा. रियल चीजें हमेशा लोगों को अच्छी लगती है मेरे हिसाब से, तो वो दौर वापस आएगा. एंड जो जो जाके मतलब रियल रहेंगे वही वही वो चीज डेफिनेटली वापस आएगा.
10: क्या है रे दिल की दिल्ली ये, है ये धड़कन भी टारगेट पे.
0: ओरिजिनल रियलिटी शोज का मतलब होता था सिंगिंग एंड डांसिंग, देवर तो ओरिजिनल ओजी रियलिटी शोज. फिर आपके नाम में अंतर है, थोड़ा बहुत सिंगिंग यू नेवर ट्राइड, डांसिंग ऑफ कोर्स वी नो नोबडी डांसेस लाइक यू.
1: नो नो नो.
0: सिंगिंग शो समथिंग वुड यू लाइक टू डू, कोई रह गया ऐसा कि मुझे करना है कोई.
1: मैं बचपन में तो गाना सीखती थी, पर पता नहीं क्यों अभी थोड़ा सा गला मेरा चेंज हो गया. मैं बहुत अच्छा गाना गाती थी, और मैं जब छोटी थी तब मैं यू नो कोलकाता के यू नो दूरदर्शन में वहां पे जाती हुए किड्स जो यू नो गाना गाते थे वो सब भी गाती थी. बट नहीं अभी सिंगिंग को लेके एकदम कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आजकल कितने अच्छे अच्छे सिंगर आते हैं.
0: How much you miss Kolkata, the Puchka?
1: I don't miss. I go every month, I guess.
0: Achha, but you...
1: Bengali mein bol rahi. Meri mummy, papa to abhi bas ek saal hua chalenge, but meri family wahi hai.
0: Toh
1: main har month jaati hu. Aur meri mummy mere liye wait karti hai ki main kab aaunga.
0: What is your favorite food? Ghar jaake sabse pehle kya khate ho?
1: Maach.
0: Oh,
1: yes. Ilish maach.
0: Ilish maach.
1: Chorshe ilish, bhat.
0: बेंगाली
1: क्विज़ीन अगर है तो डेफिनेटली मैं कस्तूरी जाती हूँ, सिक्स बालीगंज प्लेस जाती हूँ, और अगर बिरयानी वैसा कुछ है तो मैं अरसलन से मंगवाती हूँ, मतलब जाती नहीं हूँ लेकिन वहां से मंगवाती हूँ. और चाइनीज में तो वो सदर एवेन्यू है वहाँ पे फुचका बहुत अच्छा है, बट मुंबई से या दूसरे शहरों से एकदम अलग है.
0: एंड व्हाट अबाउट मिष्टी, बिकॉज़ बंगाल
1: मिष्टी दोई एंड मिष्टी बलराम.
0: अच्छा बलराम वाली अच्छी. और मुंबई में आप क्या निकाल के जाते हैं खाने, कितने चटोरे हैं आप लोग?
1: मुंबई में तो बहुत जो है मतलब है कैफेज रेस्टोरेंट, हर टाइम कहीं ना कहीं जाते हैं. इनफैक्ट हम तो बाहर भी जाते हैं, गोवा जाते हैं.
0: तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अंतरा जो हमेशा इतने सालों तक मोनालिसा बनकर सबके एंटरटेनमेंट करती रहती है, इसी तरह ये सफर चलता रहे जाते जाते. व्हाट यू हैव सेड टू योर फैंस, वी लव यू इन नजर, वी लव यू इन बिग बॉस, द भोजपुरी फिल्म, सो मच फॉर योर वर्क.
1: जस्ट आई एम जस्ट ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच. आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार दिया, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहिए. एंड डू वॉच अस माई न्यू शो Love to Hate You on All Right TV. 4th August se start ho rahi hai. 8 p.m. Tuesday, Thursday and Saturdays. Do love us and comment mein zarur batayega aapko kaisa laga.
0: Thank you so much and bane rahiye hamare saath aise interesting podcast ke liye.
11: एनी बिल्ली को तो दूध पीना बहुत पसंद है और ये तो है इनकी सेहत के लिए रॉकिंग, लेकिन कल पी गई है गरम गरम दूध और जल गई इनकी जीभ. हो गया ना शॉकिंग. बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज.
12: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें. रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं सबसे पहले आप सबकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली की. भाई देख लीजिए उनका ये ट्रेंडिंग रील जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

0: यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा और हुमा कुरेशी की द मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ऐसे में फिल्म से जुड़े सभी कलाकार इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर खास मेहमान बनकर पहुंचे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं यश की फिल्म टॉक्सिक की ये खास झलक।
1: मेरी सिटी में आकर मेरे फैमिली का हाथ लगाया, ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूं। खींचने देगा?

0: नजर डालते हैं कौन बनेगा करोड़पति के इस प्रोमो पर, जहां फिल्म बंटवारा की टीम यानी कि सनी देओल, आमिर खान और प्रीति जिंटा खास मेहमान बनकर पहुंचे हैं, जो लगाएंगे शो में मस्ती और नॉस्टैल्जिया का तड़का।
1: क्या सोचना पड़ेगा
2: ऐसा सर, मुझे देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने
1: वो मुझे पता चल गया सर,
2: इतना आसान नहीं होने वाला है।
1: नहीं कोशिश करते हैं सर,
2: क्योंकि सोचना पड़ता है ना भाई साहब,
1: सोचना पड़ेगा सर, वाकई सोचना पड़ेगा।
0: इसी के साथ साथ सनी देओल और करण देओल पहुँच गए हैं पार्टीशन म्यूजियम, जो कि अमृतसर में है। भाई ये भी उनके फिल्म से जुड़े प्रमोशन का ही हिस्सा है। नजर डालते हैं तारक मेहता फेम धरती भट्ट के इस डे आउट ब्लॉग पर। भाई ये सीरियल में रूपा का किरदार निभाती हैं।

0: इंडियन गेम शो में अनीता हसनंदानी और करण की जरा ये गेम मस्ती तो देखें, भाई ये कलाकार लगा रहे हैं हंसी के ठड़ाके।
1: रेडी वन
0: नजर डालते हैं बरेली के बच्चन के इस प्रोमो पर, जहां संगम हो गई है लापता।
2: बस हो गया,
3: लाइट नहीं है मैडम जी, कहीं टेंशन में आ गई हूँ।
4: मैडम जी
5: चली गई।
3: दुल्हन को देखा क्या?
4: इनको कहीं देखे हो?
6: संगम जी मैडम।
0: अजय देवगन बहुत जल्द नजर आने वाले हैं एक एक्शन पैक्ड ड्रामा फिल्म में, जिसे डायरेक्ट करेंगे निखिल नागेश भट्ट। और इसी के चलते सोशल मीडिया पर उन्होंने इस वीडियो से हिंट जारी किया है।
7: कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से झकझोर देती हैं, और आज एक ऐसा ही सच है हमारे सामने जिससे मैं तंग रह गया हूं। लाऊंगा उसको आपके सामने जल्दी।
0: एस एस राजमौली ने शेयर किए हैं महेश बाबू यानी कि रुद्र के ये पिक्चर, जो कि फिल्म वाराणसी से है।

0: हमारी सयानी बिल्ली और भोला बिल्लू को तो बहुत ही पसंद है मन्नत और विक्रांत की ये जोड़ी। वैसे ये जोड़ी किसे पसंद नहीं है, कितने अच्छे लगते हैं ये एक दूसरे के साथ। लेकिन जब ये आते हैं एक दूसरे के साथ, यही बात तो सहन नहीं होती है शो के नेगेटिव कैरेक्टर्स से। और देखिए, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं शो में। मन्नत, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए रिकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
1: मान्यता ने किया मन्नत पर हमला।
2: बस लेके चलो इसे, चलो चलो।
1: घर में शुरू हुआ बंदूक तमाशा।
2: बोल वरना यही गोली मार दूंगा। बोल।
1: विक्रांत का नकली नाटक बदल देगा खेल।
2: यहाँ पे की जड़ है ना, ये जो इधर खड़ी है ना मिस मन्नत, इसने हमला किया और कुछ नहीं।
1: कलर्स के सीरियल मन्नत में क्या बंटी, क्या दुआ और क्या युवराज तीनों जुट गए हैं विक्रांत की याददाश्त वापस लाने के लिए। ऐसे में देखिए कैसे रसोई में काम करता विक्रांत को देख वो शुरू कर देते हैं उससे बातचीत। ऐसे में उनकी मासूम प्यारी बातें सुनकर कहीं न कहीं विक्रांत का दिल पिघलने लगता है और वो मन ही मन उन पर प्यार जताता है। लेकिन धैर्य सामने है इसलिए वो नाटक करना शुरू कर देता है और चला जाता है बाहर। इतना ही नहीं, वो तो बच्चों को समझाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन तभी मल्ला दौड़ कर आकर बताती है कि मन्नत खतरे में है। बस फिर क्या, वो वहाँ से भागा चला जाता है। वहीं दूसरी ओर मन्नत के घर में अंकित बंदूक लेकर अपने बदमाशों के साथ पहुँच गया है और घर के सभी नौकरों को बना लिया है बंधक। वो तो शुक्र है कि सही समय पर वहाँ पर अभिमन्यु आ जाता है जो अंकित के गुस्से पर ब्रेक लगाता है और शुरू होता है बवाल।
2: मान्यता आई थी आपने? बोलो नहीं तो खोल लूँगा सबको।
3: वो किसी की कर रहा है? वो बंदूक क्यों उतार रखी
2: है? मान्यता यहीं है, देख लीजिए ना।
4: ओए ओए ओए ओए ओए, तुम लोग यहाँ पर घुसे कैसे? ये तुम लोग ये भाड़े के गुंडे लेके मेरे घर में घुस रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ तो आज दिखाना आपको।
2: एक सेकंड।
4: अरे क्या कर रहे हैं?
2: बात हो रही है अंकित भैया। एक सेकंड, हाँ अब बोल क्या बोल रहे हो अंकित भैया को?
4: अरे कैसे हिम्मत कैसे हुई लोगों की घुसने की हमारे घर में?
1: अब धैर्य का तो गुस्सा आपे से बाहर हो रहा है लेकिन अभिमन्यु वो संभाल रहा है। इतना ही नहीं, अभिमन्यु ने तो सारा इल्जाम मन्नत के ऊपर मढ़ दिया है क्योंकि मन्नत ने ही उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, वो भी मान्यता को धोखा देकर। ऐसे में अभिमन्यु ने सीधा मन्नत की ओर इशारा कर दिया।
2: यहाँ पे की जड़ है ना, ये जो इधर खड़ी है ना मिस मन्नत, इसने हमला किया और कुछ नहीं।
5: बस बहुत हुआ विभा जी, आप ये मान्यता को लीजिए और घर जाइए, वरना मुझे ना इसे पुलिस में देना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। सुन लिया ना क्या बोला इन्होंने? इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया है और ज्यादा हुआ ना तो दोनों को जेल में डलवा दूं, समझी?
1: भाई मन्नत की बातें सुनकर अंकित को गुस्सा आ गया और वो अभिमन्यु को भड़काने लगा। अब उनको क्या पता कि अभिमन्यु की याददाश्त वापस आ गई है और वो विक्रांत बन गया है। ऐसे में अंकित की बातों में आकर देखिए कैसे सभी के सामने अभिमन्यु यानी कि विक्रांत अपना नकली नाटक शुरू कर देता है और मन्नत के ऊपर भड़कने लगता है। मन्नत और विक्रांत की बहस आगे बढ़ती कि तभी आ गया मान्यता को गुस्सा और उसने कर दिया मन्नत पर हमला। अब मान्यता गुस्से से और बौखलाती, अभिमन्यु फैसला लेता है और अंकित विभा को अपने घर जाने के लिए कहता है। फिलहाल तो अंकित उसका गुस्सा भी अभी शांत नहीं हुआ है क्योंकि अभिमन्यु को 7 दिनों के लिए मन्नत के साथ इसी घर में रहना जो पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इन सब मामलों को लेकर विक्रांत सोफे पे बैठकर परेशान हो रहा है, सोच रहा है कि कैसे वो धैर्य का सच सामने लेकर आए कि तभी तीनों बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं और अभिमन्यु एक पल के लिए तो पिघल जाता है और आगे बढ़ता है उन्हें गले लगाने के लिए। लेकिन तभी उसकी कन्नी नजर पड़ जाती है धैर्य पर और देखिए कैसे वो शुरू कर देता है अपना नाटक।
2: मैं ना तेनू पहले ही बोल चुका यार, मैं तेरा ना पापा शापा तो हूं नहीं,
6: सुन, बच्चे ना समझ नहीं आते, सुन मेरी बात, तेरी माँ जो है ना, मैंने जबरदस्ती लाई है या बहु इधर से।
7: ओके ओके, पर स्टोरी सुनने में क्या प्रॉब्लम?
6: अरे यार,
7: हाँ, आप मेरे पापा नहीं है तो आप स्टोरी तो सुन सकते हो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
6: अब यार मानते नहीं है, इतने शरारती होते ना ये सब। ओए भाई सुना लो, नहीं तो जाएंगे नहीं। सुना लो यार, जो सुना ना सुना लो।
8: कभी मैं आइडिया दे रहा हूँ, कभी दो आइडिया दे रही है, कभी बंटी आइडिया दे रहा है, मन्नत आंटी भी दे रही है, हम चारों के चारों मिलकर बहुत मेहनत लगा रहे हैं। तो अभी बंटी और मैं और यूवी ने अभी प्लान किया है, हम सब पूरी ऐसे तैयारी में एकदम अच्छे से प्लान बना के आए हैं पापा को करने। फिर हम उनको कहानी सुनाते हैं ताकि उन्हें कुछ याद आए, पर फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं आ जाता। गाइस सोचो अगर मन्नत आंटी तक, जो इतनी हमसे भी ज़्यादा मेहनत लगा रही है, उनसे बड़ी ही बहुत मुश्किल से इतनी इतनी सी चीज़ें याद आ रही, तो हम बच्चे तो, और मन्नत दीदी को मुझे ऐसी टेंशन हो रही है कि पापा मम्मा के बारे में कुछ बुरा ना बोल दे, कुछ गलती ना हो जाए।
1: भाई दुआ तो यहाँ पर दो भाइयों के प्यार की कहानी सुनाती है और विक्रांत कहीं ना कहीं गुस्सा खो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। इससे पहले कि विक्रांत का गुस्सा आगे बढ़ता, वहाँ पर दुआ पहुँच जाती है और तीनों बच्चों को वहाँ से ले जाती है। ऐसे में विक्रांत पहुँच जाता है धैर्य के पास और धैर्य को लगता है कि उसे सब याद आ गया है, लेकिन विक्रांत अपनी बात पलट कर उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिलहाल तो धैर्य को भी कहीं न कहीं डाउट हो रहा है और वो तो इंतजार कर रहा है कि कब याददाश्त आए और वो अपना काम पूरा करे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: ओह माय गॉड, सयानी बिल्ली तो लेकर आई हैं अब आपके लिए अगली कहानी, जिसमें है अनलिमिटेड ड्रामा। अब देखिए, जैसे ही कहानी में आता है ड्रामा, हम सबका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है और हम सब ये जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि अब क्या होगा कहानी में आगे। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको हमारी इस अगली कहानी की ओर और दिखाते हैं इसका क्विक अपडेट।
9: ईशान संग हुआ जानलेवा हादसा।
10: मिस्टर ईशान, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है।
9: मोनिका को लगा झटका।
10: उनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है।
11: हमारे मना करने के बावजूद तुम उस लड़के से मिलने गए?
12: से प्रॉमिस किया था कि आप ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे, फिर क्यों तोड़ा आपने वो प्रॉमिस?
9: फिर एक बार उठे मोनिका पर सवाल। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में नई नोएनिका तो ईशान का हाल चाल जानने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था उसका एक फैसला ईशान की जान पर बनाएगा। जी हाँ, वही नोएनिका की आहट होते ही ईशान उसके पीछे उससे मुलाकात करने निकल पड़ा, लेकिन भाई जरा देखिए कैसे रास्ते में वो हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, एक जानलेवा हादसा, वो भी ईशान के साथ, जिसके बाद उन्हें काफी गहरी चोटें आई। ऐसे में देखिए कैसे भाई यहाँ पर खून में लथपथ ईशान अकेले सुनसान रास्ते पर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन तभी ही वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए जिन्होंने ईशान को अस्पताल पहुँचाया। भाई कहीं न कहीं नोएनिका के दिल में भी खटक यही आ रही थी कि कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन उसे क्या पता भाई उससे ही मुलाकात करने के चक्कर में ईशान अब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है।
10: भगवान, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी रक्षा करना, पता नहीं कौन होगा। मैं देख लेती, पर मुझे भी जल्द से जल्द घर पहुंचना पड़ेगा, वरना अगर तिन्नी को जरा सी भी भनक लग गई कि मैं बाहर गई थी तो अनर्थ हो जाएगा।
13: यहाँ पर दो गाड़ियाँ आपने जो चलती हुई देखी है, पहली गाड़ी में नौनिका बैठी हुई है और उसके पीछे चेस करते हुए ईशान है। कहानी कुछ ऐसी है जो आप देख ही रहे हैं कि एक प्री कैप में दिखाया था कि नौनिका के हाथ से फ़ोन गिर जाता है, उसको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि ईशान रॉक स्टार जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है और नौनिका एकदम घबरा जाती है। ये उसके पीछे की स्टोरी है जहाँ पर नौनिका को काफ़ी दुख हुआ इस चीज़ का कि जब ईशान आउट ऑफ कंसर्न पूछने आए कि दो दिन से नौनिका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है और मैं खुद ही जाकर देख लेता हूँ। दैट इज़ वेयर लव कम्स, कि जब आपका पार्टनर फ़ोन नहीं उठाता है तो आपके अंदर बेचैनी हो जाती है कि हुआ क्या है, कि वो अकेला है तो वो कुछ करना ले, अपना नुकसान ना कर ले। तो वैसे वो आधी रात में भाग कर जाती है ईशान के पास और बिशु दादा से बात करती है। ईशान के दरवाजे के बाहर से जाके बिशु दादा के पास पहुँचती है कि आप मुझे बता दो बस वो ठीक है या नहीं, मैं एक बार देख लूँ उसे या एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ। मीनवाइल ईशान उसकी आवाज़ सुन करके बाहर आते हैं और उतने में नौनिका निकल जाती है। देन द चेजिंग कम्स। नौनिका जब अपनी कैब से निकलती है, ईशान उसके पीछे आते हैं। नौनिका रियलाइज़ नहीं करती है और इनडायरेक्टली कहा जाए तो नौनिका के कारण ही ईशान का एक्सीडेंट होता है, बिकॉज एक तरह से
14: अगर
13: ना नौनिका आती ना ईशान बाहर निकलता अपने कमरे से और ना ही उसका एक्सीडेंट।
14: कैलकटा आता ना कैलकटा के प्यार का इजहार करता फिर तो इस हिसाब से
13: तो ऐसा है,
14: कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो ईशान की है। ईशान मोहब्बत में निकल गया रात को 3 बजे की हाँ मैं जाके नौनिका को सेफली घर छोड़ के आऊंगा।
13: जैसे नौनिका रात को 2 बजे अपने घर से निकली छुप छुपाते हुए और वैसे ही ईशान माँ से 3 बजे निकल चुका।
14: हाँ तो इसमें किसी गलती नहीं है गाइस, इसमें
13: शिशु दादा ने मुझे बहुत सुनाया है इसके बाद कि आपके कारण ऐसा हुआ है। तो नौनिका बहुत ज़्यादा एकदम कश्मकश में कि हर तरफ से फंस गई है, बेटी का प्यार, परिवार का प्रेशर, प्लस ईशान की तबीयत और ईशान का एक्सीडेंट, प्लस शिशु दादा की डांट।
9: भाई जैसे तैसे नौनिका देर रात घर तो पहुंचती है लेकिन आधा घर उसके लिए उठ चुका होता है कि आखिर वो इतनी रात को कहां गई। ऐसे में वो जैसे तैसे घर वालों को झूठे बहाने देकर समझा देती है लेकिन फिर भी टिन्नी उस पर शक कर रही है।
10: टिन्नी मैं हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई थी, वहां गई थी। तो जानती है कि पहले भी ऐसा हुआ है टिन्नी, और डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसे जाना ही पड़ता है। इमरजेंसी केसेस में ऐसे कॉल्स आ जाते हैं बेटा।
12: इतनी रात में अकेले जाने की क्या जरूरत थी?
10: माँ जो काम मैं खुद कर सकती हूँ उसके लिए मैं किसी और की हेल्प क्यों लेती?
12: बोधी इससे पहले जब भी आप देर रात को हॉस्पिटल गई है तब तब आकाश आपको छोड़ने जाता था।
10: इमरजेंसी थी इसलिए मुझे निकलना पड़ा।
12: मेरी नींद बीच में खुली और मैंने आपको नहीं देखा तो मैं डर गई थी मॉम।
15: भगवान जाने तुम सच कह रही हो या झूठ, तुम ही जानती हो तुम कहाँ गई थी।
10: मैं आपसे कह चुकी हूँ माँ कि मैं कहाँ गई थी।
12: क्या है ना बोधी, भरोसा एक बार टूट जाए तो दूसरी बार भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है।
9: मैं इसी बीच फिर एक बार अस्पताल से नौनिका को कॉल आ जाता है जब उसे ये बात पता चलती है कि ईशान का एक्सीडेंट हो गया है और उसका ऑपरेशन उसे ही करना पड़ेगा। भाई देखिए कैसे, ये बात सुनते ही नौनिका के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ती है।
10: क्या बात है, कोई इमरजेंसी है?
16: यस मैम इमरजेंसी है, वो आपके जान पहचान के सिंगर है ना मिस्टर ईशान, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है।
10: हॉस्पिटल से फोन था तिन्नी, मेरा पेशेंट बहुत सीरियस है, मुझे उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मुझे निकलना पड़ेगा। इतनी रात को मैं बस कैब बुक कर रही हूँ, आप मैनेज कर लोगे ना? मैं ठीक होती तो आपके साथ ही चलती। तू मेरी चिंता मत कर तिन्नी, तू आराम कर, तू सोचा, मैं बस कैब बुक कर रही हूँ, मैं निकल रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा।
14: जी फॉल्ट इन आवर स्टार्स होता है ना, वैसे ही जैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, कुदरती चीज़ हो जाती है। कभी कभी इनकी बेटी रिएक्ट कर जाती है, कभी कुदरत रिएक्ट कर जाती है, कभी अभी ट्रक वाला रिएक्ट करने वाला है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम थोड़े से दूर हो जाते हैं और वही दूरियाँ हमें और एक्चुअली करीब लेके आती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे ख्याल से इस बार भी इस ट्रैक में होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये सब जो है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ऐसा कहते हैं, तो अभी मोहब्बत के बीच में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, थोड़ी सी परीक्षाएं हैं जिनको जिनको जिनके थ्रू जाके हमारा जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होगा।
9: ऐसे में आने वाले वक्त में फिर एक बार टिन्नी अपने माँ पर सवाल उठाने वाली है, क्योंकि भाई टिन्नी और पूरे घर वालों को ये पता चल गया है कि नोएनिका ने ईशान का ऑपरेशन किया है, जिसके बाद फिर एक बार खड़ी होंगी नोएनिका के लिए मुश्किलें। ऐसे में देखना होगा कि भाई कैसे नोएनिका अपने और ईशान के इस रिश्ते को संभाल पाएगी।
10: ईशान को तुरंत ऑपरेट करना होगा, नहीं तो उनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। और मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे।
11: नोएनिका रुको, हमारे मना करने के बावजूद तुम उस लड़के से मिलने गई?
12: आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी, फिर क्यों तोड़ा आपने वो प्रॉमिस?
10: तिनी मेरी बात
12: नहीं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
9: मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: ओ माय गॉड, ये तो हम तो कह रहे हैं कि अभी भी हुआ है यहाँ पर धमाका। ओ माय गॉड, अच्छा इनके कहने का मतलब था एंटरटेनमेंट का धमाका। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर, जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगी आपको? लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

मैं सास बहू और बेटियाँ आपके लिए लेकर आया है आपके फेवरेट कलाकार, वो भी अप क्लोज एंड पर्सनल। मैं बीती शाम मुंबई शहर में आपके फेवरेट कलाकार पार्टी करते हुए नजर आए। भाई एक तरफ मौका था करण वाही के नए प्रोडक्ट लॉन्च का, तो दूसरी तरफ अलायंस के कलाकारों ने रियलिटी शो की सक्सेस पर उसके फिनाले के बाद मनाया जश्न। वही सबसे पहले बात करते हैं टीवी से जुड़े कलाकारों की, जो एक साथ एक ही छत के नीचे नजर आए, जहां दिखा उनका बेहद ही खूबसूरत अंदाज। वही हम बात कर रहे हैं करण वाही की। भाई करण वाही ने अपना एक नया वेंचर शुरू किया है, जिसके लॉन्च के मौके पर उन्होंने अपने इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे करीबी दोस्तों को बुलाया, जिसमें नाम शामिल था हाल फिलहाल में खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में नजर आने वाले कई सारे कलाकारों का, जी हाँ, जैसे कि फरहाना भाई।

0: ஸ்பெஷல் ஆதித்ய சிங். ரித்விக் கஞ்சானி. और रूहानी का धवन. इसके अलावा टेलीविजन के उनके पुराने करीबी दोस्त भी नजर आए, जैसे कि हर्षद चोपड़ा.
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा. हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा.
0: नकुल, सनाया, दृष्टि धामी.
1: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा.
0: अर्जित तनेजा.
1: ले लिया कुड़ी ने दिल साडा.
0: अंकिता विक्की.
1: बुत बाली लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है देखदा परांदा नहीं हो देखदा पराडा.
0: ऐश्वर्या सृष्टि.
1: एक बारी दस दो जी इन्हें क्यों शकीनो. कल ही तू
0: सहबान अजीम.
1: मर जानी है ते पर्स तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटीनो.
0: सुयश ईश्वर.
2: लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल.
0: निया शर्मा.
2: लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल.
0: आशा नेगी. जय भानुशाली. जो नजर आए कोरियोग्राफर अमर सन. इसके अलावा प्रीति डोगरा. हुसैन. कनिका मान. ईशा सिंह. और कई और कलाकार बने इस पार्टी के खास मेहमान. भाई ये तो रही करण वाही की पार्टी की बात. अब बात करते हैं सोहेल खान की, जिन्होंने बीती शाम अपने घर रखी अलायंस के सक्सेस की पार्टी, जहां

उनके दूसरे भाई अरबाज खान भी पहुंचे अपनी वाइफ शूरा संग। इसके अलावा नजर आई उनकी बहन अलविरा अतुल। और इसी के साथ जुड़ गया अलायंस के कलाकारों का मेला यानी कि गौहर जैद, आज की रात मजा कुशाल टंडन, सोहा कुणाल, मिनी माथुर, कबीर खान, नीति टेलर, पायल, दलवर, अरसलान सुजैन, इसके अलावा डेजी शाह, यूलिया बंदुर, अग्गू, सुनील शेट्टी, और वत्सल इशिता।

ये सारे कलाकार जब एक साथ नजर आए तो भाई पार्टी का माहौल बेहद ही शानदार था। ऐसे में ये कलाकारों ने इन पार्टीज को खूब एंजॉय किया और इसीलिए सास बहू और बेटियां अपने दर्शकों के लिए उनके इन फेवरेट कलाकारों को एक साथ लेकर आया।

में वही हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये कलाकार यूं ही आपको एंटरटेन करते रहे, चाहे फिर रियलिटी शोज हो या फिर उनके टीवी सीरियल्स या ओटीटी सीरीज या फिर हो बड़े पर्दे पर फिल्में।

0: ise Bilal Bağır. ऐसे लगे आपको हमारे ये स्पेशल मेहमान सयानी बिल्ली और भूला बिल्लू अब तो ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट के जरिया से हर अपडेट। और आप सब तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।

नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: शिवभक्ति के रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार हर ओर देख रहे कांवड़ियों की भारी भीड़, करोड़ों शिवभक्त गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। सावन में राजस्थान के पाली में शिवजी की अनूठी पूजा, बना गया 151,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग। CWG पदक विजेताओं से आज शाम मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में 2 और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर, शहनवाज को मिला कांस्य। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज देखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देखा विशेष प्रस्तुति, वंदे मातरम की 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। दिल्ली NCR में बादलों का डेरा, कुछ देर में हो सकती है बारिश, पहाड़ों में भी मौसम विभाग की चेतावनी, शिमला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: कामिका एकादशी पर शिवालयों में उमड़े कांवड़िए, बाबा का किया गया जलाभिषेक। मुंगेर में घुटनों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला शिवभक्त, 108 किलो की मूर्ति कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा। फरीदाबाद में देखा जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया अनोखा शिव भक्त, प्रेमानंद महाराज के लिए कर रहा दंडवत कांवड़। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान देखा नन्हे शिव भक्तों का हौसला, स्केटिंग करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों ने निकाली अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से वे बुलडोजर पर लेकर आए पवित्र गंगा जल। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उमड़ रही है कांवड़ियों की भारी भीड़, बोलबम और हर हर महादेव के जयकार। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटे बीजेपी नगर विधायक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी में 151,000 रुद्राक्ष से बना अनोखा शिवलिंग भक्तों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र। नागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दौरान भक्त विशेष अनुष्ठान के साथ रुद्राक्ष शिवलिंग के कर रहे हैं दर्शन। सादड़ी में शिव चिंतामणि अनुष्ठान में रोजाना करीब 4500 पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद नदी में किया जाएगा विसर्जन। सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ देखने के लिए उमड़े लोग, का एक कांवड़ में करीब 2,70,000 जबकि दूसरी कांवड़ में 50,000 के नोट्स। कांवड़ की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, हरिद्वार से चलकर हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी पहुंचेंगे बाबा भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों में पुष्प वर्षा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। बुरकी में कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची मुस्लिम महिला, 11 अगस्त को पति अमन त्यागी के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगी तमन्ना। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव हुआ मुजफ्फरनगर, डीएम उमेश मिश्रा के साथ एसएसपी संजय कुमार ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा सुविधा की पुख्ता इंतजाम, डीएम एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट पर निरीक्षण किया। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि से पहले उमड़ा कांवड़ियों का हुजूम, बम बोल के जयकारे। मुजफ्फरनगर में पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद, भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर। बांदा चित्रकूट रेंज के डीआईजी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। शिवभक्तों की सहूलियत के लिए झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। सावन मास की कामिका एकादशी पर जगन्नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भक्तों ने किए भगवान के दर्शन। पूरे जगन्नाथ मंदिर के आगे लंबी कतारें लगी हुई, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। एकादशी के पवित्र मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंच रहे हैं भक्त, विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन में कामिका एकादशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया, बड़ी संख्या में भक्त भस्म आरती में शुमार। प्रसिद्ध गायक बी प्राग भी पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार, आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लिया। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में बढ़ी भक्तों की संख्या, हजारों की संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं राम भक्त। कामिका एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में बड़ी आस्था और शिव भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक किया। रामनगरी अयोध्या में आगामी झूलनोत्सव की जबरदस्त तैयारी। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी 15 अगस्त की शाम कुबेला टीला जाएंगे रामलला। चीन में आयोजित विश्व युवा ट्रांस नेशनल चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर, साग्निक रॉय और सैंतन ने ब्रिज में जीता स्वर्ण। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल। राजस्थान के बसंत ने इससे पहले एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भी जीता था गोल्ड मेडल, अब तक भारत के हिस्से में 2 सिल्वर। अश्मिता चाहला ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को हराकर जीता खिताब। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 15,000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। लाल किले और आसपास के इलाके में लगाए जा रहे हैं 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, AI इंटीग्रेटेड कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। 15 अगस्त समारोह में सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ साथ आसमान में भी खतरों पर नजर रखेंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा और निगरानी के लिए FRS और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू। लाल किले के आसपास किसी असामाजिक तत्व की एंट्री रोकने के लिए अभिज्ञान ऐप का होगा इस्तेमाल। दिल्ली में सिंदूर आर्मी महा ब्लड डोनेशन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर में कांवड़िए के लिए देवदूत बनी पुलिस, सही समय पर मेडिकल उपचार देकर बचाई जान। रांची में जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है आदिवासी दिवस, कला संस्कृति का कलाकारों ने परिचय दिया। दिल्ली मेट्रो में 2026 में अब तक 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी का किया दावा। डीएमआरसी के अनुसार मेट्रो में रोजाना औसतन 64 लाख से ज्यादा यात्री कर रहे हैं सफर। देश भर में आज से घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, 17 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई, बड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी रैली में शामिल हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी रैली में शिरकत की। रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में घर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ओडिशा का संबलपुर में भी निकाली गई घर घर तिरंगा रैली, पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। धर्माद में दिखा चमत्कार, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी युवती को घंटों की मशक्कत के बाद जिंदा निकाला गया। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप पर ट्रिब्यूट रन 5K आयोजन। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, छात्रों ने नाट्य संगीत से लोगों को जागरूक किया। पुडुचेरी पुलिस को गृहमंत्री ने सौंपा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान। पुडुचेरी में सभी धर्मों के गुरुओं की मौजूदगी में हुआ समारोह। समारोह के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया, पुलिस के जवानों की ओर से सलामी दी गई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर वायुसेना बैंड आज देगी खास प्रस्तुति, मास्टर वारंट ऑफिसर ए श्रीहरि करेंगे नेतृत्व। वायुसेना बैंड में अग्नि वीर वायु महिला बैंड सहित 40 संगीतकार होंगे शामिल। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर मनाया जाएगा जश्न। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरा पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: शिवभक्ति के रंग में रंगी धर्मनगरी हरिद्वार, हर ओर दिख रही कांवड़ियों की भारी भीड़, करोड़ों शिवभक्त गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की ओर कर रहे हैं प्रस्थान। सावन में राजस्थान के पाली में शिवजी की अनूठी पूजा, बनाया गया 1,51,000 रुद्राक्ष का शिव। CWG पदक विजेताओं से आज शाम मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह, ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में 2 और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर, शहनवाज को मिला कांस्य। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा, शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड देगा विशेष प्रस्तुति, वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न। दिल्ली NCR में बादलों का डेरा, कुछ देर में हो सकती है बारिश, पहाड़ों में भी मौसम विभाग की चेतावनी, शिमला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से होते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा।

0: ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्रम सर्वे देवाः शिवात्मका। अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। ये देवताओं के भी हैं और असुरों के भी, तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है। रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भगवान शंकर रुद्र हैं और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थक कर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।
1: शास्त्रों में लिखा है रुतम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, अर्थात जो सभी प्रकार के रुत दुखों को नष्ट कर देते हैं वही रुद्र हैं। और रुद्र को अभिषेक बहुत प्रिय है। मान्यता के अनुसार कुंडली में मौजूद महापातक वा दोष भी शिव जी के रुद्राभिषेक से दूर हो जाते हैं तथा मन वांछित फल प्राप्त होते हैं।
0: रुद्राभिषेक का फल भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल देते हैं। रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है, कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है, मन को असीम शांति की अनुभूति होती है, रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहां की नकारात्मकता का अंत होता है। रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है।
1: रुद्राभिषेक के प्रभाव की बात करें तो यह अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विभिन्न प्रकार के दोषों और पापों का समन करने वाला प्रयोग माना गया है। रुद्राभिषेक करने से मनुष्य न केवल अपनी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकता है, दूर कर सकता है, बल्कि दिव्यता की अनुभूति भी कर सकता है। साथ ही साथ इच्छित फलों की प्राप्ति भी करवाने में रुद्राभिषेक को महत्वपूर्ण माना गया है।
0: आस्था कहती है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। वे कभी माँ गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी माँ गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिवजी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिवजी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए ये तिथियां हमेशा फलकारी मानी गई हैं।
1: रुद्राभिषेक से जुड़े नियम और सावधानी की बात करें तो रुद्राभिषेक करते समय यथासंभव उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जल चढ़ाने के लिए चांदी का पात्र हो, कांसे का हो, पीतल का पात्र हो, यानी ऐसे बर्तनों का प्रयोग उचित माना गया है। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, अभिषेक सिर्फ शिवलिंग पर ही किया जाता है, अन्य उपस्थित देवी देवताओं पर नहीं। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि जलहरी या जल निकालने का जो स्थान है उसे गंगा स्वरूप माना जाता है, उसे नहीं लांघा जाता। रुद्राभिषेक से व्यक्ति कम समय में ही अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है।
0: वैसे तो शिव का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कब शिव जी का निवास अनिष्टकारी होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी और शुक्ल पक्ष की तृतीया व दशमी में महादेव जी देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और भी खास जानकारियां देंगे। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।

0: स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवाधिदेव नहीं दे सकते हैं। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही हैं शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं। शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं।
1: किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई पुराना शिवलिंग हो जहां नियमित रूप से पूजा होती रही हो तो ऐसे शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही साथ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पारद के शिवलिंग पर किया गया अभिषेक शीघ्र चमत्कारिक और शुभ परिणाम देता है। अर्थात जिस कामना से रुद्राभिषेक किया जाता है उस कामना की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है।
0: कहते हैं कि कल वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी? घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए।
1: रुद्राभिषेक में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः दिया, घी, तेल, बत्ती, फूल, सिंदूर, चंदन का लेप, धूप, कपूर, अगरबत्ती, सफेद फूल, बेलपत्र, दूध, गंगाजल और जिस मनोकामना के लिए आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं उससे संबंधित द्रव्य, गुलाब जल इत्यादि का समावेश जरूरी रहता है।
0: रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिव वास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता है उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिव जी के निवास का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो।
2: शिव ही रुद्र है। अगर आपके मन में कोई कामना हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।

0: रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिसके अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। आदि देव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब अनिष्टकारी, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं और कुछ समय ऐसे हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई है। लेकिन कौन सी तिथियां और समय रुद्राभिषेक के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है, आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं।
1: संकल्पित सकाम रुद्राभिषेक के लिए शिववास अर्थात शिव जी का निवास देखा जाना चाहिए, जो पूरे महीने के साथ साथ अलग अलग जगह निवास करने की बात धर्म ग्रंथों में की गई है, उसे देखना चाहिए। जबकि निष्काम पूजा के लिए महाशिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक बिना शिववास देखे भी किया जा सकता है। शिववास गणना के नियम के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी तिथियां शुभ फलदायी मानी गई है।
0: शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए यह स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा, इसीलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मिलता है मनचाहा वरदान।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: सावन का पावन महीना चल रहा है, हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्साह मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है, और केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। चाहे शिव पार्वती हों या श्री कृष्ण और राधा या फिर श्री राम, इन सब की गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र मिलता है, और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री

0: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि झूलोत्सव की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। नया श्री राम मंदिर बनने के बाद इसे और भी शानदार तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लिहाजा इस बार भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
1: तो निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तरी द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुँचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2-3 घंटे विशेष झूलोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झूलोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झूलोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झूलोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झूलोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झूलोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झूलोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झूलोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मैं शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
11: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
12: देश भर में धूमधाम से जा रही है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हरि की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन में राजस्थान के पाली में शिवजी की अनूठी पूजा, बनाया गया 151,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग। CWG पदक विजेताओं के आज शाम मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह, ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के खाते में 2 और मेडल, हाई जंप में बसंत मेघवाल को सिल्वर, शहनवाज को मिला कांस्य। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर आज दिखेगा देशभक्ति का अद्भुत नजारा। शाम 5 बजे से भारतीय वायुसेना का बैंड दिखेगा विशेष प्रस्तुति। वंदे मातरम के 150 साल और स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में मनेगा जश्न।
5: बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आप तीनों का यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए आज तक धर्म संसद में। और मेरे ख्याल से आप तीनों से बेहतर कोई नहीं है जो सिंहस्थ कुंभ के बारे में बता सके, समझा सके, क्योंकि भक्तों की उम्मीदें, करोड़ों करोड़ लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा इसको लेकर रहती है, लेकिन अखाड़ों की अपनी तैयारी होती है और आप लोगों की अपनी आप खुद भी तैयारियां करते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ सबसे पहले आप ही से, सुमनानंद महाराज जी, आप कैसे इस कुंभ को देखते हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की होती है, कब से करते हैं? सरकार तो देखिए एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, पहला कुंभ खत्म हुआ तो उसके तुरंत बाद से तैयारियां शुरू कर देती है, उज्जैन में इस बार कुंभ।
13: देखिए ऐसा है, कुंभ की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई ये बहुत विचारणीय बात है। हमारे यहां देवताओं ने और दानवों ने एक सम्मिलित प्रयास किया और अमृत को पाने का प्रयास किया, और जब अमृत निकला तब सब उस अमृत के पीछे दौड़ने लगे। गरुड़ जी लेकर भागे और चार स्थान पर उस कलश को रखा, वहां वहां कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो देव परंपरा है, हमारी जो संत परंपरा है, वो हमें ये कहती थी कि हमें हर समय हर क्षण अमृत को खोजना है, अमृत की तलाश करना है। आज दिक्कत ये हुई कि हम अमृत को तो भूल गए और कुंभ की व्यवस्थाओं पर अटक गए।
5: बहुत अहम बात है, बहुत अहम।
13: एक महत्वपूर्ण बात आपको और कहना चाहता हूं। हम केवल स्नान पर आ गए, हमें तो मृत्योर मां अमृतम गमय वाला सिद्धांत जो है हमें दिया गया था कि मृत्यु से हम अमृतत्व की ओर जाएं, हमने अमृत छोड़ दिया और हम जल तक सीमित हो गए। दूसरी बात, ये परंपरा जो चली कुंभ की, ये परंपरा क्यों चली? संत आने लगे, चार तीर्थों में वास करते थे, कल्पवास होता था, और ये कुंभ जो था, सिंहस्थ जो था, ये संतों का ही था, आम व्यक्ति का नहीं था। संत एकत्र होते थे, प्रति 12 वर्ष में यहां आते थे और 12 वर्ष तक ये साधना करते थे। अमृत का दूसरा स्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो साधना करते थे, उस साधना से जो इनके अनुभव में उतरता था, जो अनुभूति इन्हें होती थी, उस अनुभूति को इकट्ठा करके ये 12 वर्ष में फिर यहां आ जाते थे। यहां राजा लोग, सेठ साहूकार, श्रीमंत लोग इनके लिए कुटियाएं बना देते थे, क्षिप्रा के तट पर रहते थे, कल्पवास करते थे, इनके भोजन की व्यवस्था होती थी, अन्न क्षेत्र बन जाता था, साधु आता था, भोजन करता था, चला जाता था, और ये पूरा संत समाज, ये मेरे राष्ट्र की मनीषा, ये बैठकर शास्त्रार्थ करती थी। जो सूत्र इन्हें मिले हैं उन सूत्रों पर चर्चा करते थे, कौन से सूत्र समाज के लिए उपयोगी होंगे, कौन से लाभदायक होंगे। वो सूत्र ही अमृत तुल्य सूत्र थे, वो ही अमृत था जो इनकी साधना से निकलता था, और उस अमृत को ये यहां समाज में स्थापित करने के लिए पुजारी, पुरोहित, पंडित, आचार्य इन्हें सौंप देते थे, और वो धर्म का मुलम्मा उस पर चढ़ाकर समाज में उन सूत्रों को स्थापित करते थे। समाज उसका अनुसरण करता था, समाज को उससे लाभ मिलता था। ये था कुंभ। फिर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार जाते थे, फिर नासिक जाते थे, फिर प्रयागराज जाते थे, वहां फिर वो अपनी अपनी साधना से जो उन्हें मिला है वो सब अमृत समाज में वितरित होता था और समाज को उसका लाभ होता था। आज का कुंभ थोड़ा अलग हो गया बहन जी।
5: आपने आपने यहाँ मेरे मन की बात छीन ली, क्योंकि पिछले कुंभ की अगर मैं बात करूं, स्वयं मैं खुद भी वहां गई, हमने देखा, हमने चर्चाएं की, 2 महीने तक इस पे कार्यक्रम हुआ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा होगा, और अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती थी महाराज जी, जिसका जिक्र आपने किया है कि कुंभ बदल गया है। किसने कुंभ को बदला, क्यों कुंभ बदला, ये चिंता आज की तारीख में सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं है, ये चिंता आगे बढ़ती है, क्योंकि ये सवाल हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन पर आता है। महाराज जी आपसे इसका जवाब चाहूंगे।
8: देखिए बिल्कुल स्पष्ट है आपकी बात से, आप तो क्या प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति, प्रत्येक साधु संत सहमत होगा, हमारे यहाँ पे विधाएं हैं 3 किसी भी स्थान की, उसके मर्यादा है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं तो पर्यटन केंद्र होता है, यदि वहां पर हम अध्ययन के लिए जाते हैं, जैसे विक्रमशिला थी, शारदा पीठ थी, हमारे यहाँ की विक्रम यूनिवर्सिटी है, या जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, ये देशाटन के केंद्र है। दुर्भाग्य ये कि देश की सत्ताओं ने बदलती व्यवस्थाओं के चलते हुए धार्मिक पर्यटन नाम की बड़ी कुटिल सी एक शब्दावली कर दी, जिससे जो हमारे धार्मिक नगर है, धार्मिक केंद्र है, वो पर्यटन के नाम पर अव्यवस्थित हो गए।
5: तीर्थाटन से ज्यादा पर्यटन ज्यादा होने लग गया।
8: सीधी बात है, वो मनोरंजन के केंद्र नहीं है, एक्सकर्शन के, एकेडमिक एक्सकर्शन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो तीर्थाटन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो टूरिज्म के केंद्र नहीं है। उज्जैनी, तीर्थाटन का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और ये जमीन से हम बात कर रहे हैं, जिस जगह से बात कर रहे हैं, वो अमृत केंद्र है। अमृत कहाँ होता है? नाभि पे। वो नाभि कहाँ है? नाभिकीय। वो नाभिकीय क्या है? उज्जैन का महाकालेश्वर नाभिकीय शिवलिंग है। इसके न्यूक्लियस के आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी घूमते हैं और सभी शुद्ध होकर के वापस से फ्यूजन होकर के सही मार्ग की ओर जाते हैं। तो यहां से वो निकलने वाला है सत्य। और मुझे पूरी अपेक्षा है कि सीएस 2028 के अंदर यह मानस मंथन एक बहुत बड़ा अमृत निकालने वाला है, जो कि इस राष्ट्र को बहुत बड़ी भूमिका देने वाला है, जो विश्व गुरु की उपाधि के अंदर शायद चिरोदारी होगा।
5: बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही, क्योंकि कुंभ में केवल उसका जिक्र, उस पर मुझे लगता है कि ये बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पर देखते हैं कि लोगों को एक धर्म नगरी, एक उसको किस तरीके से पर्यटन नगरी बना दिया जाता है। देखिए, अगर आपको याद हो महाराज जी, तो चर्चा इसको लेकर बहुत हुई थी कि रील्स नहीं बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कुछ रूल, इनफैक्ट संत समाज ने भी इसको लेकर रूल रेगुलेशन बनाया, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि आपके अखाड़ों में भी आपने जेन जी जेन अल्फा की बात की, वो होंगे, किस तरीके से वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते, आगे आऊंगी। लेकिन विशाल महाराज जी, आपके पास आते हुए, आपके लिए सिंहस्थ कुंभ क्या है? संतों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कुंभ?
14: जी बिल्कुल, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताए कि ये संतों का समागम है, बुद्धि विवेक का समागम है, सनातन धर्म के जानने का समागम है। पहले भी आचार्य हमारे सत्यनारायण बाबा जी ने एक बात कही थी कि पहले जानो, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है कि जानो। क्यों जानो? कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भक्ति की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम की स्थापना तभी होगी जब आपस में विचारों का मंथन होगा, और मंथन से एक सुंदर सा अमृत निकलेगा, और अमृत का ओरा जब चारों तरफ फैलेगा तो जैन जी बालक, वृद्ध और नौजवान सभी के मन में एक शांति प्रस्फुटित होगी, और शांति की स्थापना का ही प्रतीक एक कुंभ है। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताए हैं, कि मंथन की आवश्यकता है। और हमारे देश में इस धर्म नगरी को, हमारे इस कुंभ नगरी को कहीं ना कहीं पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन जरूरी जरूर हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं हो सकता है, साधन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे सनातन धर्म को जानना पहले, क्योंकि आज हमारे तमाम नौजवानों के दिल दिमाग में जिस प्रकार से एक मन जो है समुद्र की भांति लहर ले रहा है, अपना प्रश्न करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बंधु, दोस्त मित्र सबसे सवाल करता है, और लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, और जवाब नहीं मिलने के कारण उल्टे सीधे मार्ग अपनाता है। जो कोई स्वामी जी ने लिखा है कि मार्ग सोई जो जय जस बाबा, जिसको जो अच्छा लगता है वो मार्ग अपना लेता है। इसलिए कुंभ जो है मंथन का विषय है। ये हमारा शरीर, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ये, जिससे 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, ये कहीं ना कहीं ये समुद्र का स्वरूप है। जब इसको मंथन होगा तो इसी में सारा अमृत भी भरा हुआ है, विष भी भरा हुआ है, ज्यादा तो नहीं कुछ कहेंगे, 14 जो रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, वो और कहीं नहीं हमारे अंदर ही भरा हुआ है। वो जिस प्रकार से कहा भी गया है महाराज जी कि धनुष धेनु धर्वंतरी ऐरावत ससीबाज, श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज, ये 14 रत्न ये कहीं और नहीं, इसी अंदर है, इस अंतरात्मा में ही निवास करता है, परंतु इसको मंथन की आवश्यकता है। और जब तक इसका मंथन नहीं होगा तब तक ये अमृत बाहर नहीं निकलेगा। इसी मंथन का एक जीता जागता स्वरूप 12 वर्ष में जब आता है वो है कुंभ महापर्व, सिंहस्थ महापर्व। सिंहस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार 12 वर्ष में आता है। मेष राशि गते सूर्ये, सिंह राशौ बृहस्पतौ, उज्जैन्यां भवेत् कुंभ। मेष राशि का सूर्य होता है, सिंह राशि का बृहस्पति होता है, तो सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। यही योग कुछ अंतर से नासिक में भी लगता है, तो इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है।
5: सुवनानंद महाराज जी, आपने इसी चर्चा की, क्योंकि शुरुआत भी की है, संतों का कुंभ है, संतों के लिए, संत संदेश देते, विचार विमर्श करते हैं, और महाराज जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। ये भी क्या पहली बात, पहला सवाल यही कि क्या हमारी युवा पीढ़ी के सवालों का जवाब संत दे पाएंगे? दे पाएंगे तो कैसे? दूसरा बहुत अहम सवाल, अगर ये संतों का महाकुंभ है, यहाँ पर संत आएंगे, तो कैसे हम अपनी नौजवान पीढ़ी को जोड़ेंगे? देखिए, दोनों चीजें हो जाती है। आप कहेंगे कि विरोधाभासी है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जब तक युवा पीढ़ी वहां नहीं पहुंचेगी, अब उसका अंदाज अपना हो सकता है, जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगी वो किस तरीके से उसको समझेगी, जानेगी, कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि धर्म की मर्यादा भी रह जाए और हम अपने जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाए और जिस मकसद से कुंभ का आयोजन हो रहा है वो मकसद भी सफल हो जाए।
13: देखिए, ऐसा है, आपने दो प्रश्न किए हैं लेकिन मेरी दृष्टि में वो एक ही है। हम यूथ को कैसे जोड़ें? ये धर्म सत्ता का, धर्म की गादी का दायित्व है। सनातन से यदि आज हमें यूथ को जोड़ना है तो हमें सनातन धर्म के उन सूत्रों को, जिन सूत्रों में पूरा विज्ञान समाया है, हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया गया है या कहीं से पढ़ के बोल दिया गया है। ये जो धर्म है ये अनुभव का विषय है, इसीलिए इस धर्म का इतना विस्तार हुआ है। यहां मेरे से पूर्व स्वामी शैलेशानंद जी ने लिख दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं उससे करने लगता हूं तो मेरे अनुभव में कुछ और आता है, मैं देखता हूं कि नहीं ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। प्रैक्टिकल की जो सुविधा है वो सनातन में है, वरना तो और धर्म ग्रंथों में, कुरान में जो लिख दिया है वो आखिरी किताब है, बाइबल में जो लिख दिया है उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते। लेकिन यही धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हम, आप, वो जो भी करेंगे और उनकी जो अनुभूति होगी उस अनुभूति को वो लिख सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है, और उसे हम स्वीकार करते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए इस धर्म का विस्तार हुआ। दूसरी बात, जो हमारा विज्ञान सम्मत धर्म है वो आज आप जब तक इन युवाओं तक नहीं पहुंचाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप कहें कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, जिसके शीश से गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसने पूरे लोक की समस्याओं का हल हरण कर लिया है, उस महादेव के ऊपर आप कारपोरेशन के जल से एक लोटा भर के आप चढ़ा दोगे तो कौन सी समस्या का हल, लोटा कौन सा, जल कौन सा, भांग कौन सी, धतूरा कौन सा, आखा कौन सा, बिल्वपत्र कौन सा, ये जितनी वस्तुओं के नाम मैं ले रहा हूं, शिव पुराण के अनुसार ये सारी वनस्पति, सारी धातुएं, सारे रत्न भगवान शिव के तेज से ही प्रकट हुए। इसमें आपने बिल्वपत्र तोड़ा, बाहर से शिव के ऊपर चढ़ा दिया, आपके अपने पास से क्या गया, ये विचार करिए। धर्म इतना सस्ता नहीं है साहब जितना सस्ता हमने बना दिया। आप बताइए इस पूजा पद्धति में कितना पैसा खर्चा होता है, 100 रुपए, 200 रुपए? आपका धर्म 200 रुपए में हो जाता है? इतना सस्ता मेरा धर्म तो नहीं है, तपस्या है। और आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जल कौन सा हो, नारियल कौन सा हो, भांग कौन सी हो, शिव, जिस शिव ने, आप विचार करो एक बार, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए कालकूट हलाहल विष का पान कर लिया था, उन्हें तुम्हारी भांग क्या नशा देगी? हमने अपने स्वार्थ में शिव को गंजेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया। आप विचार तो करो कि हम क्या थे और क्या हो गए। इसलिए मेरा कहना है कि संत समाज, गादीपति, धर्म की गादी पर जो लोग बैठे हैं वो लोग विज्ञान के उन सूत्रों को जो हमारे धर्म के आवरण में लिपटे हुए हैं, उस धर्म के आवरण को खोलकर वो विज्ञान के सूत्र इस युवा पीढ़ी को दें तो ये युवा पीढ़ी सनातन की ओर अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप आ जाएगी।
5: यही इस बार कुंभ का संदेश होगा। हालांकि इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन वापस कुंभ पर ही आऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल सरे से आ रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें करता है संत समाज कुंभ की जब हम बात करते हैं?
8: सरकारों से हमारी अपेक्षा ये है कि वास्तविक धर्मावलंबियों को वो जानती हैं, वो समझती हैं। धर्म का उद्भव होता है चार वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद, स्मृतियां, और चारों लक्षण तब परिपूर्ण होते हैं जब जाकर के हम उसको धर्म को धर्म कह पाते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ च प्रियात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्म च लक्षणम्। वेदों में हम सबकी रुचि पैदा करनी होगी, स्मृतियों के ऊपर। जैसे कहा महाराज जी ने, साइनाइड खाने से हम मर जाते हैं आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट हैव प्रूवन इट। हम चखते हैं क्या साइनाइड? कभी नहीं चखते, क्योंकि सैकड़ों ऋषि मुनियों ने स्मृतियां लिख दी, वो स्मृति सिद्धांत बन गए। उन सिद्धांतों पे आप भरोसा करिए, सत्ताओं को और जनता को हमेशा भरोसा करना होगा।
5: महाराज जी ने बहुत अच्छे से आपने भी एक्सप्लेन किया कि सिंहस्थ क्या है, उसकी परिभाषा आपने बताई। कुंभ यदि संतों के लिए है तो आम जन इसको किस नजरिए से देखे, कैसे इसको ले ताकि मर्यादा भी खंडित ना हो?
14: बिल्कुल, आज आम जन के लिए यही संदेश है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि एक यूनिवर्सिटी में कई विषयों पर अध्ययन शोध होता है, उस यूनिवर्सिटी में कई विषयों के अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं, और एक एक बैच में, एक एक क्लास में, एक एक विषय के 50-50, 60-60, 100-100 बच्चों का एक एक बैच होता है, और प्रत्येक बच्चा पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी में जाकर के एक मानद उपाधि लेता है, जिसको हम आज के आधुनिक भाषा में दर्शन पर लेते हैं तो उसको पीएचडी कहते हैं, दर्शन शास्त्र। और दर्शन का अभिप्राय ही इतना है, जैसे कि पूज्य स्वामी जी भी डॉक्टरेट किए हुए हैं, तो जब आप थ्योरी लिखते हैं और उस पर लेक्चर भी देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का थीसिस, प्रत्येक बच्चा का जो शोध होता है अपने प्रोफेसर के मार्गदर्शन में, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर केवल संस्कृत में अगर शोध कोई व्यक्ति कर रहा है और 100 बच्चे शोध कर रहे हैं तो सबकी थीसिस अलग अलग होती है। इस विषय में प्राचीन काल में हमारे संतों ने यह बात कही है कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयस्य विन्ना नैको मुर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। हम आम जनमानस को यही कहना चाहेंगे कि रास्ता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के स्थिति ऐसी है कि श्रुतिर विभिन्ना, श्रुतिर ग्रंथ कहते हैं वेदों को, वेदों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न है। यजुर्वेद में, साम वेद में, अथर्व वेद की विचारधाराओं में भिन्नता है। पुराण 18 हैं, इन 18 पुराणों में भिन्नताएं हैं, प्रत्येक पुराण अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजन जो प्रोफेसर्स हैं, गुरुजन हैं, ये अलग अलग विषयों का प्रतिपादन करते हैं। जो श्रुतिर भिन्नता की बात करते हैं, वेदों में भिन्नता है, पुराणों की बातों में, व्याख्यानों में भिन्नता है। हमारे ऋषि मुनि के कहे हुए वचनों का कोई एक प्रमाण नहीं है, सब अपने अपने विषय के शोध करता है, अपने अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो नासमझ हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में विचार करते हैं, कहते हैं कि शिव महापुराण की तो अलग कथा है, विष्णु पुराण में अलग कुछ कहा है, इनके आपस में ही मतभेद हैं, शिव जी की अलग प्रथा है, राम की अलग प्रथा है, कृष्ण की अलग प्रथा है, तमाम मतपंथ संप्रदायों में हम नित्य बटते जा रहे हैं और मतपंथ संप्रदाय अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर विचार के व्यक्ति हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात क्या करें क्या न करें, उहापोह में फंस जाते हैं, व्यक्ति को करना क्या है। तो शास्त्र कहता है धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है गुफाओं तक निहित हो गया है, तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए, पंथा किम, रास्ता क्या है। तो ये एक बात आती है, एक ही वाक्य में उन्होंने सारे समस्याओं का हल कर दिया कि महाजनो ये न गतः स्वपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। सबको एक होने का और एकीकृत करने का यह समागम कुंभ महापर्व है। ऐसे सिंहस्थ महाकुंभ में हम सभी मिलजुल करके अपना पार्टिसिपेट करें, अपना भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर करें। धन्यवाद और साधुवाद है आपको जो आपने धर्म पर चर्चा करके, धर्म संसद बना करके और हमारे अवंतिकापुरी को मानस भारत नहीं अपितु विश्व में एक नया स्थान दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि यही कहूंगा कि हमारा अवंतिका तीर्थ, हमारा महाकाल की नगरी कल्याण की नगरी है, और यहां आने के बाद अगर कल्याण नहीं हुआ अर्थात हमारे जीवन में आत्म शांति आत्मानुभूति नहीं हुई तो समझिए कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी।
5: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज यहां पर आज तक धर्म संसद में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देखिए, सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 1,35,000 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 1,51,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: देश भर में धूमधाम से जा रही है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की हो गई शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन में राजस्थान के पाली में शिवजी की अनूठी पूजा, बनाया गया 151,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग। थोड़ी देर में CWG पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी मुलाकात, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। ग्लासगो में भारत ने जीते हैं कुल 39 मेडल। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक, कीचड़ में एक दिन है महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं भाग।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत स्वागत है। शिवजी की कृपा पाने का शुभ संयोग आ रहा है। देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन, एक ऐसा महीना जब आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बरसती बल्कि हर बूंद के साथ शिव भक्ति भी धरती पर उतर जाती है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है तो कांवड़ मार्गों पर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आस्था, तपस्या, सेवा और समर्पण के इस महापर्व में इस बार सावन का दूसरा सोमवार भी बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए सालों बाद सोम प्रदोष का दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए रिपोर्ट।

0: देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना। सावन बारिश के साथ साथ आस्था और भक्ति से भी खूब भीग रहा है। शिवालयों में रौनक है तो रास्तों से गुजरते कांवड़ यात्रियों के बम बम बोले के जयघोष से गांव और शहर शिवमय हो रहे हैं। संकल्प साधना और आस्था की इस अद्भुत यात्रा का उत्साह देखते ही बन रहा है। तरह तरह के कांवड़ महादेव को समर्पित रंग बिरंगी झांकियां और भोलेनाथ के भजनों पर झूमते कांवड़िए सब सावन को दिव्य ऊर्जा से भर रहे हैं।
1: भगवान शिव को पंचमुखी कहा गया और इनको उग्राय नमः, भीमाय नमः, सर्वाय नमः, पशुपतये नमः, क्षितिमूर्तये नमः, जलमूर्तये नमः, भगवान शिव को हर रूप में माना गया। तो भगवान शिव की जो आराधना इस श्रावण के महीने में होती है, इसके कारण यह प्रकृति का महीना है। चारों ओर हरियाली, जल वृष्टि और उसमें भगवान शिव की पूजा, शिव की जो स्थापना है, यह मनुष्य के जीवन से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है, इसको दूर करती है और मानव जीवन निष्काम हो जाता है, शिव कृपा प्राप्त होती है।
0: सावन के दूसरे सोमवार की पूजा के लिए शिव भक्त जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। सावन माह का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। इस बार ये दिन और भी खास रहने वाला है क्योंकि सावन सोमवार पर प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। प्रदोष का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने में दो बार प्रदोष काल पड़ता है, लेकिन जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ संयोग में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्मचारियों के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। सोमवार उनका प्रिय दिन है, जबकि प्रदोष तिथि शिव आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। जब सावन का सोमवार और सोम प्रदोष व्रत एक साथ आते हैं तो शिव जी की उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। 10 अगस्त यानी सावन के दूसरे सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्र की स्थिति के चलते कई शुभ योग बनेंगे। कर्क राशि में सूर्य बुध की युति के चलते इस दिन बुधादित्य योग रहेगा। वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बनेगा। इसके साथ ही सम सप्तक योग का निर्माण भी होगा। इन शुभ योगों के चलते शिव पूजन का बेहद शुभ परिणाम मिलता है।
1: जिस समय भगवान विष्णु क्षीरसागर में चले जाते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, हरिशयनी एकादशी को, वह संसार का भार महादेव जी को सौंप करके जाते हैं, देवाधिदेव महादेव को। इसलिए जो श्रावण का महीना है उसमें भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि शिव का मतलब कल्याण होता है, जो कल्याणकारी है उसी का नाम शिव है, तो जो संसार का मालिक है देवाधिदेव महादेव, उसकी आराधना पूजन करने से जगत कल्याण के साथ साथ मानव कल्याण भी होता है।
0: सावन का उत्साह केवल पूजा तक नहीं बल्कि भक्ति के उस विराट उत्सव तक फैला है जहां लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाकर कठिन यात्रा करते हैं। कदम कदम पर हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे वातावरण को शिवमय बना देते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धा, सेवा और सम्मान की मिसाल सामने आ रही है। यूपी में कांवड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। सहारनपुर में शिव भक्तों पर ऐसे ही आसमान से फूलों की वर्षा शुरू हुई। पूरा कांवड़ मार्ग हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष से गूंज उठा।
2: ये भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के वैश्विक वैभव का परिचायक है कि आज लाखों लाखों की संख्या में लोग इस सहारनपुर से गुजर रहे हैं अपनी भावनाओं की कांवड़ लेकर के, और इस श्रद्धा के साथ कि वो गंगा जल को ले जा करके फिर अपने अपने क्षेत्र में उससे सिंचित करेंगे अपनी भावनाओं को, तो उनके ऊपर सहारनपुर नगर निगम की ओर से, सहारनपुर वासियों की ओर से, यहाँ के महापौर ने, यहाँ के नगर आयुक्त ने, और इतनी बड़ी अपार उपस्थिति देखने को मिल रही है। उन लोगों ने पुष्प वर्षा के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और हमें उसका गौरव प्राप्त हुआ कि आज हम भगवान शिव की निरंतर स्तुति करते हुए इस पुष्प वर्षा में उन लोगों को मतलब उनके लिए प्रार्थना करने का गौरव प्राप्त कर पाए।
0: कांवड़ यात्रा में आस्था और भक्ति के साथ देशभक्ति का रंग भी दिख रहा है। ऐसी ही एक कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंची। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बने तीन शिव भक्तों के हाथों में रस्सी बंधी थी, जबकि एक शिव भक्त कांवड़िया इनकी हथकड़ियों की रस्सी पकड़े ब्रिटिश शासन का सिपाही बनकर यात्रा को कर रहा था। नौजवानों के मन में देशभक्ति की अलग जगाती इस कांवड़ को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। कांवड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, संकल्प, तपस्या और समर्पण का महापर्व है, जहां थकान भी भक्ति बन जाती है, दर्द भी साधना बन जाता है और हर कदम बाबा भोलेनाथ के चरणों की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। शिवालयों की जगमगाती सजावट, गंगाजल लेकर लौटते कांवड़ियों का उत्साह, भगवा रंग में रंगी सड़कें, भजन कीर्तन की मधुर स्वर लहरियां, डमरू की गूंज, शंखनाद और भक्तों के चेहरों पर झलकती अटूट आस्था सावन के हर पल को दिव्यता से भर देती है। सचमुच ये केवल एक महीना नहीं, बल्कि शिव भक्ति का महासागर है, जहां उत्साह है, उमंग है, तप है, त्याग है, सेवा है और हर सांस में बस एक ही नाम है, हर हर महादेव। सहारनपुर से राहुल कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सावन के महीने में शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने के लिए जाते शिव भक्तों से पूरा कांवड़ मार्ग इस वक्त चमक रहा है। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक में एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक लगे कांवड़ शिविरों में कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत हो रहा है।

0: आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं देवों के देव महादेव। सच्चे मन से की गई भक्ति को भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है। इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्तों का जतन इस सावन मास में देखने को मिल रहा है, जो भगवान भोले शंकर का प्रिय मास है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष और रंग बिरंगी कावड़ के साथ शिव भक्त अपनी राह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर जब कावड़ यात्री निकलते हैं तो रास्ते में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस कावड़ यात्रा में कोई शिव भक्त 251 तो कोई 551 तो कोई 651 लीटर तो कोई 1001 लीटर गंगा जल की कावड़ लेकर हरिद्वार से यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचा। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी कावड़ देखने को मिल रही है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उन्हीं में से एक कावड़ ये है जो 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कावड़ की एक विशेष बात ये है कि इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर के अचानक से दर्शन होते हैं। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कावड़ यात्रा में इस बार महिलाओं का जत्था भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ से महिलाओं का जत्था कई गाड़ियों के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए हरियाणा के रोहतक की ओर बढ़ता दिखा। वहीं हरिद्वार से बागपत की सड़कों से गुजर रही एक कावड़ भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस कावड़ के साथ हरियाणा के नाहरी के रहने वाले शिव भक्त मंजीत दहिया फिटनेस का संदेश देते हुए चल रहे हैं। ये पुशअप लगाते हुए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा तय कर रहे हैं। इन कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह शिविर भी लगाए हुए हैं, जहां इनके रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सहारनपुर में पुलिसकर्मी भी कावड़ियों की मदद करते नजर आए। उन्हें खाने पीने का सामान देने के साथ ही उनकी मरहम पट्टी करते भी पुलिसकर्मी दिखते हैं। हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के रास्ते बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं, जिनकी सुविधा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक शिविर ये है, जहां कावड़ियों का खाने पीने से लेकर हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।
1: वजन उठा के जो है ये भक्त जो है लेकर आया। अच्छा, इनके कंधे की एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हालत है। भारी कावड़ उठाने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है कि कितना वजन उठा के, लेकिन आस्था का ही एक रूप है जो आपको ये नजर आ जाएगा कि अच्छी खासी संख्या में जो है ये लोग वजन उठा के जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। जल जो है पवित्र स्थानों से लेकर आते हैं और उसके बाद जो है शिवालय में जो है जलाभिषेक करते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
2: हरिद्वार से।
1: हरिद्वार से आए? दिल्ली में ही रहते हैं?
2: हाँ जी।
1: दिल्ली में कहाँ रहते हैं?
2: नागलोई।
1: नागलोई, तो अभी कितना लंबा सफर और तय करना है?
2: 30 किलोमीटर और
1: करना है।
0: यूपी में प्रयागराज से लेकर रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में कावड़ यात्री दिखाई पड़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था झारखंड के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है।
3: तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दुधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोलबम की तरफ जा रही है, देवघर की तरफ जा रही है। आपका क्या नाम है?
4: सावन।
3: आपका क्या कहना है?
4: चले जाएंगे
3: आप?
0: कांवड़ यात्रा को लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक में जिस तरह से जोश दिख रहा है, वो इनकी आस्था और भक्ति के गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक जबरदस्त है। बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़ियों का जोश भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है।

0: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कंधे पर कावड़। सावन के पावन माह में पूरे कावड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कावड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कावड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन माह की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कावड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कावड़ियों के साथ साथ कावड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंगबली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानंद ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
1: इच्छा से आए थे, मन किया था आगे कांवड़ लेने,
2: पहले भी आ चुके हो?
1: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
2: मांगा था जो पूरा हुआ है?
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या, सब है हमारे पास।
0: कुछ कांवड़ झांकियों में शिव परिवार सजा है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिवालय की झलक मिल रही है, तो कुछ कांवड़ झांकियों में पूरे शिव परिवार की झलक मिल रही है। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के जोश के साथ भी भगवान शिव की अटूट आस्था की तस्वीर दिख रही है। फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसे ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है, तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है।
3: महादेव के पक्के वाले भक्त, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और हमें कई सारे कांवड़िए रास्ते में मिल रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के शनिदेव मंदिर पर हैं और यहाँ पर भी एक शिविर बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारे कांवड़िए आकर विश्राम कर रहे हैं, वापस से अपने शरीर की ऊर्जा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर यहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दो भाई मिले हैं, दोनों कज़िन हैं और दोनों ही महादेव के पक्के वाले भक्त हैं। हरिद्वार से जल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, नोएडा तक पहुंच गए हैं।
0: नंदगांव से पहली बार कांवड़ लेकर आए इन दो भाइयों के कांवड़ पर प्रेमानंद महाराज की तस्वीर है। ये दोनों जल उस नंदगांव के शिव मंदिर में चढ़ाएंगे, जहां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए महादेव ने तप किया था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन माह में उनके लिए भगवान की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। हरिद्वार से मदित अग्रवाल के साथ नोएडा से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्त जो हैं भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर कांवड़ मार्ग पर भव्य छटा देखने को मिल रही है। मुंगेर के रास्ते कांवड़ लेकर देवघर की ओर बढ़ते शिव भक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

0: भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर जाने के रास्ते में कांवड़ यात्रियों की आस्था और भक्ति के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुंगेर में असरगंज स्थित कच्ची कांवड़िया पथ से हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। कोलकाता से 15 शिव भक्तों के एक जत्थे ने लोगों का विशेष रूप से अपनी ओर ध्यान खींचा। ये जत्था लगभग 80 किलो वजनी माँ तारा की भव्य प्रतिमा को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर लेकर बैद्यनाथ जा रहे हैं। 4 शिव भक्त मिलकर इस प्रतिमा को उठाए हुए हैं और पूरा मार्ग बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है।
1: इस बार हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग यही साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को।
0: देवघर जाने के रास्ते में बोलबम के जयकारे के बीच भगवान शिव के वेश में जा रहा ये शिव भक्त भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंगेर के ही रहने वाले सत्यपाल हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसी रूप से सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर बाबा धाम पैदल जाने का संकल्प लिया है।
2: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
0: वहीं मधुबनी के रहने वाले रमेश डाक बम को देखिए, जो कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमेश पिछले 2 वर्षों से आंखों पर इसी तरह पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ चल रहे साथी रमेश को रास्ता दिखाते हुए बोलबम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रमेश ने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इसी तरह सावन मास में आंखों पर पट्टी बांधकर बैद्यनाथ धाम जाने की बात कहते हैं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ये शिव भक्त वहां भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास के 8वें दिन भी यहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ी।
3: हमारे बाबा जी प्रमुख है, क्योंकि यहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते हो। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा सबों की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: बैद्यनाथ धाम की विशेष मान्यताओं को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। विशेषकर सावन मास में यहाँ लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं। इस हफ्ते 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोल बम के जयघोष सुनाई दे रहे हैं। भगवान भोले शंकर के भक्ति में भक्त नजर आ रहे हैं और हर ओर आस्था के बिखरे तमाम रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कांवड़ लिए शिवभक्त शिवालयों की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से उत्साह के साथ कांवड़ियों का भव्य स्वागत कर रहा है। हापुड़ की डीएम कविता और एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर बाकायदा शिव मंदिर और ब्रज घाट पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की तस्वीरें देखी, जिसको देखकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आया।
2: पुष्प वर्षा की गई तो उसमें प्रथम स्थल हमने छपकौली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहां पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने ब्रज घाट लिया। हमेशा की तरह वहां पे बहुत सारे कांवड़िए जल उठा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। ऊपर से पुष्प वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था।
3: आज हम लोगों ने दो जगह छपकौली मंदिर, जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहां पर, और ब्रज घाट में आज हम लोगों ने उस वर्षा की श्रद्धालुओं के ऊपर, और बड़ा उत्साहजनक माहौल था यहाँ पर। कांवड़िए जो शिव भक्त थे उन्होंने खुले दिल से उस वर्षा का स्वागत किया है।
1: एक और बड़ी खबर दे दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। प्लेयर्स की बस प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। मुक्केबाज लवलीना बोरगेहन और वेटलिफ्टर पीराबाई चानू ने कहा, हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 पदक इस बार अपने नाम किए हैं, जिसके साथ ही भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर है। तस्वीरें देखिए, बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तमाम खिलाड़ियों की।
4: मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारी हर टाइम सपोर्ट देते रहते हैं। हम जब मेडल लेके आओ ना लेके आओ, हर टाइम सपोर्ट देते रहते हैं। स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा हर टाइम सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने का, तो बहुत अच्छा रहेगा।
5: मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली ने बोला है कि अच्छे से बात करके आना उनसे जितनी हो सकती है, और बेस्ट विशेस दिए उनके लिए। सर ये बहुत रेयर है हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए उनसे मिलना, पर एज ए स्पोर्ट्स प्लेयर हमको मौका मिल रहा है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ।
6: तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है एथलीट का, एंड आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में हमने जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं, फिर चाहे वो पैरा स्पोर्ट्स हो या फिर हमारे एबल स्पोर्ट्स है, उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्रिकेट ही नहीं बल्कि और भी एथलेटिक्स में जो है, पैरा एथलेटिक्स एंड और स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले सालों में बहुत तरक्की हुई है स्पोर्ट्स की, एंड आगे आने वाले सालों में भी और भी बढ़िया होगी।
7: प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिला, बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि पैरालंपिक और पैरा एथलेटिक्स को इतना सपोर्ट दे रहे हैं हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक मोटिवेशन भी मिल जाता है, क्योंकि एक प्लेयर को इतना मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं होता है। जितना मोटिवेशन हम लोग को मिल जाएगा उतना और गेम खेलने का उत्सव बढ़ेगा और मेडल जीतने का और जोश बढ़ेगा, बहुत खुश लग रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन में राजस्थान के पाली में शिवजी की अनूठी पूजा, बनाया गया 151,000 रुद्राक्ष का शिवलिंग। थोड़ी देर में CWG पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात, खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह, ग्लासगो में भारत ने जीते हैं 39 मेडल। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक, कीचड़ में एक दिन, महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से। जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सद्गुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊं एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूं, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़दानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणामूर्ति का। दक्षिणामूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित हैं। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदि योगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदि योगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में देख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा अर्चना, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। श्री शिवभक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या सावन झूला मेले में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक, कीचड़ में एक दिन, महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, एआई तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सावन शुरू होते ही शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है और हर दिन कोई ना कोई ऐसी अनोखी कांवड़, ऐसा अलग अंदाज और ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिल रही है, जिसे देखकर अब बस यही कहना पड़ता है, वाह भोले के भक्त। यानी ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, उत्साह और अद्भुत कल्पना शक्ति का चलता फिरता उत्सव बन गई है। जैसे जैसे भोले के भक्तों का कारवां मंजिल की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रा मार्ग पर शिव शक्ति के नए नए रंग भी बिखरते जा रहे हैं। कहीं कला से सजी हुई कांवड़ है तो कहीं अनोखी झांकियां, तो कहीं भक्ति का ऐसा जुनून जो हर देखने वाले को कुछ पल ठहर कर निहारने पर मजबूर कर देता है। देखिए,

0: हर तरफ गूंजता बोल बम का जयकारा। भगवा सागर में डूबी सड़कें और शिव भक्ति का ऐसा जुनून जो हर देखने वाले को हैरान कर दे। कांवड़ियों का ये वही अटूट जोश और बेमिसाल उत्साह है जिससे आज पूरा देश गुंजायमान हो उठा है। इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ भक्ति का सैलाब ही नहीं बल्कि आस्था के ऐसे ऐसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले रूप देखने को मिल रहे हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। भोले के भक्त और भक्ति की अनोखी अभिव्यक्ति। किसी कांवड़ ने रॉकेट का रूप ले लिया है तो कोई कांवड़ विंटेज कार का स्वरूप बन गई है। कहीं करोड़ों की सुपर स्पोर्ट्स कार जैसी चमकती कांवड़ लोगों को अपनी ओर खींच रही है तो कहीं हाइड्रोलिक कांवड़ में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। आस्था का ये रंग इस बार कांवड़ यात्रा को और भी अद्भुत बना रहा है। इस कांवड़ को देख पहली नजर में आपको लगेगा मानो कोई लग्जरी स्पोर्ट्स कार सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही कदम करीब आते हैं एहसास होता है कि ये रफ्तार नहीं श्रद्धा की सवारी है। फाइबर से बनी इस अनोखी कांवड़ के बीचों बीच विराजे हैं भगवान शिव। मैकलॉरेन स्पोर्ट्स कार थीम पर बनाई गई ये अनोखी कांवड़ दिल्ली के 6 शिव भक्तों ने मिलकर तैयार की है। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही मजबूत भी है। दावा है कि इस पर 20 लोग भी खड़े हो जाएं तो भी इसका संतुलन नहीं बिगड़ेगा। दावा है कि इसे करीब 8 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। भोलेनाथ की कृपा से मिली खुशियों के प्रति आभार और परिवार के सुख समृद्धि की कामना, यही भावना उन्हें पहली बार इस अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा पर ले आई है।
1: बोले बस हम बैठे हुए थे ऑफिस के अंदर ही, हमारा ऑफिस है अपना, क्या नाम है, डीलर वगैरह का ऑफिस हमारा, तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे। बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि सावन आ रहा है, सावन में इस बार क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भोले बाबा को सब कंधे पे ला रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है भोले बाबा कंधे पे लाने का, नंदी पे लाने का। इस बार हमने सोच लिया, फिर एक भोले के दिमाग में आ गई, मोहित भोला है, उसके दिमाग में आ गई भोले बाबा को लाते हैं स्पोर्ट्स कार के अंदर, जो होगा देखी जाएगी, भोले बाबा को स्पोर्ट्स कार के अंदर ले आते हैं। भोले हम रहने वाले तो दिल्ली नवद्दा गाँव के हैं, हरकीपुरी से हमने जल उठाया है और दिल्ली नवद्दा गाँव शिव मंदिर पे हम जल अभिषेक करेंगे।
0: उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा आस्था के साथ अद्भुत शिल्प का उत्सव बन गई है। सड़कों पर उतरी इस हाइड्रोलिक कांवड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। करीब 15 लाख रुपए की लागत से तैयार इस कांवड़ की सबसे बड़ी विशेषता है इसका चलता फिरता शिव दरबार। हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे ही सक्रिय होता है भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और पूरा माहौल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ ही फिटनेस का संदेश भी देखने को मिल रहा है। इस कांवड़ को मिनी जिम का रूप दिया गया है। आगे भगवान शिव की प्रतिमा है जबकि पीछे डंबल समेत जिम से जुड़े कई सामान मौजूद हैं। डंबल, वेट प्लेट और एक्सरसाइज के सामानों से सज्जित इस कांवड़ के साथ कभी मुग्दर चलाते तो कभी कसरत करते दिख रहे ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो इस कांवड़ को रस्सियों के सहारे खींचते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अमित उर्फ मिट्ठू मदेरिया 22 जुलाई को जल उठाने के बाद हरिद्वार से दिल्ली के नजफगढ़ तक करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय करने निकले हैं।
2: ये एक सिर्फ एक गंगा जल नहीं है, इसके साथ में मैं एक अभियान लेके चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ मेरा अभियान है कि अगर आपको कोई नशा करना है तो वो आप मेहनत का कीजिए, अगर आप मेहनत का नशा करोगे बाकी नशे खुद ब खुद छूट जाएंगे।
3: लोगों को जो है जगह जगह पर संदेश दे रहे हैं, फिटनेस के चैलेंजेस भी करवा रहे हैं,
2: हमारे नौजवान बच्चे साथी हैं, वो इससे जुड़ के फिटनेस के बॉडी वेट के हेल्थी चैलेंज दे रहे हैं उनको, जो भी उसमें विनर हो रहा है उनका हम मान सम्मान भी कर रहे हैं एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए।
0: बिहार के समस्तीपुर से युवाओं का एक दल स्केटिंग करते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए इस दल के सदस्य एक दूसरे से जुड़े जो स्केटिंग करना जानते थे, और फिर समस्तीपुर से सब एक साथ बेगूसराय होते हुए बैद्यनाथ धाम की ओर निकल पड़े। 11 युवाओं का ये दल इसी तरह स्केटिंग करता हुआ बैद्यनाथ धाम तक करीब 420 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगा।
3: समस्तीपुर जिले से करीब एक दर्जन युवा स्केटिंग करते हुए सावन माह में बाबा नगरी देवघर स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, और समस्तीपुर से यह यात्रा 30 तारीख को निकाली गई थी। और आप देख सकते हैं अभी यह बेगूसराय के खातोपुर से निकले हैं और स्केटिंग करते हुए युवा बाबा नगरी देवघर जा रहे हैं, और लगातार यह यात्रा आज तीसरे दिन शुरू हुई है। क्या सोच है, सावन का माह है, बाबा नगरी में लोग श्रद्धालु जल चढ़ाने जाते हैं और यह युवा स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं। पहली बार बेगूसराय के रास्ते बाबा भोले का दर्शन करने जल चढ़ाने ये लोग निकले हैं।
0: कांवड़ यात्रा में इस बार भी आस्था, भक्ति और दृढ़ संकल्प का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ के गांव छज्जूपुर के रहने वाले नरेंद्र को ही देख लीजिए, जिनकी कांवड़ यात्रा देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा सकता है। नरेंद्र अपने दांतों से ही कांवड़ वाली कार खींचते हुए ये यात्रा पूरी करने में लगे हैं। कार के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा है और 11 लीटर गंगा जल की कांवड़ है, जिसे हरिद्वार से लेकर नरेंद्र अपने गांव लौट रहे हैं, और वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।
4: एक तो आस्था भगवान के मन में थी कोई चीज, तो उसकी वजह से 11 लीटर जल और भोले बाबा की मूर्ति साथ में और हमारे गुरु जी साथ में, हम छह लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक 41 लीटर जल लेके भी चल रहा मेरा भाई है वो छोटा।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से आस्था, संस्कार और पारिवारिक प्रेम की कैसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। यहाँ 7 पोतों ने अपनी 100 साल की दादी को पालकी में बैठाकर पूरे 295 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कराई। हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा केवल गंगा जल लाने का संकल्प नहीं थी, बल्कि अपनी दादी के प्रति सम्मान, सेवा और अटूट प्रेम का जीवंत उत्सव भी बन गई।
5: हम हरिद्वार से पंजाब में पैदल जा रहे हैं, अपनी दादी जी को पालकी में बिठा के पैदल चल के। जी,
6: कितने किलोमीटर का आपका सफर है?
5: हमारा सर एक साइड 295 के आसपास है, तो आने जाने का 600 किलोमीटर के लगभग। सर हमारी दादी जी हैं, दो बुआ जी हैं, और एक इनका दोता है, हमारी बुआ का लड़का है, और 4 भाई हम हैं दादी जी के पोते, तो सभी पैदल बड़ी खुशी से साथ चल रहे हैं।
0: पूरी यात्रा के दौरान पोतों ने बारी बारी से पालकी को अपने कंधों पर उठाया। रास्ते भर दादी अपने पोतों और पूरे परिवार को आशीर्वाद देती रही। श्रद्धा, सेवा और स्नेह का यह अद्भुत संगम जहां भी पहुंचा, लोग भावुक होकर इस अनोखी कांवड़ यात्रा को निहारते रह गए।
7: पर क्या रहता है, मर्दाड़ी जाने मेरे सौरे हैं।
6: कितनी उम्र है आपकी?
7: 100 तक जारी होगी एकादी पर।
0: ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर के असरगंज स्थित कच्ची कांवरिया पथ की है। हरिद्वार निवासी दिव्यांग शिव भक्त बबलू भी देवघर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान बबलू भक्ति गीतों पर बैशाखी को किनारे रखकर एक पैर से ही जमकर झूमते नजर आए। चेहरे पर न थकान और न ही कोई तर, बस बाबा के दर्शन की इच्छा लेकर बबलू आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।
8: नाम काव्या है और 1 साल 4 महीने की है। बाबा नगरिया पैदल ही पैदल जा रही है, नजर आ रही है, इसको अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार जा रही है।
0: अब मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर दंडवत होकर जाते इस शिवभक्त को देखिए, जो एक डोली को खींचते हुए बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। इस डोली में उनकी महज 2 महीने की बेटी है। बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी, 3 साल के बेटे और सिर्फ 2 महीने की बेटी राधा के साथ देवघर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मिथिलेश 6 साल से बैद्यनाथ धाम की दंडवत यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार की उनकी यात्रा अपनी 2 महीने की बेटी के साथ पूर्ण हो रही है। बेटी के लिए विशेष डोली बनवाकर मिथिलेश ने दंडवत यात्रा शुरू की। करीब 10,000 रुपए खर्च कर इन्होंने इस डोली को तैयार करवाया है। डोली में बेटी को धूप और गर्मी से बचाने के लिए ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई है, जिससे पंखा चलता है। मिथिलेश अपनी बेटी राधा को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का इरादा रखते हैं।
9: पिछला बार यही से आए हैं, ये डोली था, छोटकी था भैया, वही में भतीजी दुनू का लाए थे। इनकी बेटे हम बाबा के बोले थे कि मेरा जो भतीजी के ले गए तो मेरा बेटी होना चाहिए, कि बेटी रहेगा तब मैं कन्यादान करेंगे, ताकि बाबा दाम सुन लिए। पर आए थे इनकी बेटी के लेके आए, सब रोका कि 2 महीना का बच्चा लेकर नहीं जाओ, बच्चा का मन खराब हो, बाबा की कृपा होगा तो कुछ नहीं होगा, बेटी भाग से मिलता है, बेटा भाग से बेटी सौ भाग से, कोई उनका नहीं, बेटी का जो होगा तो होगा, बाकी हम लेके जाएंगे बच्चा लाए।
0: इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ भक्ति का सैलाब ही नहीं, बल्कि आस्था के ऐसे ऐसे अद्भुत और हैरान कर देने वाले रूप देखने को मिल रहे हैं, जो आपकी कल्पना से परे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
10: हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ सजाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल अर्पण करने की ये परंपरा शुरू कैसे हुई? आखिर क्यों कांवड़ उठाई जाती है और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आइए आपको लिए चलते हैं इतिहास और आस्था के उस सफर पर, जहां से शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा।

0: फिजाओं में गूंजती बोल पंप की गूंज, सड़कों पर उमड़ा भगवा सैलाब, कांवड़ियों का अलौकिक जज्बा और इस पर महादेव के मिलन का असीम उत्साह। कांवड़ यात्रा श्रद्धा, तप और त्याग का ऐसा महापर्व है जो हर साल करोड़ों शिव भक्तों को एक सूत्र में बांध देता है। कठोर तप, संकल्प, संयम और समर्पण की इस यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं और कहानी जुड़ती है समुद्र मंथन से। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष की तपन भयानक थी, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और विष की गर्मी से उनका शरीर जलने लगा। तब गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने पवित्र गंगा जल से उनका अभिषेक किया। तभी से सावन में शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।
1: सब प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल को अपने धारण कर लिया कंठ में, तो भगवान के कंठ में वो भगवान को अति पीड़ा देने लगा। तो जब भगवान को पीड़ा देने लगा तो भगवान के भक्तों ने उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी पीड़ा शांत करने के लिए उनका जलाभिषेक किया। उनको जल की जो शीतलता है भगवान के विष को थोड़ा शांत देती है, तो भगवान उस व्यक्ति से अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान का जलाभिषेक करता है।
0: माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, जबकि कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और कहानी इस परंपरा को रामकथा के दूसरे किरदार लंकापति रावण से भी जोड़ती है। कथा के अनुसार परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था, तब वो कांवड़ लेकर गंगा जल लेने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर गए थे। फिर उस गंगा जल से उन्होंने बागपत के पुरा महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, जबकि दूसरी कहानी के अनुसार समुद्र मंथन के बाद विष की गर्मी को शांत करने के लिए सबसे पहले रावण ने महादेव का जलाभिषेक किया था। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पुरा महादेव को अर्पित किया था। माना जाता है कि इसके बाद कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। तब से लेकर अब तक समय बदला, युग बदले, लेकिन कांवड़ उठाने का ये संकल्प और आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है। युगों युगों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उसी उत्साह और जोश के साथ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सैकड़ों किलोमीटर की ये कठिन यात्रा सिर्फ एक पैदल सफर नहीं, बल्कि भक्ति, कठिन नियमों और अटूट अनुशासन का एक महायज्ञ है, जिसे हर शिव भक्त बड़ी श्रद्धा से निभाता है। सबका रंग अलग, ढंग अलग, आकार अलग, लेकिन विश्वास एक है। यात्रा करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन नियम सभी के लिए समान और बेहद कठोर होते हैं, जिनके पालन के बिना कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती।

सैकड़ों किलोमीटर की ये कठिन यात्रा सिर्फ एक पैदल सफर नहीं, कठिन नियमों और अटूट अनुशासन का एक ऐसा महायज्ञ है जिसे हर शिवभक्त बड़ी श्रद्धा से निभाता है। लेकिन क्या कोई भी भक्त कांवड़ उठा सकता है, इस यात्रा में शामिल हो सकता है? आपको बता दें कि कांवड़ उठाने के लिए शास्त्र या परंपरा में जात पात उम्र या लिंग का कोई भेद नहीं है। हर शिवभक्त के लिए द्वार खुला है, चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या बच्चे। महादेव की भक्ति में हर कोई कांवड़ उठा सकता है, लेकिन इसकी शुरुआत संकल्प से होती है। कांवड़ ले जाने का फैसला किसी के दबाव भी नहीं, बल्कि भक्त की अपनी इच्छा और मनोती के आधार पर तय होता है। गंगा तट पर पंडितों की मौजूदगी में विधिवत संकल्प लिया जाता है कि भक्त किस प्रकार की कांवड़ उठाएगा। तब विधि विधान से पूजा के बाद भक्त कांवड़ उठाता है। एक बार कांवड़ उठ जाने के बाद यात्रा के नियम बेहद कड़े और सख्त हो जाते हैं, जिनका पालन हर कांवड़िया निष्ठा से करता है। चाहे राह में कंकड़ हों या पैरों में छाले, नियमों का ये कड़ा अनुशासन ही कांवड़ यात्रा को भक्ति और साधना की सबसे बड़ी मिसाल बनाता है। लेकिन कांवड़ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पहली है बोलबम कांवड़, जिसमें लोग बिना जूता चप्पल की यात्रा करते हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़ जमीन से नहीं छूना चाहिए, इसलिए स्टैंड पर कांवड़ रखते हैं। दोबारा चलने पर कांवड़ के सामने उठक बैठक करते हैं। दूसरी होती है खड़ी कांवड़, इसमें कांवड़िए के साथ एक सहयोगी चलता है। आराम के वक्त सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ रखता है। तीसरी है झूला कांवड़, इसमें बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखे जाते, ऐसे में कांवड़ किसी ऊंची जगह पर टांग दी जाती है। चौथी है डाक कांवड़, इसमें कांवड़िए कहीं नहीं रुकते, 24 घंटे के अंदर जलाभिषेक करते हैं। पांचवी होती है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना भी होता है। इसलिए जलाभिषेक के बाद भी कुछ दिनों तक संयमित जीवन जीने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव भक्त सावन के महीने में पैदल चलकर ये तीर्थ यात्रा करता है, कंधे पर कांवड़ लेकर बोलबम का नारा लगाता है, उसे हर एक कदम पर अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सावन का पावन महीना चल रहा है, हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्साह मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है, और केवल इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, चाहे शिव पार्वती हों या श्री कृष्ण और राधा या फिर श्री राम, इन सब की गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र मिलता है, और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी एक बार फिर से रामलाला के झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए है।

0: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि झूलोत्सव की परंपरा त्रेतायुग से चली आ रही है। नया श्री राम मंदिर बनने के बाद इसे और भी शानदार तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लिहाजा इस बार भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
1: तो निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तर द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के

0: सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुंचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झुलनोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झुलनोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झुलनोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झुलनोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे। बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झुलनोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झुलनोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झुलनोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झुलनोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग। फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा अर्चना। हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या। सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन लड़ा। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक। कीचड़ में एक दिन महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा। AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान। लाल किले के भीतर बनाया गया है हाईटेक कंट्रोल रूम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।

आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कहते हैं कुदरत के आगे सब बेबस है। आसमान से जब जब इंसानों पर ये कुदरती कहर टूटा है, ये बेबसी नजर आई है। मगर हमारे देश में एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी फोर्स है जो सीधे कुदरत से तो नहीं, अलबत्ता कुदरत के कहर से जरूर लोहा लेती है। चाहे सैलाबी बारिश हो, तूफान हो, भूकंप हो, सुनामी हो, या फिर बादल फटने से मची तबाही, ये फोर्स, ये ताकत हर उस तबाही का, हर उस तूफान का डटकर सामना करते हुए आपको नजर आ जाएंगी। हम और आप इसे NDRF के नाम से जानते हैं।

0: स्थल सेना है। इनका काम जमीन पर रहकर देश की सीमा की हिफाजत करना है। ये हमारी एयरफोर्स है। आसमानी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की है। ये हमारी नेवी है। समंदर के रास्ते दुश्मन घर में ना घुसाए, ये देखना इनका काम है। ये CISF है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इनकी जिम्मेदारी है कि ये देश भर की तमाम अहम सरकारी इमारतें और एयरपोर्ट की निगरानी करे। ये हमारी पुलिस है। देश के अंदर किसी भी राज्य, शहर, गांव, कस्बों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। यानी हर एक फोर्स के जिम्मे अलग अलग जिम्मेदारियां और काम है, मगर एक फोर्स ऐसी है जिसका मुकाबला सीधे कुदरत से होता है, कुदरत के कहर और कुदरत के गुस्से से। है जो अमूमन तभी अपने बैरकों से बाहर निकलती है जब कुदरत का सितम इंसानों पर टूटता है या फिर कोई बड़ा हादसा होता है। 1999 में ओडिशा में आया उस दौर का सबसे भयानक तूफान या चक्रवात। ₹2001 का गुजरात का वो भूकंप, 2004 की वो सुनामी, भला कौन कुदरत की इस कहर को भुला सकता है। ये वो हादसे थे जब पहली बार खुद हमारी सरकारें बेबस नजर आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इंसानों से निपटने वाली फोर्स कुदरत के गुस्से से कैसे निपटे, कैसे इन तबाहियों से लोगों को बचाए, कैसे तूफानों से, सैलाबों से, सुनामी से, बादल फटने से, सुरंगों के बंद हो जाने से, इमारतों के ढह जाने से या किसी भी ऐसी आफत से इंसानों को बचाए। और फिर तभी 2005 में इस फोर्स का जन्म होता है। नाम दिया जाता है NDRF, यानी नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसका सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी भी कीमत पर इंसानी जिंदगियों को बचाना। 2005 के बाद देश भर की किसी भी प्राकृतिक तबाही की तस्वीर को याद कीजिए या आपको वही मौके पर दिख जाएंगे। पिछले करीब 1.5 महीने से मॉनसून की शक्ल में देश के कई राज्यों में कुदरत ने जो तबाही मचा रखी है, ये हर उस तबाही की जगह आपको मुस्तैद नजर आएंगे। ये बारिश का कहर, ये उफनता सैलाब, ये शहरों और बस्तियों में उतर आई नदियां। जरा सोचिए, जहां सब कुछ पानी पानी हो जाए, पानी आपके गले तक आ जाए, वहां से कोई कैसे खुद की जान बचाए। ये तस्वीरें देश के बेशक अलग अलग शहरों, गांव या कस्बों की हो, मगर जब भी ये लहरें बेलगाम होती हैं, तब उन्हें काबू करने और उन लहरों से जिंदगी को सही सलामत बाहर निकालने के लिए आपको ये नारंगी वर्दी, ये नाम, ये चेहरे हर जगह मिल जाएंगे। ये महाराष्ट्र के भिवंडी का नारपोली इलाका है। बरसाती बारिश ने यहाँ भी कहर ढाया। बारिश ऐसी कि एक पूरी 4 मंजिला इमारत को ही बहा डाला। हादसे की खबर मिलते ही देर रात हमेशा की तरह NDRF की टीम मौके पर मौजूद थी। हालांकि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी वक्त पर पहुंचकर जितनी जानें बचाई जा सकती थी NDRF के जवानों ने बचाई। बारिश का पानी जब अपने साथ आफत लेकर आता है तो फिर इंसान और जानवरों में भी फर्क नहीं करता। असम के एक इलाके में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। चारों तरफ बारिश का पानी और बीच में ऊंचाई पर होने की वजह से एक टापू जैसी जगह। पानी से बचने के लिए बहुत सारी गाय यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन निकलने का दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे वक्त में वही एनडीआरएफ की टीम इन्हें बचाने भी यहाँ तक आ पहुँची। एक तरफ जानवरों को भी बचाना था, दूसरी तरफ इंसानों की भी जान बचानी जरूरी थी। इसी असम में कई जगह ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जहां लोग पानी में घिर चुके थे। बड़े तो खैर फिर भी हाथ पांव मार रहे थे, पर बच्चे क्या करते। चारों तरफ सैलाबी मुसीबत थी। इस मुसीबत में भी वही मसीहा इन्हें बचाने यहां पहुंच गए। ये देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये केरल की तस्वीर है। तस्वीरें लगभग वही है, पानी और पानी। इन्हीं पानी में फंसे लोगों को यहाँ भी मदद की जरूरत थी। मददगार यानी एनडीआरएफ की टीम यहाँ भी पहुँची। यहाँ भी लोगों को सैलाबी खतरों से बाहर निकाल उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाए। बरसात में ये सूरत की सूरत है। ऊंची ऊंची इमारतें, नामचीन शहर, लेकिन बादल को जरा सा गुस्सा क्या आया, सारे शहर को सैलाबी बना दिया। पानी ऊंची ऊंची इमारतों को चढ़ा रहे थे। शहर में सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी थी। न जाने कितने ही लोग कहां कहां फंसे हुए थे। फिर यहां भी एनडीआरएफ पहुंची। इसी सूरत से कुछ दूर पर गुजरात के ही वलसाड़ में भी लगभग यही मंजर था। वही पानी, वही जिंदगी, वही जंग। इस जंग में यहाँ भी सबसे आगे वही एनडीआरएफ। ये बिहार के गया की तस्वीर है। यहाँ मॉनसून ने तो कोई कहर नहीं ढाया, लेकिन इंसानी गलती के चलते 3 साल का एक बच्चा पीयूष इस बोरवेल में जा गिरा। पहले तो मौके पर मौजूद लोगों ने, फिर पुलिस प्रशासन ने पीयूष को बोरवेल से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाए तब फिर उसी एनडीआरएफ को आवाज दी। एनडीआरएफ की तजुर्बेकार टीम पहुंची, काम शुरू किया। 4 घंटे लगे जरूर, लेकिन पीयूष ऊपर आ गया। जब पीयूष बोरवेल से ऊपर आया तब मिट्टी में सना हुआ था। एनडीआरएफ के आने से पहले लोगों ने लगभग उम्मीद का दामन छोड़ दिया था, लेकिन मिट्टी से सने पीयूष ने जब अपनी आंखों से टुक टुक अपने आसपास खड़ी भीड़ को देखा, उसकी पलकें हिली तो लोग खुशी में चीखने लगे।
1: एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था, हमें सूचना मिली थी कि एक बच्चा बोरवेल में गिर गया है और उसके लिए हमारी टीम को कॉल किया गया था। हमें सूचना मिलते ही हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमारी एक अलर्ट टीम होती है जो तैयार रहती है किसी भी सिचुएशन पे इमीडिएटली मूव करने के लिए। हमने उस टीम को यहाँ से निकाल दिया। हमारे लोगों ने वहाँ जाके देखा बच्चा, उसको हमारे पास अपना एक मॉडिफाइड कैमराज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को जिसकी मदद से देखा गया कि बच्चा किस पोजिशन पे वहाँ पे बैठा हुआ है, और हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके साथ बच्चे की माँ की बात करवाई गई ताकि बच्चे को हौसला मिले। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट होते हैं जिसकी वजह से हम 2-3 प्रकार के, जैसे आप देखेंगे पीछे डिस्प्ले पे रखे हुए हैं, उसको हम एल हुक, अम्ब्रेला हुक, जे हुक या बाकी बलून्स, इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो नीचे विक्टिम है वो किस कंडीशन में है, तो उस तरह के इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया और उसकी मदद से उस बच्चे को ऊपर निकाल दिया गया और उसके बाद उसको उसके पेरेंट्स को सौंप दिया गया।
0: ये वही एनडीआरएफ है जिसने अभी पिछले साल ही गुस्साए बादल और पगलाई लहरों का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि अनगिनत जानें बचाई। ये तस्वीरें याद है ना आपको? सितंबर 2025, देहरादून में अचानक 2 जगहों पर बादल फटता है। इससे देहरादून और उसके आसपास के पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। बादल फटने से जो सैलाब आया वो सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले गया, फिर चाहे वो सड़क हो, पुल हो, गाड़ियां या घर। मानसून के मद्देनजर खुशनसीबी ये थी कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहले से मौजूद थी। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी बादल फटने के बाद की तस्वीर है। अचानक आए सैलाब में ये बच्चा फंस गया। जान बचाने के लिए बीचों बीच बिजली के खंभे पर जा चढ़ा। पानी उफान पर है, बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसी हालत में एनडीआरएफ के यही जवान फरिश्ते की शक्ल में यहाँ पहुँचते हैं और इस बच्चे को कुछ इस तरह मौत के मुँह से बाहर निकालते हैं। भराली, 5 अगस्त 2025।

ये देखिए। जी नहीं, पहाड़ों से उतरती नदी की ये खौफनाक लहरें अपने साथ कोई कचरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ कर ले जा रही है। सदियों से कुदरत ने जब जब अपने तेवर बदले तो तबाही के ऐसे ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसानी बस्तियां उजड़ती रही, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। गुस्साए बादल और बेलगाम लहरों का उत्तराखंड में क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखना ही काफी है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हिमालय के दरार पर बसा ये धराली गांव है। गंगोत्री हाईवे के करीब बसे इस गांव की खूबसूरती किसी की भी आंखों को खुशनुमा कर दे। करीब 700 लोगों का परिवार इस गांव के 150 घरों में रहता है। अपनी खूबसूरती के चलते ये टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है। 5 अगस्त के दोपहर के ठीक 12:40 पर यहां आसमानी आफत आई थी। सैलाब उसी तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। बाई तरफ की बस्तियां जो ऊपर की तरफ और किनारे पर थी वो तो बच गई, पर सामने की पूरी बस्ती तिनके की तरह बहने लगी। सिर्फ 34 सेकंड की आफत थी, पर इसी 34 सेकंड में ये गुस्साया सैलाब अपने साथ हर चीज को बहा कर ले गया। रास्ते सड़क सब खत्म हो चुके थे। मौसम इतना खराब कि उड़कर भी पहुंचना मुश्किल, फिर भी खुद ही रास्ते बनाते हुए वही फरिश्ते यानी एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंचती है और जिंदगी बचाने में जुट जाती है। ये उसी धराली में एनडीआरएफ की मौजूदगी की तस्वीरें हैं, जहां एक एक इंसानी जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को भी खतरे में झोंक डाला था। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। जैसे ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए फौरन एनडीआरएफ की टीमें हाजिर थी। छोटे छोटे बोट के जरिए इन्होंने लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। पंजाब

पंजाब में अगस्त और सितंबर में जबरदस्त बारिश के चलते सतलज, ब्यास और रावी नदियों का जलस्तर अचानक इस कदर खतरनाक स्तर तक बढ़ गया कि नदियां शहर और गांव में उतर आई। ऊपर से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर बांधों से पानी छोड़ दिया गया। इससे निचले इलाके डूबने शुरू हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में पानी भरने लगा। पंजाब में आई ये बाढ़ पिछले 3 दशकों में सबसे विनाशकारी मानी जा रही है। इस बाढ़ के चलते लगभग 2000 गांव डूब गए। करीब 4 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा। 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो गई। 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इस बाढ़ में भी एनडीआरएफ की टीमें सीना ताने खड़ी थी। चाहे बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम हो या उन तक जरूरी सामान पहुंचाने का, लोगों की जिंदगी बचाने का या फिर जिंदगी से मौत को दूर करने का। ये तमाम तस्वीरें पंजाब बाढ़ की हैं, जिसमें एनडीआरएफ ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। हजारों जिंदगियों को बचाने वाली इस ताकत, इस फोर्स का खुद जन्म कब और कैसे हुआ, इनके परिवार में कितने सदस्य हैं, एनडीआरएफ की पूरी कहानी आपको बताते हैं। एनडीआरएफ के पैदा होने के बाद इसकी पहली परीक्षा 2008 में बिहार के कोसी में हुई। तब कोसी नदी में बाढ़ आ गई थी। 19 अगस्त 2008 को कोसी बैराज में दरार आने के बाद एनडीआरएफ को फौरन बिहार रवाना किया गया। इस आपदा में एनडीआरएफ ने अपनी क्षमता और काबिलियत का शानदार प्रदर्शन किया। इसने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम शुरू किए। एनडीआरएफ ने तब बाढ़ में फंसे 153 लोगों को एयरलिफ्ट किया था। वह एनडीआरएफ ही थी जिसने 1 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ में 16 बटालियन है। इसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ दोनों से 3-3 और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 2-2 बटालियन शामिल हैं। हर एक टीम में 18 स्पेशलिस्ट के साथ लगभग 45 लोग होते हैं। टीम में इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, स्वान दल और मेडिकल पैरामेडिक्स के लोगों को रखा जाता है। हर एक बटालियन में 1149 लोग होते हैं। कुदरती कहर या इंसानों की पैदा की गई मुसीबत, दोनों ही तरह की आफत से निपटने के लिए इन सभी 16 बटालियन के स्टाफ को उसी तरह की ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है। इस समय देश में इस फोर्स के 18,500 से ज्यादा दूत लोगों की जान बचाने के लिए मिशन पर लगे हुए हैं। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी का सामना करने के लिए भी इन्हें ट्रेन किया गया है। एनडीआरएफ की ये 16 बटालियन देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात है। इसका मकसद किसी भी मुसीबत के वक्त जल्द से जल्द इन्हें घटनास्थल पर पहुंचाना है। सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, मतलब आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब मुसीबत में फंसे लोगों की मदद के लिए हमेशा और हर जगह तैयार, यही मंत्र है एनडीआरएफ का। गुड न्यूज टुडे। इस करिश्माई फोर्स, इन देवदूतों के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: देवों का देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन, और इस पावन महीने में जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, एक तरफ जहां शिवालयों में रौनक है तो रास्तों से गुजरते कांवड़ यात्रियों के बम बम भोले के जयघोष से गांव और शहर शिवमय हो रहे हैं। संकल्प साधना और आस्था की इस अद्भुत यात्रा का उत्साह देखते ही बनता है। तरह तरह के कांवड़ महादेव को समर्पित रंग बिरंगी झांकियां, भोलेनाथ के भजनों पर झूमते कांवड़िए सब सावन को दिव्य ऊर्जा से पूरी तरीके से भर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार की पूजा के लिए शिव भक्त जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी उत्साह से जुड़ी 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला नजारा झांसी का है, जहां पर आस्था और शिव भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के साथ गुंजायमान हुआ। डीजे ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ भव्य कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह अद्भुत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर भोले की भक्ति के साथ देशभक्ति का भी संदेश देती है 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़। इन दिनों लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर सहारनपुर के गांव हंगावली की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों की ये अनोखी कांवड़ तिरंगे के रंग में पूरी तरीके से रंगी हुई है। आखिरी तस्वीर भी देख लीजिए, बिहार से आई है, जहां पर मुजफ्फरपुर पहुंच रहे कांवड़ियों को थकान और पैरों के दर्द से राहत देने के लिए फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी तकनीक से लगातार सेवा की जा रही है। चारधाम की तीर्थयात्रा पर भी सावन का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो सावन में बहुत से श्रद्धालु गंगाजल लाने गंगोत्री जाते हैं और भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर केदारनाथ धाम भी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पावन सावन के रंग।

0: पावन महीने में बाबा केदारनाथ के धाम पर रौनक देखते ही बनती है। पूरी केदारनाथ घाटी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी से बाबा केदारनाथ की नगरी में इन दिन अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल है। समय समय पर हो रही बारिश के कारण मुश्किलें भी आती हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है, परंतु कठिन परिस्थितियों के बीच भी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद लगातार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: आजकल मौसम के कारण कई जगह कई बार मलबा और पत्थर आने की भी स्थिति बन रही है, जहां पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं और जो SDRF है वो लगातार कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ JCB और अन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मलबे और पत्थर को हटाया जा रहा है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा सके।
0: अब तक 14,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन दिनों कांवड़ यात्रा के कारण यहां श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। यात्रा मार्ग से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक खास चहल पहल दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या का असर सोनप्रयाग की पार्किंग पर भी साफ नजर आ रहा है। पार्किंग कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों से लगभग पूरी तरह भरी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।
1: देखिए, सावन के महीने में और कांवड़ के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसमें हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जो यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्यबद्ध है और वहाँ पर कार्य कर रहा है।
0: सावन के रंग बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर हर तरफ मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक कोना कोना श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। वैसे तो बीते वर्षों में भी कांवड़िए सावन में बद्रीनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफे से नया ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बरसात के इस मौसम में बद्रीनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी चार धाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है। मौसम और भारी लोगों की आस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट कोनिस्टरे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन रमजान के पावन महीने में देख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग। फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा अर्चना, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या। सावन झूला मेले में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक, कीचड़ में एक दिन महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, एआई तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम।
2: गुंडनी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
5: डाक कावड़ का अंतिम चरण शुरू, धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। हरिद्वार में डाक कावड़ का रेला, बाइक सवार कावड़ियों की उमड़ रही है भारी भीड़। हाईवे से लेकर शहर तक कांवड़ियों का हुजूम, हर हर महादेव के जय घोष। हर की पैड़ी पर लगातार पड़ रहे हैं शिव भक्त, डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना जारी। गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर रवाना, 11 अगस्त को शिवरात्रि पर होगा जलाभिषेक। भगवान शिव के प्रति 63 वर्षीय राजबाला की अनोखी आस्था, 5 दिन में हरिद्वार से दिल्ली का सफर तय किया। कंधे पर कांवड़ के साथ 21 लीटर गंगा जल के साथ पूरी की यात्रा, चेहरे पर थकान नहीं, जुबां पर हर हर महादेव। 45 वर्षीय दिव्यांग शिव भक्त सुनील की अनोखी कांवड़ यात्रा, पैर नहीं देते साथ लेकिन बुलंद हौसलों के साथ कांवड़ यात्रा जारी। 1 साल की रानी आराध्या की पहली कांवड़, माता पिता के साथ गंगोत्री से दिल्ली का सफर। कांवड़ यात्रा में दिख रही आस्था की अद्भुत तस्वीरें, रंग बिरंगी कांवड़ लेकर पढ़ रहे हैं शिव भक्त, मार्ग पर भक्ति और उल्लास। भागलपुर में बरगद के नीचे बोलबम के अनोखी टोली, पेड़ की छांव में सजा शिव भक्तों का डेरा। को रास्ते में जहां मिल रहा है आसरा, वहीं पर खुद का जलाया जा रहा चूल्हा। बोलबम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा है कांवड़ियों का कारवां, बोलबम यात्रा में देखिए गजब की भाईचारे की मिसाल। कर्ण और आनंद का क्षण, बोलबम के रास्ते में भी दिख रहा है कांवड़ियों का बरगद के नीचे बना आस्थाई डेरा। भक्ति के रंग में रंगा हुआ है पूरा माहौल, महिला और पुरुष भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 36 साल के अंकुर नदी के अनोखी भक्ति, माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन्नत, 35 किलो की कांवड़ लेकर कर रहे हैं बोलबम की यात्रा। पश्चिम बंगाल के मालदा से पहुंचे शिव भक्त अंकुर नंदी, कांवड़ में घुंघरू और डंगू में खास संगम। 3 साल से बोलबम यात्रा कर रहे हैं अंकुर, हर साल बढ़ाते हैं अपनी कांवड़ का वजन। मुजफ्फरपुर में 74 साल की कृष्णा बम की अटूट आस्था, पैरों में तकलीफ के बावजूद 43 साल से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा लगातार जारी। 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर रवाना, बोलबम के जयकारों के बीच बढ़ रहे हैं कदम, मुंगेर में कांवड़ियों का जोश आया। कामेगा एकादशी पर शिवालय में उमड़ रहे हैं कांवड़िया, बाबा का किया गया जलाभिषेक। मुंगेर में घुटनों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला शिव भक्त, 108 किलो की मूर्ति कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा का कर रहे हैं शिव भक्ति में सामने। फरीदाबाद में दिख रहा है जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया एक अनोखा शिव भक्त, प्रेमानंद महाराज के लिए कर रहा है दंडवत कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा नन्हे शिव भक्तों का हौसला। स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहे हैं नन्हे कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों ने निकाली अनोखी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार से बुलडोजर पर लेकर आए पवित्र गंगाजल। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उमड़ रही है कांवड़ियों की भीड़। बोलबम और हर हर महादेव। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा में जुटे बीजेपी नगर विधायक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी में 151,000 रुद्राक्ष से बना अनोखा शिवलिंग। नागेश्वर महादेव में सावन के दौरान भक्त विशेष अनुष्ठान के साथ रुद्राक्ष शिवलिंग के कर रहे हैं दर्शन। सादड़ी में शिव चिंतामणि अनुष्ठान में रोजाना करीब 4500 पार्थिव शिवलिंग। सावन मास की कामिका एकादशी पर जगन्नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु भक्तों ने किए दर्शन। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगी हुई है लंबी कतार। हजारों की संख्या में पहुंच रहे भक्त। एकादशी के पवित्र मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या के हनुमान कड़ी पहुंच रहे भक्त। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जारी। उज्जैन में कामिका एकादशी पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार। बड़ी संख्या में भक्त भस्मारती में शामिल हुए। प्रसिद्ध गायक बी प्राग भी पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार में आरती में शामिल होकर आशीर्वाद। सावन के पवित्र महीने में अयोध्या में बढ़ी भक्तों की संख्या। हजारों की संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। कामिका एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में लगाई डुबकी। जल भरकर शिवालयों की ओर रवाना। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में बढ़ रही आस्था। शिव भक्तों में भगवान का जलाभिषेक किया। रामनगरी अयोध्या में आगामी झूलनोत्सव की जबरदस्त तैयारियां। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी कि 15 अगस्त की शाम कुबेल टीला जाएंगे रामलला। चीन में आयोजित विश्व युवा ट्रांस नेशनल चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर। साकनिक और सैंतन ने ब्रिज में जीता स्वर्ण। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और मेडल। हाई जंप में बसंत मेघवाल ने जीता सिल्वर। राजस्थान के बसंत ने इससे पहले एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भी जीता था गोल्ड। अश्विता चाहिला ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। अश्विता ने चीन की हान कियान शी को हराकर जीता खिताब। भारतीय शटर अश्विता बनी कोरिया मास्टर्स चैंपियन। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। लाल किले और आसपास के इलाके में लगाए जा रहे हैं 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे। AI इंटीग्रेटेड कैमरों के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। 15 अगस्त समारोह में सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ साथ आसमान से भी होने वाले खतरों पर रखेंगे नजर। ड्रोन खतरे से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम किए जाएंगे तैनात। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद। सुरक्षा और निगरानी के लिए FRS और बायोमेट्रिक सिस्टम का भी इस्तेमाल। लाल किले के आसपास किसी असामाजिक तत्व की एंट्री रोकने के लिए अभिज्ञान ऐप का होगा इस्तेमाल। दिल्ली में सिंदूर आर्मी महाब्लड डोनेशन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी पुलिस। सही समय पर मेडिकल उपचार देकर बचाई जान। रांची में जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है आदिवासी दिवस। कला संस्कृति का कलाकारों ने ही परिचय दिया। दिल्ली मेट्रो ने 2026 में अब तक 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी का दावा किया। एमआरसी के अनुसार मेट्रो में रोजाना औसतन 64 लाख से ज्यादा यात्री कर रहे हैं सफर। देश भर में घर घर तिरंगा अभियान की हो गई शुरुआत, 17 अगस्त तक चलाया जाएगा अभियान। लखनऊ में हर हर घर तिरंगा अभियान की हो गई शुरुआत, बड़ी संख्या में बच्चे भी रैली में शामिल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शिरकत की। रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में घर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ओडिशा का संबलपुर में भी निकाली गई घर घर तिरंगा रैली, पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। धर्माद में दिखा चमत्कार, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी युवती को घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। काठमांडू में बौद्धनाथ स्तूप पर ट्रिब्यूट रन 5K का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, छात्रों ने नाट्य संगीत से लोगों को जागरूक किया। पुडुचेरी पुलिस को गृहमंत्री ने सौंपा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान। पुडुचेरी में सभी धर्मों के गुरुओं की मौजूदगी में हुआ समारोह, सभी ने देश हित में प्रार्थना की। समारोह के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया, पुलिस जवानों ने सलामी दी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर वायुसेना बैंड आज देगी खास प्रस्तुति। वायुसेना बैंड में अग्नि वीर वायु महिला बैंड सहित 40 संगीतकार होंगे शामिल। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केरल समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आंधी तूफान की चेतावनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी हवाएं। फिट इंडिया मिशन के तहत देश भर में कई आयोजन, लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक किया गया। हरियाणा के नारनौल में यूथ मैराथन का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। यूथ मैराथन में लोगों ने तिरंगे के साथ लगाई दौड़। कीव में गूंजा यूक्रेनी संगीत, इंद्रधनुषी आसमान के नीचे सजा संगीत समारोह। युद्ध के बीच मना खुशियों का उत्साह, संगीत और संस्कृति से मिली राहत। कीव में देखी यूक्रेनी सांस्कृतिक ताकत, लोगों का वेशभूषा में नजर आए। युद्ध के बीच संगीत का सहारा, मन से देखी यूक्रेन की एकजुटता, संगीत में नजर आया हौसला। संगीत और नृत्य से गुलजार हुआ समारोह, यूक्रेनी सैनिक भी बने जश्न का हिस्सा। बोस्निया में गोताखोरों का खतरनाक स्टंट, लेवा झरने से लगाई रोमांचक छलांग। पत्थर फीट ऊंचे झरने से छलांग लगा रहे हैं गोताखोर, जासे में हुई इंटरनेशनल वॉटरफॉल जंपिंग। बोस्निया में रोमांच का तड़का, 22 मीटर ऊंचे झरने से कूदे क्लिफ डाइवर। झरने से छलांग के दौरान हवा में कर्तव्यत लगाते हुए नजर आए गोताखोर। झरने के पास जुटी दर्शकों की भारी भीड़, पानी में उतरते ही गूंजी तालियां। गायिका विटनी भी बनी बॉबी सिग्नेचर सीरीज का हिस्सा, मेटल ने म्यूजिक वीडियो वाले लुक में लॉन्च किया। माहौल को रंग बिरंगे ईयर रिंग्स और हील्स के साथ माइक्रोफोन और स्टैंड सजाया गया। अटलांटा में पांचवे लीस जेसी अवार्ड ऑफ लव गाला में डॉल का हुआ अनावरण, विटनी दुनिया की महान गायिकाओं में शुमार। ब्रिस्टल में भव्य इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया, सैकड़ों लोग शिरकत किए। ब्रिस्टल में आयोजित इस क्रियास्टा में 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून हुए शामिल। चीन के अनुहुई में तैयार किया गया स्मार्ट पैट कॉलर। कॉलर से पालतू जानवर के भावनात्मक स्थिति को समझने में का दावा दिया जा रहा है। मालिक को अपने पालतू के मूड और जरूरत के हिसाब से समझने में मिलेगी मदद। कॉलर से जुटा गया डेटा एआई मॉडल करता है विश्लेषण। चीन में विकसित इस तकनीक के एआई मॉडल को 5,00,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स से किया गया है प्रशिक्षित। अनुहुई के वुहू इंटेलिजेंस कंप्यूटर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पार्क में कंपनियां इस तकनीक पर कर रही हैं काम। चीन के सिचुआन प्रांत में टॉर्च फेस्टिवल के दौरान लाखों लोगों ने मनाया जश्न। हजारों मशालों और 86 अलावों के साथ जगमगा उठा एवेन्यू। लगभग 3 किलोमीटर लंबे हांग तियान एवेन्यू पर लोगों ने एक साथ जलाई मशाल। टॉर्च फेस्टिवल में उमड़ा सैलानियों का हुजूम। पारंपरिक आयोजनों में अलग अलग जातीय समुदाय के लोग शामिल। टॉर्च फेस्टिवल चीन के ये जातीय समुदाय का पारंपरिक त्यौहार है। चंद्र कैलेंडर के 6 महीने की 24वीं तारीख के आसपास मनाया जाता है। टॉर्च फेस्टिवल 19 जुलाई को हुआ था शुरू। पूरे आयोजन में संस्कृति और पर्यटन से जुड़े कई खास कार्यक्रम हुए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: सावन के दूसरे सोमवार का क्या है पूजा विधान? सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है सावन के दूसरे सोमवार की महिमा, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: देखिए, सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोलबम का जयघोष है। भगवान भोले शंकर के भक्तों की भक्ति है और हर ओर आस्था के बिखरे अनोखे रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कांवड़ दिए शिवभक्त शिवालयों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। ऐसे में हम आपको एक खास शिवभक्त से मिलवाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, इनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन आस्था के पैमाने पर वो बड़े बड़ों को पीछा छोड़ सकते हैं। देखिए संवाददाता मनीषा लड्डा की रिपोर्ट।
2: भोले के ना जाने कितने रूप है और उन्हीं में से एक सबसे छोटा रूप मैं आपको ये दिखा रही हूँ। एक साल की आराध्या है। सबसे पहले तो मैं इस कैरियर से शुरू करूंगी कि बेबी कैरियर में किस तरीके से जो है उसको सजाया गया, क्योंकि ये आराध्या की जो है प्रथम कांवड़ यात्रा है। इन्होंने ये पोस्टर भी जो है इसलिए लगाया है, आराध्या की तस्वीर जो है इसमें लगाई गई है और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा है गंगोत्री धाम से लेकर हैदरपुर। हैदरपुर के ये लोग निवासी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दिख जाएगा बम बम भोले के जयकारों के साथ इन्होंने ये नई शुरुआत करी है। इस बच्ची की एक साल की उम्र है लेकिन भक्ति का ये भी रूप है जो देखने को मिलता है। हर साल ही अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आती है, लेकिन सबसे छोटा रूप मैं आपको भोले का दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से एक साल के बच्चे ने गंगोत्री धाम से ये यात्रा जो है शुरू करी और वो यहाँ पर दिल्ली यहाँ पहुंची है। एक साल की होने के बाद जो है इसकी पहली कांवड़ यात्रा है। अच्छा, मैं ये एक बार दिखाना चाहूंगी तस्वीरें कि हर कोई जो है पिट्ठू पे कंधों पे जो है वजन जो है वो लेकर चलता है, जल लेकर चलता है, लेकिन आराध्या ने अपने इस छोटे से झूले को ही अपनी कावड़ बना ली है। आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा जल की जो बॉटल्स है वो आपको नजर आ जाएगी। हैंकी से जो है वो पूरी इस बेबी कैरियर को जो है वो सजाया गया है। अच्छा, आराध्या ने कितना जल लिया है ये बताइए।
3: ये आराध्या का जल है।
2: अच्छा, आराध्या का जल देखिए कितना, छोटी सी बच्ची का छोटा सा जल, मतलब ये तो होगा
3: गंगोत्री का है।
2: अच्छा,
3: ये महाकाली द्वार का है।
2: तो ये कितना है ML?
3: ये होगा
2: 500 ml लगभग होगा, ये बच्ची के साइज के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि 500 ml का जल जो है
3: गले में डाल के।
2: अच्छा, चलाते हैं।
3: हाँ।
2: तो ये अच्छा, ये एक बार दिखाना, मुझे भी तस्वीरें दिखाओ फिर ये वाली। बिल्कुल दिखाओ इसकी, नहीं नहीं इसको चलाकर दिखाइए। मैं चाहूंगी एक बारी कि आराध्या देखो कि आपने बड़े बड़े जो है भोलों को देखा होगा कि किस तरीके से अच्छा खासा वजन जो है वो लेकर जो है वो चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये बाल रूप देखिए, ये आराध्या का बाल रूप देखिए कि 500 ml का जल है गंगोत्री धाम से लाया हुआ ये जल है। तो आप तस्वीरों पे मैं छोड़ती हूँ कि किस तरीके से आराध्या की तस्वीर आपको दिख जाएगी और आराध्या की ये पहली कांवड़ यात्रा जो कि बड़े ही सुखद और अच्छे से जो है खुशहाल तरीके से जो है इनकी पूरी हुई है। यहाँ
1: बात गणपति उत्सव की करेंगे। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेश उत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर में करीब 1.25 महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्सव का उल्लास नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामली ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया।

0: कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा अर्चना, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन लड़ा है। कर्नाटक के मंगलुरु में पारंपरिक ग्रामीण उत्सव की रौनक, कीचड़ में एक दिन महोत्सव का नाम, युवा महिलाएं और बच्चे बढ़ चढ़कर ले रहे हैं भाग। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया है हाईटेक कंट्रोल रूम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

AI से क्यों डर गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल AI का जिक्र हो रहा है क्योंकि दुनिया भर में हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से AI का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। AI तकनीक का इस्तेमाल करने के मामले में अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत सबसे आगे हैं। लेकिन इसी बीच दुनिया में एक चर्चा बहुत तेज हो गई और ये चर्चा AI की ग्रोथ को लेकर हो रही है। तो किसने की? ट्रंप से बेकाबू AI की शिकायत। AI की ग्रोथ स्लो करने की मांग क्यों उठ रही है? क्यों घबराए हैं जाने माने टेक एक्सपर्ट और AI बनाने वाले ही AI से क्यों डर गए हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने टेक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे।

0: एआई की शिकायत की गई है। अब क्यों शिकायत की, क्या है उस शिकायत में और इसके पीछे की वजह क्या है, ये आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका में एआई की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की अपील की जा रही है। कई एआई कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी सरकार को एक ओपन लेटर लिखा है। ये एक्सपर्ट्स ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल डीप माइंड से जुड़े हुए हैं और इनमें 1100 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व एक्सपर्ट दोनों शामिल हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि आने वाले समय में एआई खुद पर रिसर्च करने लगेगा। नई एआई तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो सकती है। अब ऐसे में इंसानों के लिए एआई के खतरे बनने की आशंका जताई जा रही है। कहा वैसे ये भी जा रहा है कि नई तकनीक से इंसानों के पास एआई के असर से सुरक्षा इंतजाम की कमी हो सकती है। तो क्या एआई इंसानों के लिए खतरा, इसको लेकर चर्चा हालांकि बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन अब जब टेक एक्सपर्ट ही इसको लेकर सरकार को खत लिखे तो मामला गंभीर हो जाता है। लिहाजा अमेरिका को दूसरे देशों के साथ कानूनी तकनीकी सिस्टम तैयार करने का एक सुझाव भी दिया गया है। तो हाल ही में टेस्टिंग के दौरान एक एडवांस एआई मॉडल ने सिक्योरिटी लिमिट क्रॉस की। हालांकि ओपन एआई ने कहा था कि किसी यूजर का डेटा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मामले के बाद एआई सुरक्षा को लेकर यकीनन एक बहस जरूर छिड़ गई है, बहस तेज भी हो गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एआई के विकास की स्पीड को थोड़ा सा थामना चाहिए, थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, क्या एआई के लिए अब ग्लोबली कोई कानूनी सिस्टम जरूरी हो गया है, क्या अब ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो इन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, हमारे साथ होंगे जाने माने टेक एक्सपर्ट जिनसे चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। पवन दुग्गल जी एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के हैं और साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। शुभम सिंह साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अमित मल्होत्रा भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कुछ ही देर में मयंक राज जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन जी मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, ये जो खत लिखा है कहीं ना कहीं जब एआई आया चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि क्या इंसानों को रिप्लेस कर देगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी सेक्टर में वाकई एआई एक बड़ा रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन अब एआई बनाने वाले ही एआई से डर गए हैं।
1: देखिए डर इसलिए गए हैं क्योंकि जिस तेज रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, ये बहुत जल्दी मानव मात्र के लिए एक सवालिया निशान बनकर खड़ा हो जाएगा। एलन मस्क तो ऑलरेडी अब एआई को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना रहे हैं, हमारे वजूद का अब सवाल खड़ा हो गया है। क्यों इतनी तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही हैं, और अब तो क्लॉड ने खुद एडमिट कर लिया है कि उसके जो सिस्टम्स हैं वो रिकर्सिवली सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं, मतलब खुद ब खुद अपने आप ही अपने सिस्टम में जो खामियां उसको देखते हैं, उस खामियों को भरपाई करते हैं और अपने सिस्टम्स को और ज्यादा बेहतर बनाते हैं। तो इस संदर्भ में अब इस तरीके से जब ऑटोनोमस एआई आ गई है, एजेंटिक एआई पर इतना जोर हो गया है, एआई एजेंट्स आपसे बिना पूछे काम करने लग गए हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने लग गए हैं, तो आवश्यकता भी बनती है कि इनको अब जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून एआई को लेकर मौजूद नहीं है और उसको अकाउंटेबिलिटी को के संदर्भ में भी कोई कानून अभी मौजूद नहीं है। मैंने जनवरी में एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, जो लीगल कानूनी सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से आप एआई को कानूनी मान्यता दे सकते हैं और उसे अकाउंटेबल बना सकते हैं, लेकिन चीजें बहुत तेज रफ्तार से आगे अग्रसर हो रही हैं। तो अप्रैल में मैंने एजेंटिक एआई लाइबिलिटी फ्रेमवर्क भी रिलीज किया कि आप किस तरीके से एआई एजेंट्स को आप कानूनी तौर पर जिम्मेवार और लाइबल बना सकते हैं। अब ये सिद्धांत है, इनके आधार पर सरकारें अपने कानून बना सकती हैं, लेकिन जब तक कानून बने तब तक ये लोग जो विशेषज्ञ कह रहे हैं साहब थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए। अच्छा, उनकी जो कॉल है नई नहीं है, 2022-30 नवंबर को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, मार्च 2023 में ही फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी सिमिलर कॉल दी थी कि साहब आपका एआई बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, कृपया थोड़ा थम जाइए, 6 महीने तक एक स्टैंड ऑफ कर लीजिए ताकि कानून को हम इसके दायरे तक लेकर आ सके, लेकिन किसी ने सुना नहीं और एक आर्म्स रेस चलता रहा। आज जब एआई इतना खतरनाक विकराल स्वरूप लेकर आ गया है, उस कॉल को दोबारा से रिट्रीट किया गया है। मुझे लगता है
0: पवन जी आप खतरनाक स्वरूप की बात कर रहे हैं, मैं उस खतरनाक की डेफिनेशन, अमित जी अगर आप बता पाए उस खतरनाक की डेफिनेशन क्या है। रोकने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनाने को लेकर चर्चा हो रही है, पवन जी कह रहे हैं बहुत लंबे समय से कह रहे थे इसको लेकर, और यकीनन चर्चाएं चल भी रही है बहुत समय से, लेकिन अब अमेरिका, वहां जहां पर एआई का इजाद हुआ, जहां सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल होता है, वहीं पर टेक एक्सपर्ट, 1100 से ज्यादा टेक एक्सपर्ट खुद ट्रंप सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं कि फिलहाल इसको रोक लीजिए, थोड़ा सा थम जाइए और इस वक्त एक ग्लोबली एक कानून बनाने की जरूरत है। अमित जी, खतरा कहां पर नजर आता है? अमित मल्होत्रा जी,
2: मिसयूज का खतरा मैम सबसे ज्यादा बड़ा है कि एक एआई जो इतना पावरफुल टूल है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके फेक वीडियोस जैसे डीप फेक्स वगैरह बना रहा है, फेक वॉइस कॉल्स, फिशिंग ईमेल्स और ऑफिस के अंदर फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स के लिए। तो प्रॉब्लम एआई नहीं है बल्कि उससे गलत इस्तेमाल होने वाली चीजों की खतरा है आगे, ठीक है। रूल्स और लॉज भी अभी पीछे हमारे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारी, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है तो उनकी स्पीड बहुत कम स्लो डेवलप हो रही है। तो इसी वजह से एक्सपर्ट्स सबसे पहले चाहते हैं कि जो सेफ्टी का फ्रेमवर्क है वो है पहले बन जाए, उसके बाद एआई आगे बढ़े तो बेटर है, क्योंकि ह्यूमन के कंट्रोल का भी कंसर्न है। अगर मान लेते हैं एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि एआई हमेशा ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, उनके लॉज को फॉलो करे, लेकिन अगर फ्यूचर में जो एआई है सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया तो उनके डिसीजंस जो भी है वो नहीं समझता जाए, उनके कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा आगे जाके। तो यही सब खतरे मैम जो कि मतलब लोग चाह रहे हैं कि एआई का एक बहुत बड़ा खतरा जो है सामने आ रहा है।
0: मायन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कोई भी तकनीक जब आती है हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्लस पॉइंट हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जब एआई आया तो चर्चा इसी बात को, सबसे बड़ी चर्चा तो यही थी कि क्या इंसानों के लिए खतरा है, इंसानों नौकरियों के लिए कितना बड़ा खतरा है आने वाले समय में। एक कॉमन सा सवाल अगर हम देखें तो आने वाले समय में अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि नौकरियां लोगों की जा सकती है, एआई लोगों की नौकरियां ले सकता है, रिप्लेस कर सकता है एआई, लेकिन यहां पर और दूसरे खतरे भी हैं। अब ऐसे में जबकि एआई तकनीक का इस्तेमाल तकरीबन हर क्षेत्र में हो रहा है, खासतौर पर अगर हम डिफेंस सेक्टर की भी बात करें तो।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए समस्या एआई नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड एआई, राइट। और ये बात और गंभीर हो जाती है जब, जैसे कि हम माने जिसने इंजन बनाया है वो ही ब्रेक लगाने की बात करे तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है, राइट। बिकॉज एआई अब कंट्रोल से बाहर है तो सबसे ज्यादा जरूरत है उस पर ब्रेक लगाने की और कंट्रोल्ड एआई को एक तरह से पिक्चर में लाने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई आज के समय में सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है। आप फ्री बैठ सकते हो एआई को अपना डेली ऑटोनोमस टास्क देके, वो आपके बिहाफ पे सारे टास्क करेगा, मेजरली इन दी आईटी इंडस्ट्री, ऑल द पॉसिबल टास्क, सारे पॉसिबल टास्क वो कर।
0: मैं मायन जी स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं, जब ये 1100 टेक एक्सपर्ट चिट्ठी लिखते हैं सरकार को तो जाहिर सी बात है कि किसी खतरे का अंदेशा बताते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछूं, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां के लिए एआई बहुत ज्यादा खतरनाक है?
3: देखिए, एआई ने आज के समय में किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा हुआ है, वो सारे सेक्टर में है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, वो हर एक टास्क को ऑटोनोमसली एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर वो उसको ऑटोनोमस एग्जीक्यूट करने की पावर है तो उसको कुछ भी करने की पावर है। तो द मेजर पॉइंट इज कि उसके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, उसको मॉनिटर करने की, जैसे दुग्गल साहब ने कहा, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है कि अगर ये हुआ तो किसने किया, क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। आज के समय में जिम्मेदार कोई नहीं है अगर एआई कुछ भी करता है। कंपनीज खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि एआई अब उनका काम खुद कर रहा है, खुद ही कोड लिख रहा है, खुद ही वैलिडेट कर रहा है, खुद ही फीचर डेवलप कर रहा है, हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी भागती हुई गाड़ी है जिसमें ब्रेक अभी नहीं है और हम उसमें ब्रेक्स लगाने की संभावना कर, ब्रेक लगाने की वो रखते हैं,
0: ब्रेक लगाने को लेकर बात हो रही है, कानून बनाने को लेकर बात हो रही है। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे। शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, 1100 टेक एक्सपर्ट ने चिट्ठी लिखी है ट्रंप को कि एआई खतरा बनता जा रहा है, बेकाबू एआई को काबू में करने की जरूरत है। पहले तो इस पर आपकी राय और इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह हो सकती है?
4: देखिए, एआई के थ्रू बहुत सारे सेक्टर्स में, जिस तरीके से हम डिस्कशन सुन रहे थे, हर एक सेक्टर में अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग, और बहुत ही एडवांस एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं और ये थ्रेट्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये इसमें कंट्रोल लाने की जरूरत तो है कि एक मॉडरेशन हो, एक लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, जैसे कि एक स्विच किल की जहां पे बात हो रही है, इस तरीके से एक मॉडरेशन हो जो कंट्रोल कर पाए जो भी एआई के द्वारा जो भी क्राइम हो रहे हैं उस चीज को।
0: ठीक है, एक बार दुग्गल जी आपको इंक्लूड करूंगी। अब यहां से अलग अलग सेक्टर्स की बात करते हैं, जब हम सेक्टर वाइज बात करते हैं, आपने एक और बात कही कि एआई जो है वो खुद का इंजीनियर भी बन रहा है, ये एक सबसे बड़ा खतरा है शुरुआत में जब आपने चर्चा की थी। इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर्स हैं, अब बात साथ ही साथ उस पर भी करते हैं कि क्या इस पर लगाम लगाई जा सकती है। देखिए, मैं सीधे तौर पर ये जानना चाहूंगी दुग्गल जी आपसे, आपका इतना एक्सपीरियंस है, जब भी कोई तकनीक आती है, कंप्यूटर जब भी आया था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो जाहिर सी बात है अगर उसका फायदा हुआ तो उसका नुकसान भी हुआ, वो हमने देखा पूरी दुनिया ने कहा अलग अलग सेक्टर्स में हुआ। एआई उससे भी ज्यादा स्मार्ट, उससे भी ज्यादा एडवांस है, जाहिर सी बात है ये हम सब वाकिफ थे इस बात से कि एआई का भी मिसयूज होगा जो कि हो रहा है, और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस पर लगाम लगानी चाहिए। सेक्टर्स कौन से हैं, कैसे इस पर आगे काम किया जा सकता है?
1: कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पर एआई अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर ह्यूमन एक्टिविटी और एंडेवर का अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरीके से प्रभावित होने के रिश्ते में है, और कुछ ही समय दे दीजिए लोग ऑलरेडी आश्रित हो जाएंगे। और साथ ही साथ तो मैं तो भारतवर्ष में एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले 9 महीनों में जो मैं काम करता हूँ एआई को लेकर, तो मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में अभी एक यू टर्न शुरू हो गया। अभी 78 साल हुए थे भारत को स्वतंत्र हुए, और अब पिछले 9 महीनों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भारतवासी और कंपनियां कह रही हैं मुझे आपका गुलाम बनने में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मेरा बस काम कर लीजिए। तो कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म आ गया है, हमारी जो कॉग्निटिव सोचने की क्षमताएं हैं वो क्षीण होती जा रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई सब कुछ एआई से ले लो, अब हमें सोचने की क्या जरूरत है। तो जब इस संदर्भ में इतनी जबरदस्त रिलायंस, ब्लाइंड फोल्डेड रिलायंस हो गई है, ये जानते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ बोलता है, गप्पे मारता है, हेलुसिनेट करता है, आपको गुमराह करता है और आपकी प्रोफाइल बनाता है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने एआई को ना केवल एक लाइफ कोच के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसको अपना लाइफ कंपेनियन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है
0: कहीं बहुत ज्यादा हो गई है।
1: जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों में आपको नई जागरूकता लानी पड़ेगी, एक नया मानसिक माइंडसेट लाना पड़ेगा बॉस कि आप एआई को केवल एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करिए। अगर रामपुरी चाकू से आप खून भी कर सकते हैं और सब्जी भी काट सकते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि साहब सब्जी काट लीजिए, खून मत करिए। लेकिन आप देख लीजिए ना, साइबर क्रिमिनल्स हंसते हंसते ये बैंकों पर जा रहे हैं, अपने खाते भर रहे हैं और एआई का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरत हो गई है कि नए कानून की आवश्यकता है। मैं काफी देर से भारतीय सरकार को हिदायत दे रहा हूं कि आप भारतवर्ष में एक डेडिकेटेड समर्पित कानून लेकर आइए एआई और एआई अकाउंटेबिलिटी को लेकर। अच्छी बात यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब एक डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि हम बहुत देर में जग रहे हैं।
0: लेकिन इसके साथ साथ दुग्गल जी प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि कानून बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर आते आते वहां पर बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं। आप तो जानकार है इस चीज के, भारत में साइबर को लेकर कितने सारे कानून है लेकिन लूपहोल्स उसमें बहुत ज्यादा है।
1: लूपहोल्स तो है लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि चलिए चिड़िया चुग जाए खेत फिर हम जगेंगे, ये बात तो हो नहीं सकती। और आज की तारीख में भी भारतवर्ष में जितना भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, अधिकांश फ्रॉड जो है एआई फ्रॉड की ओर जा चुका है, यहाँ तक कि डिजिटल अरेस्ट भी अधिकांश तौर पर अब एआई के माध्यम से किया जा रहा है। डार्कनेट पर जाइए तो एक नया ट्रेंड है, साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई तो एक ऐसा रंग है जिसके रंग में लगभग लगभग हर रंग जो है रंगे जा रहे हैं, तो इसलिए उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। लेकिन जब तक नियंत्रित ना हो, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि साहब एटलीस्ट हमें थोड़ा समय दे दें। एक्चुअली हमको ना किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है। अलग अलग राष्ट्रों ने कानून तो बनाए हैं एआई को लेकर, लेकिन जो बुनियादी हाथी कमरे में है उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। और हाथी ये है कि क्या आप एआई को लीगैलिटी प्रदान करना चाहते हैं या नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बहुत जल्दी आपको एआई को कंडीशनल पर्सनहुड देना पड़ेगा। अगर हम भारतवर्ष में नदियों को, भगवान को, मंदिरों को, हिमालय को हम लीगल एंटिटी दे सकते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगल एंटिटी क्यों नहीं दर्जा प्रदान कर सकते। वो इसलिए भी जरूरी होगा ताकि एआई को हम ज्यादा जिम्मेवार बनाएंगे, ज्यादा अकाउंटेबल बनाएंगे और ज्यादा लायबल भी बनाएंगे। लेकिन आज की तारीख में तो कुछ कानून ही नहीं है। आज की तारीख में एआई आपके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है या नहीं लीगल किसी को नहीं पता। आपका एआई एजेंट लीगल है नहीं लीगल है ये भी किसी को नहीं पता। तो इसलिए जो लीगल अनसर्टेंटी वाला दौर चल रहा है उसमें मुझे लगता है भारत को अपनी नींद से जगना होगा, नया कानून लाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 राष्ट्र नए कानून ला चुके हैं और इम्प्लीमेंट कर चुके हैं।
0: एंड इन द मीनवाइल जो कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पर रोक भी लगाई जाए, और अगर इसके सालाना मार्केट की बात करें तो 30% की ग्रोथ के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। मैंग जी आपके पास आना चाहूंगी, अब जब ये 30% ग्रोथ के साथ लगातार AI बढ़ रहा है, तमाम देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे तरीके से भी हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इस पर बेकाबू ग्रोथ पर काबू पाया कैसे जाएगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा?
3: देखिए बेकाबू जो भी चीज हमने पास्ट में हमेशा से देखा है, जो चीज बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ ऊपर जाती है उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा अटैच होता है, और ये इस केस में AI के केस में रिस्क फैक्टर इज सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल AI, राइट? कि अगर आप कोई चीज बहुत तेज, ये उसी तरह ठीक, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को, ये बहुत तेज भागती हुई गाड़ी है, उस भागती हुई गाड़ी पे हमें ब्रेक का मैकेनिज्म अप्लाई करना है कि किसी तरीके से उसमें ब्रेक का अप्लाई करें, क्योंकि हम इस बात को नहीं नकार सकते कि आने वाला समय AI का ही होगा कुछ भी हो जाए, लेकिन अंतिम निर्णय इंसान का ही होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबल AI कैसे हो, कि कैसे हम उसका अकाउंटेबल बनाए, बिकॉज आप ये देखो आज AI आपके बिहार पे सारा काम कर रहा है। अगर हम AI का दौर छोड़ दें तो लेट सपोज हम पुराने जमाने में चले जाते हैं, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि वो ये हमारा काम कर रहा है हमारे बिहाफ पे, तो उसके साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटैच होती है कि वो इस तरीके से काम करेगा। सेम उसी तरीके से आज AI है हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अटैच नहीं है, वो कुछ भी अपने मन से कोई भी डिसीजन लेके कोई भी काम कर सकता है आपके बिहाफ पे, उसकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। तो काम हो जाने के बाद में अच्छा होना, खराब होने के बाद में अच्छा हो गया तो वेरी गुड, खराब हो गया तो आई एम नॉट अकाउंटेबल, मैं उसका जिम्मेदार नहीं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चीज है कि बिकॉज कैपेबिलिटीज इतनी तेजी से आगे भाग रही हैं और सेफ्टी पीछे छूटती चली जा रही है, तो कहीं इतना बड़ा गैप ना हो जाए कि हमारे हाथ से चीजें निकल जाए। इसी वजह से जिन्होंने बनाया है इसको वही इसको आज लेके खड़े हुए हैं कि हमने एक गाड़ी बनाई थी उसे ब्रेक्स लगाने की अब जरूरत महसूस हो रही है हमें।
0: तो क्या सीधे तौर पर फिर ये समझे मयंक जी कि आने वाले समय में AI ही इंसानों पर हावी हो जाएगा या हो रहा है, ये खतरा सबसे बड़ा है?
3: उसके लिए दुग्गल साहब इस कानून को बनाने की बात कर रहे हैं कि ये हमें ना देख, ये दिन हमें ना देखना पड़े कि AI हमारे ऊपर काबू हावी हो जाए। ऐसा हमने पहले भी काफी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन में देखा है, कोई चीजें आई हैं तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ है कि हो सकता है हमारे ऊपर हावी हो जाए ये चीजें, बट अब मुझे ये भरोसा है कि हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में AI को हम जाना स्टार्ट करेंगे।
0: बिल्कुल, चीजें हाथ से ना निकल जाए उससे पहले ही कंट्रोल करने, उससे पहले कंट्रोल करने की जरूरत,
3: बिकॉज इनोवेशन विदाउट रेगुलेशन भविष्य का सबसे बड़ा जोखिम है।
0: और इसी में रेगुलेशन, इसी में अगर हम AI का ही जिक्र कर ले, तो सबसे बड़ी बात जो जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मैं जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, सैन्य सुरक्षा जिसके लिए खतरा है। देखिए AI से जुड़े तमाम हथियार बन रहा है और उसका इस्तेमाल कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क के खिलाफ कर सकता है। आपका डेटा आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वो कितना सुरक्षित है, क्या वो खत्म हो रहा है, क्या वो लीक हो रहा है, वहां पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और जो AI से संचालित हथियार हैं जो तमाम देशों के पास हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है अमित जी। तो क्या सीधे तौर पर यह माना जाए कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा इंसानों के लिए AI?
2: मैम देखिए AI जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर हम नेगेटिव में जाते हैं तो ये जो आपने बताया सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, अगर हमने इसके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाके हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा खतरा हमारा बढ़ जाए, क्योंकि AI के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, AI एक कमांड बेस है, अपने आप को रेगुलर अपडेट कर रहा है, AI भी खुद अपने मॉडल्स को अपडेट कर रहा है। ठीक है, बहुत फास्ट इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, मिसयूज इसलिए माना जा रहा है इसको क्योंकि AI जो है हम उसके ऊपर अगर अभी से लगाम नहीं देंगे, जैसे कि अभी बताया कि अगर हमने ब्रेक नहीं लगाई तो वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ह्यूमन के कंट्रोल से खुद से ही बाहर हो जाएगा, उसको बनाने वाले ही उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको रोक ही नहीं पाएंगे। और जब जाके जैसे कि एक मूवी आई थी चिट्टी, उसमें उसने उसके अंदर इमोशंस डाल दिए, सब कुछ डाल दिए रोबोट के अंदर, और वो बाद में उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, तो सेम चीज वो मतलब रियल लाइफ में भी हो सकती है अगर हमने इसके ऊपर आज कंट्रोल नहीं करा, क्योंकि एआई इतना पावरफुल अपने अंदर अपने आप को बना लेगा, इतना स्ट्रांग कर लेगा अपने अंदर से कि हम उसको चाह के भी नहीं रोक पाएंगे फिर।
0: ठीक है शुभम, थोड़ा सा समझाइए, एंड ऑफ द डे एआई के अंदर जो डेटा डल रहा है वो भी तो इंसान ही डाल रहे हैं ना, अभी तक तो इंसानों के ही कंट्रोल में है। जिस खतरे की बात यहां पर कही जा रही है, जिसको लेकर तमाम बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जिन्होंने एआई को बनाया है वो ट्रंप सरकार को चिट्ठी लिख रही है, क्या ये माना जाए कि वो पूरी तरह से लाचार हो चुकी, या फिर आने वाले समय में इतना डेटा डाल दिया जाएगा कि उसके बाद एआई को इंसान की जरूरत नहीं होगी और वो खुद को ऑटोमेटिक कर लेगा?
4: देखिए डे बाय डे यूज में हम सब चैट जीपीटी और बहुत सारे कॉमन चैट जीपीटी का यूज करते हैं। एक मॉडल जनरेशन हो रहे हैं, हम एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन देके और उससे आउटपुट लेके। बट जो फ्रॉडस्टर्स हैं, कुछ डार्क मार्केट है, डार्क नेट है उस प्लेटफॉर्म पर, जैसे फ्रॉड जीपीटी, वॉर्म जीपीटी, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसका उपयोग सिर्फ क्राइम एक्टिविटीज के लिए होती है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म है इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इस पे एक मॉडरेशन होना चाहिए कि अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज के लिए एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो उस पे रोक लानी चाहिए और उस पे लॉ एक लाइक एक गवर्नेंस बॉडी होनी चाहिए जो इस चीज को मॉनिटर करे।
0: पवन जी, क्या आने वाले समय में, क्योंकि कमांड तो अभी इंसान ही दे रहा है ना एआई को, एआई के अंदर जितना भी डेटा डाल रहा है वो इंसान ही डाल रहा है, तो क्या आने वाले समय में एआई को इंसानों की भी जरूरत नहीं होगी?
1: आने वाले समय में एआई इंसानों को रिडंडेंट बना दे। आज एआई सिर्फ एक कलेक्शन मोड में जितनी जानकारी वो ले सके उतना ले ले, और ऑलरेडी उसने अपने जो रही असली रंग हैं दिखाने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे एआई अब रोग होने लग गए हैं, तो बहुत जल्दी अब इंसान जब गुलाम बन जाएगा और एआई जब स्वामी बन जाएगा तो बहुत ही विचित्र प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। वो ना हो इस संदर्भ में ही ये कॉल की गई है कि साहब एटलीस्ट रोक लगाइए, एटलीस्ट लॉ को आप अप टू डेट आने दीजिए, अप्रोप्रिएट जो आपके अकाउंटेबिलिटी मेजर्स हैं, लॉ को डेवलपमेंट वाले काम है उनको करने दीजिए। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तब तक रहेगी जब तक वो इंसानों के कंट्रोल में है। जिस दिन ये टेक्नोलॉजी इंसानों के कंट्रोल के बाहर चली गई तो इंसान तो ऑलरेडी ये गेम लूज कर ही जाएंगे, वो बैक सीट पर बैठ जाएंगे क्योंकि गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाएगा एआई, और ये एआई आपको ध्वंसकारी रूप भी दिखा सकता है, पूरे मानव मात्र का नाश करने की क्षमता भी रखता है। तो इसलिए उसकी जो डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज है उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साहब लॉ तो लेकर आइए, अब अभी तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, सबको लगता है बस मस्ती का आलम है, कोई कानून नहीं है ही नहीं है, जो करना चाहो कर लो भाई। अल्टीमेटली आज जब एआई आपको आपसे बातें कर रहा है, आप एआई से बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप अभी भी एआई को जनरेटिव एआई सोच रहे हैं, चैट जीपीटी के जमाने का सोच रहे हैं, आज एआई वो आ गया है जहां पर उसे होश आना शुरू हो गया है, कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है। तो उसका मतलब यह है उसे कॉन्टेक्स्ट पता है, उसे ये पता है कि किस परिस्थिति में क्या बात करनी है और किस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको सपोर्ट करना है या आपको टारगेट करना है। तो जब उसे एआई को कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो गई है, जब रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जब हम ऑलरेडी एजीआई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साहब कुछ हो या ना हो, अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी लाइफ को सही बैलेंस रखना है तो इस टेक्नोलॉजी को आज रेगुलेट करने का। आज ये वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चलो साइबर आया कोई बात नहीं, इंटरनेट आया बाद में निपट लेंगे, आज तो ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, आप नहीं निपटोगे टाइम से तो ये निपट लेगी आपको। तो जितनी जल्दी आप लीगल फ्रेमवर्क्स लेकर आएंगे उतना अच्छा है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एआई ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। आपको अगर इसे इफेक्टिवली टारगेट करना है तो ग्लोबल मैकेनिज्म्स होने पड़ेंगे ताकि एआई को रिस्पॉन्सिबल बना सके। आज दो चार कंपनियां ही पूरे मानव मात्र की फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकती, हर राष्ट्र की अपनी प्रभुता अखंडता सुरक्षा है जैसे भारत की, और भारत की सोवरेनिटी के अंदर शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोवरेनिटी। तो इसलिए हर राष्ट्र को नए कानून बनाने होंगे, कंपनियों को विवश करना होगा कि हमें नहीं सुनना कि साहब आपको नहीं पता कि आपका प्रोग्राम कैसे काम करता है, ब्लैक बॉक्स होगा आपके लिए होगा हमारे लिए नहीं है। अगर आपका एआई कुछ गड़बड़ मचाता है, इंसानों को नुकसान पहुंचाता है, उस जिम्मेवारी आपकी होगी और आपको भुगतान करना पड़ेगा परिस्थितियों का। ये बुनियादी तौर पर एक ट्रेंड इमर्ज कर रहा है।
0: दुगल जी, दो चीजें आप सही कह रहे हैं कि कानून इस पर बनना चाहिए, और जो चिट्ठी लिखी गई उसमें बकायदा इस बात का जिक्र है कि एआई के लिए ग्लोबली कानूनी सिस्टम की जरूरत है। जब हम इस ग्लोबली कानूनी सिस्टम की बात करते हैं ऐसे समय में जब एआई को लेकर ही कई मुल्कों में टग ऑफ वॉर चल रही है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन बैठेगी?
1: देखिए, कोऑर्डिनेशन तो आपको बिठानी पड़ेगी, वरना तो आपका वजूद मिट जाने वाला है। और ये बात कोई बहुत दशकों की बात नहीं, ये कुछ सालों की बात है। तो अब सवाल यह है कि या तो आप छोटे संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए छोटे छोटे इश्यूज पर टारगेट करें, या बिगर सवाल देख लेंगे साहब, एआई तो है, वो तो पूरे मानव मात्र को ही मिटाने की दिशा में जाने वाला है, तो हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं? देखिए, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के बगैर कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि आपने अपना राष्ट्र में कानून बना लिया है, हम एआई पर विजयी प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आज केवल दो राष्ट्र हैं पूरी दुनिया भर में जो शॉट्स कॉल कर रहे हैं, एक अमेरिका और एक चीन। और चीन ने हाल ही में जो किमी 3.0 लॉन्च कर दिया है, उसने जो फासला चीन और अमेरिका में था उसको बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। तो अब ये दो कंट्रीज हैं जो डिसाइड कर रही हैं। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉर्मेट को बनाने में, स्टैंडर्ड्स को इवॉल्व करने में चाइना लग चुका है। तो इस संदर्भ में जो ग्लोबल साउथ है उसका की भी जिम्मेवारी बनती है कि साहब आप अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। भारत में अगर हम थॉट लीडरशिप लेकर आए इस दिशा में तो अच्छी बात होगी। वैसे भी ग्लोबल साउथ लीगल आर्किटेक्चर और एआई लॉ एंड गवर्नेंस ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, एंडोर्स हो चुका है ग्लोबल साउथ लीगल डायलॉग में। मुझे लगता है इस तरह के बुनियादी सिद्धांतों को, बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हुए अगर राष्ट्र आगे बढ़ेंगे तो अपनी प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा को सशक्त रूप से आगे बढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी को लेकर जैसे यूएस में टेक एक्सपर्ट ने चिंता जताई है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, खासतौर पर अगर हम भारत की भी बात करें और ग्लोबली, इन सभी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: एआई से क्यों डरे, क्यों लिखी ट्रंप को चिट्ठी और क्या वक्त आ गया है कि एआई पर कानून बने, लगाम लगाई जाए और कितना जरूरी है आज के समय में इस पर लगाम लगाना और वो लगेगी कैसे, इसी को लेकर चर्चा कर रहे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मैं जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जब लगाम लगाने की बात होती है दुगल साहब बता रहे हैं कि ऐसे लॉज बनाने की भी जरूरत है और ग्लोबली इसको लेकर चर्चा जरूर होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए, कैसे इस पर लगाम लगेगी?
1: देखिए, लगाम लगाने के लिए सबसे पहले ये हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे दुगल साहब ने भी बताया कि जो फ्रेमवर्क उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो लॉज की वो प्रपोज कर रहे हैं, वो इन्फोर्स अगर हो जाते हैं तो हमने अपने एंड से शुरुआत कर दी कि आपको जी आप हमारे देश में एआई चलाना है, हमारे देश का डेटा यूज करना है, हमारे देश के नागरिकों के बिहाफ पे कोई काम करना है तो उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। देन जिस तरीके से हम अलग अलग समिट का नेतृत्व कर रहे हैं, एआई का भी हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें हम इस बात को नहीं पीछे छोड़ सकते, इस बात को नहीं नजरअंदाज कर सकते कि एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चाइना है। ये दोनों ही एआई की रेस में बहुत तेज आगे भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। हालांकि हम ज्यादातर यूजेज अमेरिका के टूल्स का करते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं जब डेटा देखता हूँ, कंपैरिजन रिजल्ट्स देखता हूँ, परफॉर्मेंस देखता हूँ उनके मॉडल्स की, उनकी कैपेबिलिटीज की, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में कम से कम इस सेक्टर में चाइना पीछे छोड़ देगा। तो कल को यही टूल हमारी कंट्री के खिलाफ किसी एक्ट ऑफ वॉर में ना यूज हो, इससे इसको ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं एक बीमारी का। फैटी लीवर एक बीमारी है जो कि जब तक बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, एंड स्टेज पे नहीं पहुंच जाती, तब तक परेशान नहीं करती आपको। आपके अंदर परेशानी है, दिक्कत है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, बस हम नजरअंदाज करते रहते हैं, जो कि अभी हम एआई के साथ कर रहे हैं। कल को जब ऐसी स्टेट आ जाती है जब आपको कुछ ना कुछ सर्जरी करानी पड़ जाती है मजबूरी में, तो वो स्टेज यहां भी ना आ जाए। एक्सपर्ट्स बार बार इस चीज पे इन्फोर्स कर रहे हैं कि आप लॉ लाइए। आप जिस तरह से, मैं भी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ काम करता हूं, जैसे एक मेट्रो यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रन करते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर का। तो ये सब करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जो लोग तैयार हो रहे हैं नो डाउट वो डे टू डे एक्टिविटी में अपना काम करवाने के लिए एआई का यूज करेंगे ही करेंगे, तो उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने साइबर अवेयरनेस चलाई कि आपका डेटा ना लॉस हो जाए, आपको एज अ स्पेस कोट ना यूज कर लिया जाए इंटरनेट पे, आपके बिहाफ पे कुछ और प्रोजेक्ट ना किया जाए, इसी तरीके से इम्प्रूव्ड और कंट्रोल्ड एआई का एक तरह से आप वो चलाने की जरूरत है, कि अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सख्त कानून लाने के, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं कि सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। जी आप ही जिम्मेदार हो, आपके टूल्स के द्वारा ये हुआ है तो आप ही जिम्मेदार हो। कंट्रोल कैसे करोगे, आपने ही बनाया है, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है।
0: बिल्कुल अमित जी आपके पास आना चाहूंगी। एक्सपर्ट्स की चिंता है एआई को लेकर और सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप?
2: वर्ल्ड में किसी ने भी एआई को बैन नहीं किया, सारी कंट्रीज एआई को चला रही हैं, लेकिन चाइना ने और कई कंट्रीज ने एआई के ऊपर कुछ कानून बनाए, कुछ लगाम दी, जैसे कि एआई जनरेटेड फोटोज वीडियोज या कोई भी कंटेंट होता है उनके ऊपर लेबलिंग करना जरूरी है ताकि जनता को पता चल सके ये वीडियो या फोटो एआई के द्वारा बनाई गई है। चाइना ने कुछ एआई कंपेनियन भी बनाए, जैसे मोशन बेस्ड चैटबॉट्स भी बनाए, ठीक है, उनके ऊपर भी मेंशन हुआ। तो कई एआई की सर्विसेज भी जो लॉन्च कर करेगी तो उनसे पहले उनकी टेस्टिंग हुई, रजिस्ट्रेशन हुई, रिव्यूज हुए, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कानून बनाए गए जो कि एआई का खतरा थोड़ा सा कम करते जा रही है, क्योंकि एआई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आज की डेट में कोई भी अगर क्राइम करके एक एआई से जनरेटेड वीडियो अगर पेश कर दे तो उसको पहचानने में, डिफर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब जो भी लोग हैं उनको एआई और नॉर्मल फोटो में कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पहचानने में, क्योंकि एआई इतना स्मार्ट हो गया है। कल क्या बात मानोगे, मैंने एक जगह पे एक गाड़ी को खरीद करके एआई को जैसे जैसे कमांड दी उसने बिल्कुल रियल बना दी, कि मैं रियल फोटो को साथ में कंपेयर करके पहचान भी नहीं पा रहा था कि कौन सी रियल है। तो एआई इतना फास्ट काम कर रहा है, इसके ऊपर हम लोग अपना लेबल तो दे रहे हैं लेकिन वो लेबल हट सकता है। कोई ऐसा लेबलिंग होनी चाहिए जिससे हमें पता चले ये एआई जनरेटेड वीडियो है या एआई जनरेटेड ये है। ताकि मतलब लोग उसको देखें तो पहचान जाए।
0: पर ऐसा पॉसिबल है क्या, इतनी पारदर्शिता लाई जा सकती है?
2: क्योंकि मैम एआई क्या है कि एआई तो अपने आप को देता जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम चल पाएगा। क्योंकि काफी सारी कंट्री है, जैसे कि इटली की बात करते हैं, उसने 2003 में 2023 में सॉरी चैट जीपीटी को टेम्परेरी बंद कर दिया था, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। 2023 में उसने टेम्परेरी बंद किया, फिर जब उसने रेगुलेशंस देखे और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई तो उसने उसको स्टार्टअप किया। तो इस टाइप से अगर कंट्रीज चाहती हैं तो अपने अपने हक के लिए एक कानून बना सकती हैं, जो कि एआई को हम लोग सेफ एंड सिक्योर यूज कर पाएंगे।
0: बिल्कुल। एक बार शुभम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने एआई को बनाया, जिन्होंने कहा कि फिलहाल इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, चाहे इसको लेकर कानून बनाया जाए या फिर सॉल्यूशन कोई और सरकार निकाले। लेकिन सर, जब बात सॉल्यूशन की आती है तो ये वही कंपनियां जिन्होंने एआई बनाया, ये वही कंपनियां जो आपस में कंपीट कर रही है एआई को लेकर कि कौन सा एआई अच्छा है कौन सा एआई खराब है, तो ऐसे में एक समान कानून कैसे बनेगा?
3: देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज हर तरीके से होता है, अच्छी चीजों में भी हो रहा है, बुरी चीजों में भी हो रहा है। तो एक जैसे कि गवर्नमेंट, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव कर रही है जहां पर एआई का सही उपयोग हो रहा है, बॉट के थ्रू, नेट ग्रिड सिस्टम के थ्रू, और ऐसे बहुत सारे टूल्स डेवलप किए गए हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन पर्पस और बहुत सारे चीजों में बेनिफिट हो रहा है। बट जहां हम बात करें, जो कंपनियां ऐसे टूल्स डेवलप करती हैं, वहां पर मॉडरेशन और डेटा मेंटेनिंग, जैसे कि जो लॉग्स क्रिएट होते हैं उसको मेंटेन रखना, और इन्वेस्टिगेशन पर्पस में जब कोई लॉ एनफोर्समेंट उनसे कुछ डेटा की प्रोवाइड, डेटा रिक्वायरमेंट हो, वो इंफॉर्मेशन मांगे, तो वो उन तक पहुंचे। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि जो एलईए एक्सेस है हमारा लॉ एनफोर्समेंट का, वो डेटा प्रोवाइड नहीं करते या उनके पास वो मॉडरेशन लेवल नहीं है, इसकी वजह से ये रोक है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके एआई मॉडल्स हैं, एआई टूल्स हैं, उनको एक रेगुलेशन उनके लिए होना चाहिए, उसके बाद ही इसे हम कहीं कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं इस पर।
0: दुबे जी, एआई की ग्रोथ को कंट्रोल करने की बात तो हो रही है, लेकिन ये कंपनियां खुद भी तो एक दूसरे से आगे निकलना चाह रही हैं। सर, ऑडियो म्यूट है आपका।
4: प्रॉब्लम तो यह है कि कोई कंपनी रुकने के लिए तैयार ही नहीं है, उसे मालूम है कि वो रुक जाएगी तो बाकी उसके जो कंपिटिटर्स हैं उससे आगे निकल जाएंगे और
0: वही
4: फिर
0: वही
4: शायद वो
0: सवाल।
4: रेस में चल
0: और यहाँ
4: जाएंगे।
0: पर सर, कंपनी के साथ साथ आप देश भी ले लीजिए। जब आप जिक्र कर रहे थे कि ग्लोबली इसको लेकर चर्चा करने की जरूरत है, और उस लेटर में भी ये बात लिखी गई है कि ग्लोबली कानून बने, तो कौन आगे आएगा, कौन इस बात को मानेगा?
4: देखिए, चिकन एंड एग सिचुएशन है, कहीं ना कहीं तो इस जो ट्रैप है उसको तोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, और मुझे लगता है जो तोड़ने के जो रास्ते हैं वो सरकारों के पास है। अगर सरकार कह सके कि साहब आप फिलहाल रोक लीजिए, अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है तभी ये लेटर केवल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास पहुंचा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका में डेवलपमेंट हो रही है एआई को लेकर, तो अगर वो इस पर कहीं ना कहीं विलंब लगाते हैं तो हो सकता है कि लीगल जो प्रोसेसेस हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाएं। लेकिन अभी तो कुछ नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं, कंपनियां तो रोज रोज नए पैसे कमाना चाह रही हैं। आज अगर आप देखिए, भारतवर्ष में भी वो आपको 399 रुपए में वर्ल्ड क्लास पैकेट दे रही हैं, पैकेज दे रही हैं एक पूरे महीने के लिए। 399 रुपए में दो पिज्जा भी नहीं आते हैं, तो वो पिछले महीने तक वो चाहती हैं कि आपका जो डेटा है वो एकत्रित कर सकें और फिर उसका इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को ज्यादा ट्रेन कर सकें। तो अल्टीमेटली आपको वापस जाना पड़ेगा एआई लॉ रेगुलेशन, और मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी जो है प्राइमरी चीज होगी। तभी ये भारतवर्ष अगर एक एआई अकाउंटेबिलिटी कानून लेकर आ जाए, जो कहे साहब इन सिद्धांतों के ऊपर हम डिटरमिन करेंगे कि साहब आपका एआई अकाउंटेबल कैसे होने वाला है, क्योंकि नुकसान तो होने लग गया है। मेरे पास केस आया है जहां पर एक 17 साल के बच्चे ने सेंट्रल इंडिया में खुदकुशी करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि वो लगातार एआई से एडवाइस मांग रहा था, एडवाइस कामयाब नहीं हो रही थी बुलिंग को लेने के लिए। फिर जब उसने फुल प्रूफ एडवाइस एआई से मांगी तो एआई ने कहा, भैया बेस्ट तरीका है खुदकुशी कर लो और अपनी दोनों नसें अच्छी तरीके से काट लो ताकि ऊपर चले जाओगे। उसने अपने नसें काटी लेकिन वो ऊपर नहीं गया, वो बच गया, लेकिन अब हाथ पूरी तरीके से पैरालिसिस हो चुके हैं। तो इन केसेस में जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अब ये कंपनियां तो नहीं कह सकती साहब मैंने आपको ब्लैक बॉक्स दिया था, आपको बोला था साहब अपना पर्सनल डेटा इसमें ना डालिए। आज अधिकांश भारतवासी एक नई क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं, मैं उसे बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति। क्यों? भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की एआई के ऊपर, एआई को अपना मित्र, अपना जीवन संगनी, अपना स्वप्न सुंदरी मांग रहे हैं, मान रहे हैं बिना सोचे समझे कि एआई तो एक डेटा राक्षस है, वो कॉन्स्टेंटली आपका डेटा एकत्रित कर रहा है। जिस दिन उसको आपका सारा डेटा मिल गया, उसने आपके डेटा का इस्तेमाल आपके बर्खिलाफ कर देने वाला है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दायित्व सरकारों का हो जाता है कि वो विशिष्ट प्रकार के कानूनी प्रावधान लाएं। हाँ, कानून लाने में समय ही लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। भारतीय सरकार के पास एक और विकल्प है, सेक्शन 87 आईटी एक्ट में, वो आज की तारीख में नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है ताकि वो डिटरमिन कर सके कि जब आप एआई के सिस्टम्स को लॉन्च करते हैं या एआई सर्विसेज प्रदान करते हैं तो किस प्रकार की सावधानी, ड्यू डिलिजेंस, अकाउंटेबिलिटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो शुरुआती तो दौर पर सबकी नजरें सरकार के ऊपर होंगी, लेकिन सरकार के साथ साथ अब मुझे लगता है लोगों में भी जागरूकता लानी पड़ेगी। भाई एआई को आज 100% आंखें बंद करते हुए आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो अपनी कब्र खुद ही खोदेंगे, क्योंकि एआई तो कह रहा है कि साहब ओह गलती हो गई, सॉरी अब मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। लेकिन अगर आपने उसकी गलत आंसर के ऊपर रिलाई करते हुए कुछ कदम उठा लिया, नुकसान आपको, आपकी छवि को, आपकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी को होने वाला है, और व्यक्तिगत तौर पर आपको फिजिकली नुकसान हो सकता है, आपके डेटा को नुकसान हो सकता है।
0: बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट मयंक जी, बिल्कुल आखिरी कमेंट मयंक जी, चलिए जब तक कानून नहीं बनता है तब तक कितना भरोसा एआई पर किया जाए?
1: जैसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, बिकॉज अवेयरनेस है नहीं। बिकॉज मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है, अगर हम देखें बड़ी से बड़ी शक्तिशाली मशीन्स में भी इमरजेंसी स्टॉप बटन है, राइट? जब कंप्यूटर्स आए थे यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि क्या होगा क्या होगा, उसमें भी एक इमरजेंसी पावर बटन है, आप बंद कर सकते हो। आई डोंट सी दैट हियर, एआई में नहीं है। तो एक इतनी विशालकाय रूप से इतनी तेज आगे बढ़ रहा है, तो इमरजेंसी कंट्रोल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो खुद से हमें अवेयर होना पड़ेगा कि एआई को कितना यूज करें। अगर मैं दुग्गल साहब की बात पे जाऊं, कितना डेटा एआई के पास है वो आपको बिल्कुल जानता है, आपका रेप्लिका बना सकता है। वर्चुअल रियलिटी जिस दिन एग्जिस्टेंस में आ गई कंप्लीटली, तो आपको कहीं भी होने की जरूरत नहीं है, आप बेड पे आराम से लेटे रहिए, सोते रहिए, आपका एक रेप्लिका वर्चुअल रियलिटी में कहीं भी होगा, आपके ही एक्सप्रेशन में बात करेगा, आपकी चीज की तरह सोचेगा, क्योंकि इतने साल से आप उसको अपना डेटा दे रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उससे बता रहे हो आप क्या सोचते हो, वो कुछ बताता है तो आप उससे कहते हो नहीं ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, तो आपके बारे में सब कुछ जान चुका है। तो आपकी आइडेंटिटी कहीं और रेप्लीकेट हो रही होगी और आपके बिहाफ पे वो कुछ भी कर रहा होगा, और तब वो अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट जो होगा, अनकंट्रोल्ड एआई होगा, हमारे कंट्रोल में शायद ना रहे।
0: शायद इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। गांव-गांव में भी चर्चा यही होने लगी कि एआई क्या है और कैसा दिखता है, इन तमाम बातों को लेकर वहां भी चर्चा हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चिट्ठी लिखी गई है ट्रंप सरकार को, और साथ ही साथ सोचने वाली बात तमाम देशों के लिए भी है कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका सही इस्तेमाल किस तरीके से हो और अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा वो खिलेगा, आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
7: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले।
8: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: देवों को देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन और इस पावन महीने

0: तरह तरह के कांवड़ महादेव को समर्पित रंग बिरंगी झांकियां। भोलेनाथ के भजनों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कांवड़िए। सब सावन को दिव्य ऊर्जा से पूरी तरीके से भर रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार की पूजा के लिए शिवभक्त जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी उत्साह से जुड़ी तीन तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला नजारा देखिए झांसी से है, जहां आस्था और शिव भक्ति का ऐसा सैलाब उमड़ा, पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के साथ गूंज रहा है। डीजे ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के बीच निकली भव्य कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। तो दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकल कर आई है, जहां पर भोले की भक्ति के साथ तेज भक्ति का संदेश भी नजर आता है। क्योंकि देखिए 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर सहारनपुर के गांव हंगावली की ओर बढ़ रहे शिव भक्तों की ये अनोखी कांवड़ तिरंगे के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। आखिरी तस्वीर भी देख लीजिए, बिहार से निकल कर आ रही है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर पहुंच रहे कांवड़ियों को थकान और पैरों के दर्द से राहत देने के लिए फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी तकनीक से सेवा लगातार दी जा रही है। देखिए सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 135,000 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है करीब 151,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत

0: ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा एआई तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान। लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत। हरित की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग। फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा। हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या। सावन झूला मेला में आस्था का मेला। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर है।
0: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सच्ची और अच्छी खबरों में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम सावन की, देखिए सावन के सोमवार, शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की। कल सावन का दूसरा सोमवार होने जा रहा है और मंगलवार को सावन की शिवरात्रि। इसलिए शिवालयों से लेकर शिव के धामों में शिव भक्तों का जबरदस्त रेला देखने को मिल रहा है। हर सड़क रास्तों पर कांवड़ियों की टोली बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सभी को सोमवार या शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है शुभ मुहूर्त जिसमें आप भोले भंडारी का जलाभिषेक करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।

0: सावन का महीना हो और ऊपर से सोमवार का दिन, तो श्रद्धा और आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। कल यानी 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है और 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, जिसके चलते कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा का उत्साह काफी बढ़ गया है। पहले बात सावन के दूसरे सोमवार की। सावन के दूसरे सोमवार की पूजा के लिए शिव भक्त जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। सावन माह का दूसरा सोमवार कल यानी 10 अगस्त को है। इस बार ये दिन और भी खास रहने वाला है, क्योंकि सावन सोमवार पर प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है। प्रदोष का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने में दो बार प्रदोष काल पड़ता है, लेकिन जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ संयोग में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। सोमवार उनका प्रिय दिन है, जबकि प्रदोष तिथि शिव आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ बताई जाती है। जब सावन का सोमवार और सोम प्रदोष व्रत एक साथ आते हैं, तो शिव जी की उपासना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार सावन के दूसरे सोमवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के चलते कई शुभ योग बनेंगे। कर्क राशि में सूर्य बुध की युति के चलते इस दिन बुधादित्य योग रहेगा। वहीं मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग बनेगा। इसके साथ ही सम सप्तक योग का निर्माण भी होगा। इन शुभ योगों के चलते शिव पूजन का बेहद शुभ परिणाम मिल सकता है। सावन के सोमवार को जलाभिषेक को लेकर शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। हरिद्वार से लेकर झारखंड के देवघर तक ही नहीं, पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हर रास्ते पर शिव भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है, क्योंकि हर शिव भक्त ये चाहता है कि सोमवार या शिवरात्रि को अपने आराध्य का जलाभिषेक कर सके। सावन पूरा महीना भोले भंडारी की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है और इसी महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है और ये चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और सुख शांति व मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ की आराधना करते हैं। सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त को है, इसलिए भक्तों से लेकर शिवालयों तक में विशेष तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी शिवरात्रि और सोमवार को देखते हुए विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि पर जो भी सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त 2026 को सुबह 4:43 पर शुरू होगी और जिसका समापन 12 अगस्त को रात 1:51 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर सावन शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहेगा। शास्त्रों में भद्रा काल का शुभ समय नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति, पूजा आराधना और मंत्रों के जाप पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती। सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6 बजे तक का मुहूर्त है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर 12:58 तक रहेगा। गोधुली मुहूर्त रात 9:13 से लेकर 9:32 तक रहेगा। निशिता काल का मुहूर्त रात 12:05 से लेकर 12:48 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शिव भक्त पूरे तन मन धन से शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। देखिए, आसमान से बरसते फूल, हाथों में कांवड़, माथे पर भस्म और जुबां पर हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक, इसके तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और उसका स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर सहारनपुर, हापुड़ या हर जगह अगर आप देखेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, जिससे कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो जाता है। कई जगह तो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेते हुए नजर आए, इससे पूरा माहौल शिवमय नजर आया। यही नहीं, आपको बता दें कांवड़ियों के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल और शौचालय समेत आवश्यक सुविधाओं से कांवड़ियों में खुशी और संतोष साफ नजर आ रहा है। कांवड़ के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप, अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा के दौरान नन्हे शिव भक्तों की भक्ति और हौसला हर किसी को हैरान कर रहा है। दो छोटे भाई बहन स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद के लिए निकले। खास बात इसमें यह रही कि दोनों बच्चे दूसरी बार स्केटिंग से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। देखिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर 16 शिव भक्त बुलडोजर कांवड़ लेकर चल रहे हैं। शिव भक्तों का ये कहना है कि देखिए ये उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है और वो एक मनोकामना के लिए बुलडोजर कांवड़ लेकर चलते हैं। तीसरी तस्वीर सहारनपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर सहारनपुर में नोटों से सजी हुई अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। 500, 200, 100, 50 और 10 रुपए के नोट से ये सुसज्जित है। एक कांवड़ पर करीब 270,000 रुपये और दूसरी पर 50,000 रुपये के नोट लगाए गए हैं, और नोटों से सजी इस कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस कांवड़ को पुलिस की बाकायदा सुरक्षा भी दी गई है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हरिद्वार की है। सावन का दूसरा सोमवार कल है और मंगलवार को शिवरात्रि होने जा रही है, इसलिए हरिद्वार में कांवड़ियों का रेला उमड़ा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को जल्दी है ताकि वो सोमवार या शिवरात्रि तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं, शिव जी का जलाभिषेक कर सकें। रामनगरी अयोध्या में भी इस सावन को लेकर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। राम की नगरी आजकल शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। गेरुआ वस्त्र पहने शिव भक्तों की भीड़ भारी है, और अब मिली कृष्ण बम से जो 74 साल की उम्र में कांवड़ देकर बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं। और कृष्णा बम जो है दोनों घुटनों में उनको परेशानी भी है, पैर में स्टील प्लेट लगे हुए हैं, लेकिन आस्था ऐसी है कि एक बार फिर से देवघर के लिए रवाना हो चुकी हैं। 1982 से वो हर साल सावन में कांवड़ लेकर देवघर जरूर जाती हैं। अब आस्था की अनोखी तस्वीर देखिए। अब एक शिव भक्त जो है घुटनों के बल चलते हुए देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करना चाहते हैं। 108 किलो के बाबा भूतनाथ की मूर्ति कंधे पर लेकर चल रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति कांवड़िये बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने गंतव्य की तरफ लगातार रवाना है। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग भी तमाम देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा में बढ़ती भीड़ की वजह से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सख्त कर दी। हर तरफ पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। यही नहीं, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड, आम पुलिसमैन की भी जबरदस्त तैनाती है। कुछ और शिव भक्तों की बात करेंगे। झांसी के मऊरानीपुर नगर में आस्था और शिव भक्ति अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक केदारेश्वर धाम में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के संकल्प के साथ 500 से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ लेकर ओरछा धाम के लिए निकल पड़े। डीजे ढोल नगाड़ों और गाजेबाजे के बीच निकली भव्य कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह जबरदस्त है। 121 फीट की तिरंगा कांवड़ शहीदों को समर्पित, नशे से दूर रहने और देशभक्ति का जज्बा जो है जगाने का संदेश लेकर निकले हैं ये शिवभक्त। सहारनपुर से गुजरती भोले की भक्ति के साथ जो है देशभक्ति का संदेश देती है 121 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मुजफ्फरनगर में बाबा गरीबनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों की सेवा करने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और समाज थेरेपी दी जा रही है लगातार, ताकि वो जो है अपनी यात्रा सुकून से पूरी कर सकें। दिल्ली की 3 तस्वीरें सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि क्या 53 साल की महिला 21 लीटर जल लेकर सिर्फ 5 दिन में हरिद्वार से दिल्ली पहुंच गई। दूसरी तस्वीर में सुनील नाम के शिव भक्त पैरों से दिव्यांग है लेकिन हौसला बुलंद है, दल में भक्ति लेकर हरिद्वार से दिल्ली आ पहुंचे। तीसरी तस्वीर 1 साल की बच्ची की है जो अपने माता पिता के साथ पहली कांवड़ यात्रा पर निकली है। वो भी गौमुख से दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीर भी देख लीजिए। महिलाओं की टोली फतेहपुर शेखावटी से महिलाओं का दल पवित्र जल लेकर शिवजी का जलाभिषेक करने के लिए निकला है। आज तक ये निराली तस्वीर सबका ध्यान आकर्षित लगातार कर रही है। अयोध्या में सावन झूला मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। बिहार के भागलपुर से कांवड़ियों का एक ऐसा दल देवघर के बाबा धाम के लिए निकला, जो खुद से भोजन भी पकाते हैं और जयकारी भी लगाते हैं। स्टोली में महिला पुरुष के साथ जैनजी भी नजर आ रहे हैं। बाबा से इनकी मनोकामना जाहिर तौर पर यही है कि ये प्रतियोगी परीक्षाएं सही तरीके से संपन्न हो जाए। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में तो खास जवानों को लगाया गया है बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर तैनात है। सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है।

0: सावन के दूसरे सोमवार और सावन की शिवरात्रि सोमवार और मंगलवार को है, यानी लगातार दो दिन तक शिव भक्ति का उल्लास देखने को मिलने वाला है। ऐसे में हरिद्वार से दिल्ली आने वाली सड़क पर कांवड़ियों की भीड़ काफी बढ़ गई है, क्योंकि हर शिव भक्त ये चाहता है कि सोमवार और शिवरात्रि को भगवान शिव का जलाभिषेक करे। इसीलिए रास्तों पर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा को लेकर पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। कांवड़ मार्ग पर संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगहों की पहचान कर खास व्यवस्था की गई है। इन जगहों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान भीड़ के बीच लगातार निगरानी रख रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
1: पवित्र कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और उसी तरह से इस पवित्र कावड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए या किसी तरह की घटना दुर्घटना करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के द्वारा कुछ न कुछ प्लान बनाया जाता रहता है, और जिसकी इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस हम लोग को लगातार मिलती रहती है। तो इन्हीं इंटेलिजेंस पे काम करते हुए हम लोगों ने ना सिर्फ वहाँ पे BDDS की यूनिट्स, डॉग स्क्वाड्स की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए लगाई है, ATS की यूनिट एक खड़ी करी, और हमारी खुद की जनपद पुलिस वहाँ पे हमने कई जगहों पे मोर्चे बना के और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमने आर्म्ड आदमी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसका सिर्फ एक काम है कि इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी अगर कहीं भी गतिविधि हमारे जो क्रिटिकल प्लेसेस है, जैसे शिव चौक, रामपुर तिराहा, बागोवाली, इन जगहों के आसपास कोई भी इस तरह की जरूरत अगर करता है तो उसका जवाब जो है उसको पूरी तरह से बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि उसे उसका क्या जवाब देना है।
0: हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर करोड़ों शिव भक्त कांवड़िये मुजफ्फरनगर से होकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से मुजफ्फरनगर बेहद महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। दूसरा सोमवार और शिवरात्रि को लेकर इस इलाके में कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। हापुड़ में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि कांवड़ियों को अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हापुड़ की DM कविता मीना और SP कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर जिले के शिव मंदिरों और ब्रिज घाटों पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की, जिसको देखकर श्रद्धालु में भी काफी उत्साह दिखाई दिया।
2: श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई, तो उसमें प्रथम स्थल हमने चंदौली मंदिर लिया, बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने स्टार्ट लिया, हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िये जल खा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, ऊपर से कुछ वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा, पूरा भक्तिमय माहौल था, और जो श्रद्धालु नीचे थे उनमें एक साथ की लहर दौड़।
3: हम लोगों ने दो जगह चंदौली मंदिर, जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर और ब्रजघाट में आज हम लोगों ने उस वर्षा की श्रद्धालुओं के ऊपर और बड़ा उत्साहजनक माहौल है। तो शिव भक्त उन्होंने खुले दिल से उस वर्षा का स्वागत किया है।
0: इसके अलावा हापुड़ की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सावन महीने को देखते हुए बांदा चित्रकूट मार्ग पर पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया है। पेट्रोलिंग कर पुलिस टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही प्रसिद्ध बाम्बेश्वर पर्वत पर विराजमान वामदेव शिव मंदिर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब नाथ धाम में सावन के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रावणी मेला को डिजिटल बनाया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से श्रावणी मेला ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु घर बैठे बाबा गरीब नाथ मंदिर के गर्भगृह का लाइव दर्शन कर सकेंगे, साथ ही मंदिर और मेला क्षेत्र में भीड़ की स्थिति की लाइव जानकारी भी ले सकेंगे। इस ऐप के जरिए ठहराव स्थल, कांवड़िया शिविर, भंडारा, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा शिविर की जानकारी भी हासिल हो सकेगी। फकुली से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक का रूट मैप भी ऐप पर उपलब्ध रहेगा। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता, मुजफ्फरपुर से मणिदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सावन का पावन महीना चल रहा है, हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्सव मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है। और केवल इंसान ही नहीं बल्कि आपको बता दें भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, चाहे शिव पार्वती हों, श्री कृष्ण और राधा हों या फिर प्रभु श्री राम। इन सबकी गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र जरूर मिलता है और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी एक बार फिर से रामलला के झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि झूलोत्सव की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। नया श्री राम मंदिर बनने के बाद इसे और भी शानदार तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लिहाजा इस बार भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
1: निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तरी द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुंचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झूलोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झूलोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झूलोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झूलोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे।
2: रामलला प्रातःकालीन श्रृंगार आरती के पश्चात जो सुबह में होती है, झूलन पर ही चारों भाई सहित विराजमान होंगे और वो भोग लगने तक, मध्यान्ह काल तक वहीं रहेंगे। भोग लगने के लिए पर्दा आएगा, वो झूलन पर भी पर्दा आ जाता है और फिर अंदर ठाकुर जी चले जाएंगे। भोग लगने के उपरांत फिर जब दर्शन की अवधि होती है मध्यान्ह में, उसमें फिर झूलन पर ही रहेंगे। तो उससे आने वाले जो श्रद्धालुजन हैं जो सायंकालीन सत्र में नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी के झूलन उत्सव का दर्शन प्राप्त होगा।
0: बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झूलोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झूलोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झूलोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झूलोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनीस टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ बाकायदा एक रील भी डाली। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अन्य प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें प्रधानमंत्री ने ये कहा, देखिए कि जो खेलेगा वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल अपने नाम किए। भारत मेडल सूची में चौथे पायदान पर रहा।
4: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले?
5: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए, मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया। दर्द में भी गाया क्योंकि संगीत की खुशी सबसे अलग है।

0: खास कार्यक्रम में नहीं, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार के बारे में, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा उपासना कैसे की जाएगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल 8 बजे तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:26 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और चंद्रमा तथा मंगल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, पूरे सावन के महीने में सोमवार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और आज हम बात कर रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में। तो दूसरा सोमवार जो इस बार आ रहा है, इसका महत्व क्या है? देखिए, सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष की तिथि के साथ आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ इस बार सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा करने से मनचाहा विवाह होता है। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का अलग महत्व है और त्रयोदशी यानी प्रदोष और सोमवार का अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है जो जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सोमवार के दिन उपवास रख कर शिव जी और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में। तो इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ है और इस बार सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब सावन के दूसरे सोमवार पर सामान्य रूप से कैसे पूजा की जाएगी वो भी जानते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रातः काल 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र, या महिला हैं तो पीला वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और इसके बाद जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। सावन के सोमवार पर रात के समय शिव जी के सामने अगर घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। और अगर आप सावन के सोमवार पर जल और फल ग्रहण करें, नमक और अनाज का सेवन ना करें, यानी सावन के सोमवार पर उपवास रखें, तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर अलग अलग फूलों से और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा कैसे करें इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से भगवान शिव की पूजा करेंगे। देखिए, अगर आप सोमवार पर सावन में शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा पूर्ति होगी और आयु की वृद्धि होगी। जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अगर आप शिवलिंग पर बेले का फूल अर्पित करें, बेले का पुष्प अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी आपको मिलेगी। अगर हर सिंगार के फूल आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप शमी पत्र अर्पित करें, शमी के पेड़ के पत्ते अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। याद रखिए, शिव जी को केतकी और केवड़ा अर्पित नहीं किया जाता, ये आप भगवान शिव को अर्पित ना करें। भगवान शिव की पूजा में आप उनको कोई भी फूल अर्पित करें अपनी मनोकामना के अनुसार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल अवश्य अर्पित करिएगा, क्योंकि शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। अगर आप जल अर्पित करें शिवलिंग पर और शिव जी से प्रार्थना करें तो मात्र जल अर्पित करने से ही आपकी कामना पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, फ्रिज, टीवी, ओवन, ये सब बार बार खराब हो रही हों, तो उनके पीछे छोटे छोटे लाल रंग के स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं खराब होनी बंद हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कह

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान। सीमा पर जवानों को बहने राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया है, जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ये वाटरप्रूफ है। तो आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
2: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहां इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोच फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है, जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन के दूसरे सोमवार पर कौन सा

0: संयोग बन रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान, और सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
5: बेल पत्र के साथ महादेव महाकाल का आशीर्वाद पहले ही मनोज जी प्राप्त कर चुके हैं, दर्शन आप करके आए हैं अभी वहां।
6: जी जी, मैंने पहले प्रेम से बोलिए जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने जल भी, हमारे जल भी चढ़ गए महाकाल पे, और चलते समय मुझे एक महाराज जी आए, वो भस्म लेके आए, उन्होंने मेरे माथे पे भस्म लगाया, हमारी पत्नी हमारे साथ है उनके माथे पे भी भस्म लगा, और वहीं से मुझे हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, इन्होंने मुझे ये बेलपत्र दिलवाया जो हाथ से छूटी नहीं रहा है, तो इसको लेके जाएंगे दिल्ली।
5: अद्भुत अलौकिक है महाकाल यहाँ।
6: मैं तो एक बार आया था पहले यहाँ पे श्वेता जी, और दूसरी बार आया हूँ, और दूसरी बार की जो शोभा है वो तो अपरंपार है, और सौभाग्य है कि यहाँ संत चरण भी बैठे हैं, हमारे जगत गुरु जी बैठे हैं, शैलेश जी महाराज जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे गुरु जी बैठे हैं, सभी लोग उनके साथ साथ, जो हमने ये शोभा देखी अभी तक तो फोटो में देखते थे, पिक्चर में देखते थे, नरेंद्र मोदी जी ने इधर कहीं शुभारंभ किया था वो भी देखे थे, आज उसको महाकाल कॉरिडोर का, और यही हमारी भारत की संस्कृति है, हम महाकाल में हैं ये सोच के आनंद आ रहा है। देख रहे मेरा पूरा पैजामा वजामा सब लाल लाल हो गया, देश में रह के देश के प्रति भक्ति, अपने महादेव के प्रति भक्ति, सनातन के प्रति भक्ति, तो उसको मैं बहुत बड़ा मानता हूं, और इसी को महादेव की कृपा भी मानता हूं। मैं आजकल इस पे बहुत काम कर रहा हूं, अभी मैंने दो गीत हमने दिए हैं जो इसी थॉट पे है।
5: अच्छा।
6: एक हमारा थॉट है कि

0: होगा। तो मैं तो ये सारे देश के घर घर में,
1: यहां अपने अंदर के हनुमान से आपका अभिप्राय क्या है?
0: हमारे अंदर के हनुमान की अपनी शक्ति समझो, हम अपने हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में।
1: मतलब जैसे जामवंत ने जगाया हनुमान जी को, अपनी शक्ति का एहसास दिलाया, वो हनुमान
0: की बात कर रहा हूं। सबके अंदर अपना अपने अंदर का हनुमान मतलब आपकी सब शक्ति, आपके अंदर की क्षमता, अगर वो ऐसी रह जाए ना जगे समय पर, समय पे जागना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने अभी 3 हफ्ता पहले मैंने इसको रिलीज भी किया है, हनुमान जगाना होगा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि परम सत्य है इस सृष्टि का, जिसका नाम सनातन है, श्री राम की मर्यादा है, कृष्ण ज्ञान का आंगन है, राधा भक्ति सीता शक्ति, चिंतन बहुत पुरातन है, परशुराम के न्याय का फरसा फिर से उठाना होगा अपने अपने अंदर का। मैं तो जितने लोग हमको सुनते हैं या अभी चैनल पे सुन रहे हैं, और शक्ति तो वही है जो सकारात्मक हो, नकारात्मक अगर शक्ति लग रही हो तो फिर तो राक्षसों ने भी अपनी शक्ति लगाई है।
1: ये किसी पर आपका प्रहार है ये?
0: ना, किसी पे नहीं, सार्वभौम बात है ये, बहुत सबके लिए है। देखिए जब भी आपकी शक्ति का, अब परमाणु का तो 2 प्रयोग हो सकता है ना, एक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हो सकता है, बिजली बनाने के लिए हो सकता है, और कुछ लोग परमाणु का उपयोग गलत भी करके दिखा चुके हैं। तो सारी शक्तियों का शक्ति के साथ भक्ति होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए महाकाल, हम तो भस्म वाले स्थान पे बैठे हैं, ये भस्म वाले मंदिर का प्रांगण है। तो मुझे लगता है कि शक्ति के साथ सकारात्मक जुड़ना बहुत जरूरी है।
1: आप भगवान परशुराम का नाम ले रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो आपकी पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं।
0: अरे आप नाराज चल रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी।
1: 2024 और 26 में बहुत फर्क,
0: 29 में भी बनेंगे, 2029 में भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होना। ऐसा झुकने वाला प्रधानमंत्री कहां किसने देखा? छात्रों की बात आती है 4 कदम आगे बढ़ के झुक रहे हैं, किसानों की बात आती है 4 कदम आगे बढ़ के झुक रहे हैं।
1: ये झुकना अच्छी बात है बुरी बात है?
0: ये अच्छी बात है, ये झुकना, इसको झुकना नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं उनके साथ संवाद करना, उनके हित के लिए काम करना। और वो काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं के हक के लिए वो झुक रहे हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पास होगा, बहुत जल्दी पास होगा भाई,
1: इसी सेशन में या स्पेशल सेशन में?
0: नहीं, उसके लिए हो सकता है कि अलग से भी सेशन बुलाना पड़े, लेकिन हे मेरी भारत की महिलाओं, मेरी बहनों बेटियों, आपको भी अगर सांसद 100 हैं तो 33 महिला होने का अधिकार होना चाहिए। अगर हमारे 100 सांसद हैं तो उसमें 33 महिलाओं को होना चाहिए कि नहीं? भाई बहन आप लोग बताओ, कौन कहेगा नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए भी, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, झुकने में हमारे नरेंद्र मोदी जी की जरा भी उसमें कोई संकोच नहीं।
1: हमने महाकुंभ में भी देखा बहुत बड़ी संख्या में युवा निकलकर आए थे वहां पर, यानी कि देश का युवा सनातन से दूर नहीं है, इनफैक्ट उसका उल्टा ही ऐसा लगा था, शायद नई पीढ़ी में ज्यादा उत्साह है,
0: ज्यादा पहले से भी ज्यादा। हमारी आज की पीढ़ी सनातनी है, पहले से ज्यादा। आप महाकाल में अभी दर्शन करने लोग जा रहे हैं, यहां जो बैठे हैं सबको देख लीजिए, वो सब जैन जी की परिभाषा में जो आते हैं वही दिखाई देंगे आपको। आज युवा जिस तरह से, आप जब हम आजकल जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं हर तीसरा इंस्टाग्राम मेरे माता के भजनों का होता है।
1: पर ये भक्ति संगीत की भाषा कुछ बदली पुरानी पीढ़ी के लिए और आज की पीढ़ी के लिए?
0: हाँ, वो समय का चक्र है। जैसे थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है, थोड़ा आधुनिक जो वाद्य यंत्र है, साउंड बदला है। अब जैसे अभी हमने एक शिव जी का भजन गाया है, वो आया है, तो उसका आप देखिएगा कि हमारा जो साउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा उसका कंपोजिशन भी डिफरेंट है, क्योंकि नए लड़के ने, जेनजी ने बनाया है। अरे दुनिया पूछे सौ सवाल, जोगी तेरा क्या है हाल, मुस्कुरा के बस कह दूं मैं,

0: बम बम बम बम। अब ये एक जेंजी, एक लड़का, एक जो जेंजी की परिभाषा है उस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, एकदम अलग साउंड कर रहा है।
1: मनोज जी, आज सावन का समय है, हम यहाँ महाकाल की नगरी में हैं, इसीलिए अब मैं सांसद मनोज तिवारी नहीं बल्कि उस गायक मनोज तिवारी की
0: मैं महाकाल भक्त मनोज तिवारी बोल रहा हूं।
1: उनकी ओर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ, क्योंकि आप आज से नहीं, कितने साल पहले आपने पहला अपना शिव भजन गाया था?
0: हमने सबसे पहले शिव जी का भजन गाया था 1997 में। आप पैदा हो गए थे? पता नहीं।
1: उसके बाद पैदा होंगी तो जेन जी बन के आपसे सवाल करूंगी।
0: 1997 में हमने गाया था और तब हमने गाया था ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमने शुरुआत किया था वैद्यनाथ धाम से और वो गाया था कि काशी से कैलाश बीच है,

0: दरबार, हे भैया भोला के दरबार। इसका तो वीडियो भी नहीं बन पाया। आज मैं सुरभि से बोल रहा था कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं हम लोग इसको लेके, और हमने 1997 से लेके आज तक कभी भी मेरा सावन और नवरात्रि खाली नहीं जाता है जब मैं माँ का या बाबा का गीत न गाऊं।
1: हर बार आप एक नया गीत कम से कम लेकर आते
0: हैं। हर साल गाता हूँ। और एक गाना तो मेरा बहुत आध्यात्मिक रूप से अभी चल रहा है, अरे डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, महाकाल वाला जोग में, हो डमरुआ।

0: यात्रा चल रही है हमारी। एक बार प्रेम से बोलिए जय महाकाल, दोनों हाथ उठा के बोलिए हर हर। ये सब हमारी यात्रा के पड़ाव। और देखो श्वेता जी एक बात बताएं, जो महाकाल को हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये जो बाबा बैठे हैं ना, महाकाल को भय से मुक्त करने वाला बोलते हैं, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूं महाराज जी लोग बैठे, मोह से और भय से। अगर आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं तो न तो आपका मोह सताएगा आपको और न तो बापू भी आ गए हमारे बड़े बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं और हमारे बड़े प्रिय, इनका भी स्नेह बहुत मिलता है हमें। महाकाल को जो याद करेगा, जो ध्यान करेगा, जो पूजा करेगा, उसको न मोह सताएगा न भय सताएगा। लेकिन पाएगा क्या? ये तो हो गया, जाएगा क्या? जाएगा भय, जाएगा क्या? जाएगा मोह, जाएगा। आएगा क्या? अगर महाकाल की कृपा हुई, महाकाल में भक्ति हुई, तो फिर आप समय पर विजय पाना सीख जाएंगे। समय जो भी चल रहा हो, आजकल कई लोग इस समय का गलत परिभाषा देने में लगे हुए हैं, मुझे उससे थोड़ी आपत्ति है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग जेनजी को बदनाम करने में लगे हैं। ये जेनजी महाकाल की भक्त है, और जो भी दूसरे वाले लोग उसकी गलत परिभाषा करेंगे, समय आने पे उनको जेनजी जवाब देगी।
1: 97 से आप शिव भजन गा रहे हैं। हाँ। और गा तो शायद उससे पहले से रहे, उसके बाद से उसे सार्वजनिक रूप से जनता के बीच रिलीज कर रहे हैं। आपका सबसे जो पसंदीदा शिव भजन है, हाँ, जो या तो आपने गाया है या किसी और का है?
0: नहीं,
1: सावन आते आपके होठों पे आता है।
0: देखो, हमने वैसे तो मेरा सबसे जो प्रिय भजन था वो मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया कि डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में। लेकिन अब आप किसी पिता से पूछो कि तुम्हारे कौन कौन बच्चे से तुमको ज्यादा प्रेम है, तो ये तो बहुत ही हमने अभी तक 5201 गाना 5201 बना चुका हूं, और उसमें हमें जो इस समय चलते चलते गुनगुनाने का मन करता है। अभी अनिल भाई के साथ हम कह रहे थे कि क्या यहां भी हर हर महादेव कहते हैं, बोले हाँ भैया, हर हर महादेव भी कहते हैं, जय महाकाल भी कहते हैं। और मेरा एक गाना है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के गाएं एक बार, सब सब बोलेंगे कि हर

0: हरा हरा महा जय महाकाल। हो महाकाल की इस नगरी से देना देना संदेश सदैव। हर हर हर महादेव हर हर। मेरी बहनें भी गा रही है हर हर हर महादेव हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से।
1: सुरभि जी के साथ मिलके भी गाए हैं क्या आप शिव भजन?
0: सुरभि जी के साथ अभी गाए नहीं है, उनके साथ कभी मिलके गाएंगे।
1: महाकाल की धरती पर ही सोच लीजिए, महाकाल की नगरी पर, धरती तो पूरी की पूरी है।
0: हाँ अभी सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा गा रही है आजकल हमसे ना, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ।
1: नहीं सच में ये कोई व्यंग नहीं, कोई मजाक नहीं है, सचमुच में बहुत अच्छा गाती है। और इसीलिए जिस तरीके से वो मुस्कुरा रही थी इस बात पे कि आप शब्द बदल दे रहे हैं अपने से, मुझे लगा कि इतने बार कार्यक्रम में देख चुकी हूं कि कैसे हर गीत आप ऑन द स्पॉट बदल देते हैं।
0: नहीं जब हम महादेव के बारे में गाते हैं तो महादेव जिनकी अर्चना करते हैं वो उनके बारे में गाने लगते, राम जी के बारे में गाने लगते हैं। हाँ अभी उन्होंने कुछ गाया कि राम देखे सिया को सिया राम को, चार अंखियां लड़ी तो लड़ी रह गई।
1: तो थोड़ा साथ में आप भूखे पेट हैं पता है दर्शन के लिए, थोड़ा सा साथ में।
2: जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। राम को देख कर

0: जय श्री राम।
1: बहुत अच्छा गाती है और महाकाल के दरबार में उनका स्वर आपने ले लिया। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी वो महाकाल में जा रहे हैं, ये इसको ना नहीं करी और यहाँ पे उपस्थित है।
2: नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, ऐसे भी तो भोले बाबा के लिए कहते यही है कि वो अगर कोई नियम कुछ रीति कुछ नहीं भी मालूम है, बस सच्चे दिल से प्रार्थना कर ले तो भगवान खुश।
1: नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भोले बाबा तो अक्सर हम लोग एक गीत गाते हैं,

0: कई बातों के कई अर्थ है और हम लोग इस महाकाल के दरबार से आज तक के मार्फत आज पूरे देश दुनिया से बात कर रहे हैं। सबको महाकाल की कृपा, सबके ऊपर महाकाल कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना।
1: कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके हो चुके हैं अब तक?
0: मैं वैद्यनाथ जी तो पैदल जाता हूँ, 110 किलोमीटर पैदल
1: कांवड़
0: लेके।
1: हाँ, अच्छा,
0: कई साल गए हैं, पिछले साल भी गए थे।
1: हाँ, बाकी जगह का डाक कांवड़ अलग है, वहाँ का डाक बम जो 105 किलोमीटर आप 24 घंटे के अंदर आपको करना है एक अकेले व्यक्ति।
0: बहुत अद्भुत है वैद्यनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की महिमा तो अद्भुत अपरंपार है, मगर वैद्यनाथ धाम की भी कृपा बाबा ने, महादेव ने बहुत बताई है। तो वहां डाक बम जो जाते हैं वो एक बार उठाते हैं तो रुकते नहीं है, और हम भी 52-53 घंटे में पहुंच जाते हैं, हालांकि हम आराम करते हुए जाते हैं, लेकिन 4-5 महीने तक पैर एकदम फट जाता है हमारा। क्योंकि मैं बचपन में, जब मैं 12 साल का था तब मैं पहली बार गया था, और 7 साल गए, बाकी महादेव ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। लेकिन बाबा धाम हम कई बार गए, महाकाल हम पहले भी आए हैं, आज फिर आ गए, दर्शन किया, और इनके अलावे
1: काशी विश्वनाथ
0: जी में तो पैदा ही हुए, काशी विश्वनाथ में तो मेरा जन्म ही हुआ है, और इसके अलावे कहाँ गए हैं?
1: रामेश्वरम गए हैं, रामेश्वरम, त्रयंबकेश्वर।
0: नहीं, अभी रामेश्वरम नहीं जा पाए हैं।
1: तो आजकल जितना
0: अभी मैं महाकाल, काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ,
1: जिसको धार्मिक अर्थव्यवस्था कह रहे हैं,
0: वहाँ गए, पशुपतिनाथ जी गए हैं, वहाँ भी गए, और बाकी तो देखिए, कहते हैं कि ओ हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये भी एक भाव होता है।

0: काल संगे, हम ये भी जोड़ रहे हैं, बाबा हमारे सर पे आ रहे हैं। और बाबा महाकाल के दरबार में बैठ के हम बाबा विश्वनाथ को और वैद्यनाथ जी को भी याद कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सुख है श्वेता जी, इसलिए मैं चाहता हूँ बाबा सबको कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन ज्यादा कृपा उन्हीं पे करें जो उनका भक्त हो, जो महाकाल का भक्त।
1: बहुत
0: महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर कौन सा संयोग बन रहा है? सावन के दूसरे सोमवार पर शिव जी की पूजा का क्या होगा विधान? और सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों से मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देशभर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हरि की पैड़ी पर उमड़ा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा अर्चना, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण, सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सदगुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊ एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह्य तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते, बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्त वत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात, लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्तऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं।

0: तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: हम आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
7: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: खबरों को परख कर परोसना,

0: हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते 39 मेडल। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, मुरादाबाद में जटायु ड्रोन से शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा, भंडारे की भी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की रौनक, भिलाई में दिखे सांस्कृतिक विरासत के रंग, जल जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को स्कूलों में छुट्टी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए वो मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रहित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई, उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र-1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइट वेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपे भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है, और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: जाए। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, मुरादाबाद में जटायु ड्रोन से शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा, भंडारे की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की रौनक, भिलाई में दिखे सांस्कृतिक विरासत के रंग, जल जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश। शिवभक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूलो मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को स्कूलों में छुट्टी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: डाक कावड़ का अंतिम चरण शुरू, धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। हरिद्वार में डाक कावड़ का रेला, बाइक सवार कांवड़ियों की उमड़ रही है भारी भीड़। आज से लेकर शहर तक कांवड़ियों का हुजूम, हर हर महादेव के जयघोष। हर की पैड़ी की ओर बढ़ रहे हैं शिवभक्त, डाक कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना लगातार जारी। गंगा जल लेकर गंतव्य की ओर रवाना, 11 अगस्त को शिवरात्रि पर होगा जलाभिषेक। केसरिया रंग में रंगा नजर आया पूरा हरिद्वार, कांवड़ियों से पटा धर्मनगरी का हर रास्ता। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कर रहे हैं शिवभक्त, हर तरफ दिख रहा अद्भुत दृश्य। आसमान से दिख रहा है कांवड़ियों का मनोरम दृश्य, कांवड़ मेले में सुरक्षा हाईटेक ड्रोन से निगरानी। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ कांवड़िया पथ पर खास सेवा, आधुनिक मशीनों से हो रही है मसाज। 82 किलोमीटर चलकर मुजफ्फरपुर पहुंचे कांवड़िया, फिजियोथेरेपी न्यूरोथेरेपी से मिल रही है राहत। भगवान शिव के प्रति 63 वर्षीय राजवाला की अनोखी आस्था, 5 दिन में हरिद्वार से दिल्ली पहुंचे। कंधे पर कांवड़ के साथ 21 मीटर गंगा जल के साथ पूरी की यात्रा, चेहरे पर थकान नहीं, जुबां पर हर हर महादेव। 45 वर्षीय दिव्यांग शिव भक्त सुनील की अनोखी कांवड़, पैर नहीं देते साथ लेकिन बुलंद है हौसले। 1 साल की नन्या आराध्या की पहली कांवड़, माता पिता के साथ गंगोत्री से दिल्ली तक का सफर। कांवड़ यात्रा में देखिए आस्था की अद्भुत तस्वीर, रंग बिरंगी कांवड़ लेकर बढ़ रहे हैं शिव भक्त। भागलपुर में बरगद के नीचे बोलबम की अनोखी टोली, पेड़ की छांव में सजे शिव भक्तों की टेला। कांवड़ियों को रास्ते में जहां मिल रहा है आसरा, वहां खुद चूल्हा जला रहे। बोलबम के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहा है कांवड़ियों का कारवां, बोलबम यात्रा में दिखी गजब के भाईचारे की मिसाल। अन्न का कण और आनंद का क्षण बोलबम के रास्ते में भी दिखा। भक्ति के रंग में रंगा नजर आया पूरा माहौल, महिला और पुरुष भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बाबा से मांगी पेपर लीक ना होने की मन्नत। मध्यपुर शेखावटी में पहुंची झुंझुनू की लोहार गल की कांवड़, पवित्र जल लेकर पहुंचा शिव भक्तों का जत्था। लोहार गल से जल लेकर फतेहपुर शेखावटी पहुंची महिला कांवड़िया। कांवड़ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है, शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। अबीर गुलाल के साथ आगे बढ़ रहा है कांवड़ियों का जत्था, बम बम बोले के जयकारे। लोहार गल के गौमुख से शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा, भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। सहारनपुर में 121 फीट की तिरंगा कांवड़, भोले की भक्ति के साथ देशभक्ति का संदेश। युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश, हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना किए कांवड़। सहारनपुर में देखिए अनोखी कांवड़, लड्डू गोपाल कांवड़ में विराजे, हरिद्वार से यमुनानगर तक पैदल सफर। कान्हाजी की कांवड़ बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, हरिद्वार में लड्डू गोपाल को कराया गया स्नान, वॉकर में बैठाकर लाए गए। हापुड़ में देखिए मोदी योगी वाली कांवड़, शिव भक्तों के हाथों में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ। 26 साल के अंकुर नंदी की अनोखी भक्ति, माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन्नत, 35 किलो की कांवड़ लेकर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा से पहुंचे शिव भक्त अंकुर नंदी, कांवड़ में घुंघरू और डमरू का खास संगम। लगातार 3 साल से बोलबम यात्रा कर रहे हैं अंकुर, हर साल बढ़ाते हैं अपनी कांवड़ का वजन। मुजफ्फरपुर में 74 साल की कृष्णा, बम की अटूट आस्था, पैरों में तकलीफ होने के बावजूद 43 साल से बाबा बैद्यनाथ की यात्रा जारी है। 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर रवाना, बोलबम के जयकारों के बीच बढ़ रहे हैं कदम। शिवालयों में उमड़े कांवड़िए, बाबा का किया गया जलाभिषेक। मुंगेर में गोटों के पल पर बाबा धाम की यात्रा पर निकला शिवभक्त, 108 किलो की मूर्ति कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं शिवभक्त। फरीदाबाद में भी दिख रहा जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया अनोखा शिवभक्त, प्रेमानंद महाराज के लिए कर रहा है दंडवत कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान ना दिखा नन्हे शिवभक्तों का हौसला, स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहे हैं नन्हे कांवड़िए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शिवभक्तों ने निकाली अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से बुलडोजर पर लेकर आए हैं पवित्र गंगा जल। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में उमड़ रही है कांवड़ियों की भारी भीड़, बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे। सहारनपुर में कांवड़ियों की सेवा करने में जुटे बीजेपी के नगर विधायक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के पाली जिले के सादड़ी में 1,51,000 रुद्राक्ष से बना अनोखा शिवलिंग भक्तों के लिए बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। नागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दौरान भक्त विशेष अनुष्ठान के साथ रुद्राक्ष शिवलिंग कर रहे हैं दर्शन। सादड़ी में शिव चिंतामणि अनुष्ठान में रोजाना करीब 4500 पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद नंदी में किया जाएगा विसर्जन। अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सावन झूला मेले को लेकर बड़ी हलचल, सावन झूला मेला को लेकर प्रशासन अलर्ट। झूलनोत्सव से पहले बढ़ी श्रद्धालुओं की आमद, सावन शुक्ल तृतीया से शुरू होगा झूलनोत्सव। रामनगरी में आस्था और भक्ति का सैलाब, सरयू स्नान के बाद हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सेवा की जगह आश्रम में हवन पूजन, चित्रगुप्त पीठ पर साधु संतों ने पूजा अर्चना की। शंखनाद और जयकारों की गूंज, मंच से पोस्टर भी किया गया लॉन्च। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जमकर सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन से मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया, खिलाड़ियों के चेहरे खिले। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा करके संदेश दिया, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा
3: माता की।
2: प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स पदक वीरों में दिखा जबरदस्त उत्साह, पैरा एथलीट्स भी दिखे काफी उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू बोली, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्साहित। रक्षाबंधन से पहले पाली डाकघर से शुरू की गई खास पहल, राखी से रक्षा अभियान की हो गई शुरुआत। बहनों के संदेश भी पहुंचेंगे सैनिक भाइयों तक, डाकघर में बनाया गया अलग अलग काउंटर। मंगलुरु के उल्लास में अनोखा मानसून का उत्सव, कीचड़ में मस्ती करते हुए नजर आए लोग। कीचड़ के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, पुरुषों की उल्टी दौड़ ने खींचा सभी का ध्यान। मानसून उत्सव में देखा रंग बिरंगा माहौल, लोकगीत नृत्य और पारंपरिक खेलों का अद्भुत संगम। पुडुचेरी में हर घर तिरंगा यात्रा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए, देशभक्ति के नारों से गुंजायमान हुआ इलाका। चेन्नई में बीजेपी की तिरंगा यात्रा, 300 से ज्यादा लोग शामिल हुए, तिरंगे के साथ देशभक्ति का जोश। भिलाई में आदिवासियों की विशाल रैली, 5,000 से ज्यादा लोग रैली में शामिल हुए, जल जंगल जमीन बचाने का संदेश। विश्व आदिवासी दिवस पर उमड़ा जनसैलाब, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग, नृत्य और नारों की गूंज। भोपाल को मिली 4 नई फ्लाइट्स, राजा भोज एयरपोर्ट से नई उड़ानों की हो गई शुरुआत, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने शुभारंभ किया। चीन में आयोजित विश्व युवा ट्रांस नेशनल चैंपियनशिप से भारत के लिए शानदार खबर, साकनिक और सयंतन ने ब्रिज में जीता स्वर्ण। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के नाम एक और बड़ा मेडल, हाई जंप में बसंत ने जीता सिल्वर। राजस्थान के बसंत ने इससे पहले एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप में भी जीता था गोल्ड मेडल, अब तक भारत के हिस्से में 2 सिल्वर। अश्मिता चाहिला ने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल भी जीता। अश्मिता ने चीन की हान कियान शी को हराकर जीता खिताब, भारतीय शटलर अश्मिता नहीं बन गई अब कोरियन मास्टर्स चैंपियन। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर लाल किले और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा तैनात, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 15,000 से ज्यादा जवान तैनात। लाल किले और आसपास के इलाके में लगाए जा रहे 1,000 से ज्यादा CCTV कैमरे, AI इंटीग्रेटेड कैमरों से रखी जा रही है नजर। 15 अगस्त समारोह में सुरक्षा एजेंसियां जमीन के साथ साथ आसमान से भी होने वाले खतरों पर रखेगी नजर, ड्रोन से खतरे से निपटने के लिए तैयारियां। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर 25,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा और निगरानी के लिए FRS और बायोमेट्रिक सिस्टम का भी इस्तेमाल। लाल किले के आसपास किसी भी असामाजिक तत्व की एंट्री रोकने के लिए अभिज्ञान ऐप का होगा इस्तेमाल। दिल्ली में सिंदूर आर्मी महा ब्लड डोनेशन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी पुलिस, सही समय पर मेडिकल उपचार देकर बचाई जान। रांची में जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है आदिवासी दिवस, कला संस्कृति का कलाकारों ने परिचय दिया। दिल्ली मेट्रो ने 2026 में अब तक 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी का दावा पूरा किया। DMRC के अनुसार मेट्रो में रोजाना औसतन 64 लाख से ज्यादा यात्री कर रहे हैं ट्रैवलिंग। कीव में गूंजा यूक्रेनी संगीत, इंद्रधनुषी आसमान के नीचे सजा संगीत समारोह। युद्ध के बीच मना खुशियों का उत्सव, संगीत और संस्कृति से मिली राहत। कीव में देखी यूक्रेनी सांस्कृतिक ताकत, लोग तमाम वेशभूषाओं में नजर आए। युद्ध के बीच संगीत का सहारा, मंच से देखी यूक्रेन की एकजुटता। संगीत और नृत्य से गुलजार हुआ समारोह, यूक्रेनी सैनिक भी बने जश्न का हिस्सा। बोस्निया में गोताखोरों का खतरनाक स्टंट, प्लेवा झरने से लगाई रोमांचक छलांग। 72 फीट ऊंचे झरने से छलांग लगा रहे हैं गोताखोर, जातसे में हुई इंटरनेशनल वाटरफॉल जंप। बोस्निया में रोमांच का तड़का, 22 मीटर ऊंचे झरने से कूदे क्लिफ डाइवर। झरने से छलांग लगाने के दौरान हवा में कर्तव्य लगाते हुए नजर आए गोताखोर क्लिफ डाइवर्स ने दिखाई गजब की तकनीक। झरने के पास जुटी दर्शकों की भारी भीड़, पानी में उतरते ही खून जुटी तालियां। गायिका विटनी भी बनी बाबी सिग्नेचर सीरीज का हिस्सा, मेटल ने म्यूजिक वीडियो वाले लुक में लॉन्च किया। डॉल को रंग बिरंगे ईयर रिंग्स और हील्स के साथ माइक्रोफोन स्टैंड भी सजाया। अटलांटा में पांचवे लेगेसी ऑफ लव गाला में डॉल का हुआ नावरा। ब्रिस्टल में भव्य इंटरनेशनल बैलून फिएस्टा का आयोजन किया गया, सैकड़ों फीट ऊंचाई पर रंग बिरंगे बैलून्स नजर आए। ब्रिस्टल में आयोजित फिएस्टा में 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून हुए शामिल। चीन के सिचुआन प्रांत में टॉर्च फेस्टिवल के दौरान लाखों लोगों ने मनाया जश्न, हजारों मशालों और 86 अलामों के सहारे एवेन्यू जगमग हुआ। लगभग 3 किलोमीटर लंबे हांगथियान एवेन्यू पर लोगों ने एक साथ जश्न मनाया। टॉर्च फेस्टिवल में उमड़ा सैलानियों का हुजूम, पारंपरिक आयोजनों में अलग अलग तरीके से जातीय समुदाय के लोगों ने शिरकत की। टॉर्च फेस्टिवल चीन की ये जातीय समुदाय का पारंपरिक त्यौहार है। टॉर्च फेस्टिवल 19 जुलाई को हुआ था शुरू, पूरे आयोजन में संस्कृति और पर्यटन से जुड़े कई खास कार्यक्रम हुए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। देखिए आसमान से बरसते फूल, हाथों में कांवड़, माथे पर भस्म और जुबां पर हर हर महादेव के जयकारे। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक, इसके तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और उसका स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। गाजियाबाद हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, या फिर सहारनपुर, हापुड़, या हर जगह अगर आप देखेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, जिससे कांवड़ियों का उत्साह दोगुना हो जाता है। कई जगह तो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लेते हुए नजर आए, इससे पूरा माहौल शिवमय नजर आया। यही नहीं, आपको बता दें कांवड़ियों के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, पेयजल और शौचालय समेत आवश्यक सुविधाओं से कांवड़ियों में खुशी और संतोष साफ नजर आ रहा है। कांवड़ के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप, अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम 10 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांवड़ यात्रा के दौरान नन्हे शिव भक्तों की भक्ति और हौसला हर किसी को हैरान कर रहा है। दो छोटे भाई बहन स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद के लिए निकले। खास बात इसमें यह रही कि दोनों बच्चे दूसरी बार स्केटिंग से कांवड़ लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं आपको। देखिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर 16 शिव भक्त बुलडोजर कांवड़ लेकर चल रहे हैं। शिव भक्तों का ये कहना है कि देखिए ये उनकी चौथी बुलडोजर कांवड़ है और वो एक मनोकामना के लिए बुलडोजर कांवड़ लेकर चलते हैं। तीसरी तस्वीर सहारनपुर से निकल कर आ रही है, जहां पर सहारनपुर में नोटों से सजी हुई अनोखी कांवड़ लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। 500, 200, 100, 50 और 10 रुपए के नोट से ये सुसज्जित है। एक कांवड़ पर करीब 270,000 रुपए और दूसरी पर 50,000 रुपए के नोट लगाए गए हैं। और नोटों से सजी इस कांवड़ को देखने के लिए रास्ते में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस कांवड़ को पुलिस की बाकायदा सुरक्षा भी दी गई है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो हरिद्वार की है। सावन का दूसरा सोमवार कल है और मंगलवार को शिवरात्रि होने जा रही है, इसलिए हरिद्वार में कांवड़ियों का रेला उमड़ा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है, क्योंकि देखिए सभी को जल्दी है ताकि वो सोमवार या शिवरात्रि तक अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं, शिव जी का जलाभिषेक कर सकें। रामनगरी अयोध्या में भी इस सावन को लेकर जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। राम की नगरी आजकल शिव भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। गेरुआ वस्त्र पहने शिव भक्तों की भीड़ भारी है। और अब मिलिए कृष्ण बम से, जो 74 साल की उम्र में कांवड़ देकर बाबा धाम के लिए निकल पड़े हैं। और कृष्णा बम जो है, दोनों घुटनों में उनको परेशानी भी है, पैर में स्टील प्लेट लगे हुए हैं, लेकिन आस्था ऐसी है कि एक बार फिर से देवघर के लिए रवाना हो चुकी हैं। 1982 से वो हर साल सावन में कांवड़ लेकर देवघर जरूर जाती हैं। अब आस्था की अनोखी तस्वीर देखिए। अब एक शिव भक्त जो है घुटनों के बल चलते हुए देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करना चाहते हैं। 108 किलो के बाबा भूतनाथ की मूर्ति कंधे पर लेकर चल रहे हैं। सावन के पवित्र महीने में हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति कांवड़िए बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपने गंतव्य की तरफ लगातार रवाना है। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग

0: डॉग स्क्वाड आर्म पुलिसमैन की भी जबरदस्त तैनाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते 39 मेडल। देश भर में धूमधाम से जारी पवित्र कांवड़ यात्रा, मुरादाबाद में जटायु ड्रोन से शिव भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा, भंडारे की भी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की रौनक, भिलाई में दिखे सांस्कृतिक विरासत के रंग, जल जंगल और जमीन के संरक्षण का संदेश। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सोमवार को स्कूलों में छुट्टी।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार की, जो कि आने वाला है। पंडित जी से जानेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव जी को कौन से फूल और पत्तियां अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपको जीवन में बिना कारण के व्यर्थ का, बेवजह का अपयश मिल रहा है, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए। चंदन की सुगंध और जल अगर हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें तो किसी भी तरह के अपयश से आपकी रक्षा होगी।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 10 अगस्त 2026 यानी सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः काल

0: 8 बजे तक, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:26 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है?
0: जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार के बारे में, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर आप पूजा उपासना कैसे करेंगे। तो सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है? इस बार सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष की तिथि को साथ में लेकर आ रहा है, यानी त्रयोदशी तिथि के साथ आ रहा है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव हैं और हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी का महत्व अलग अलग है। ऐसा माना जाता है कि अगर त्रयोदशी पर कामदेव की पूजा की जाए तो मनचाहा और शीघ्र विवाह होता है। अब चूंकि एक तरफ त्रयोदशी है और साथ में सावन का सोमवार पड़ रहा है, इसलिए त्रयोदशी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। सावन के सोमवार पर उपवास रख करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए, और चूंकि त्रयोदशी की तिथि है इसीलिए शिव जी की पूजा प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के 24 पहले और 24 बाद के समय में करना चाहिए। तो सावन का दूसरा सोमवार प्रदोष के संयोग के साथ आ रहा है, और इसीलिए सावन का दूसरा सोमवार इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है।
1: और चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार के दिन सामान्य पूजा विधि क्या है।
0: तो सावन के दूसरे सोमवार की हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल कोशिश करिए 12 बजे के पहले स्नान करके सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। अगर महिला हैं तो पीला वस्त्र भी पहन सकती हैं। इसके बाद शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं और मंदिर में संभव हो तो मंदिर में बैठकर या भोग लगाने के बाद घर आएं और नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। 3 माला या 11 माला नमः शिवाय का जप करें। रात के समय अगर मध्य रात्रि में कर सकें 11 बजे से 1 बजे के बीच में, तो रात के समय भी शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं और शिव मंत्र का नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अगर आप कर सकें तो सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखिए, जलाहार और फलाहार ग्रहण करिएगा, नमक और अनाज का सेवन ना करें। कोशिश करें कि सावन के दूसरे सोमवार पर व्रत रखें, और अगर व्रत नहीं रख पाते, स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, तब आप केवल सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा और दोनों समय प्रातः काल और रात के समय में शिव जी की पूजा जरूर करिएगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेंगे पंडित जी से कि आपका सवाल क्या है आज। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका रहेगा
0: जी? आज का पहला प्रश्न अभिलाषा जी ने हमें लिखा है और अभिलाषा जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मई 1990, जन्म का समय रात में 8:35, जन्म स्थान है वाराणसी। अभिलाषा कह रही हैं कि मेरी नौकरी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अभिलाषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप इस साल के अक्टूबर के बाद नौकरी बदल पाएंगी, साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने के साथ आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आने वाला समय करियर के हिसाब से आपके लिए बेहतर है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करियर में बदलाव हो और करियर बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनिए। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल किसका लेने वाले हैं
0: जी। अगला प्रश्न कीर्ति ने हमें लिखा है और कीर्ति हमें मेल लिखती हैं हरिद्वार उत्तराखंड से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जुलाई 1993, जन्म का समय दोपहर में 3:47, जन्म स्थान है हरिद्वार। कीर्ति कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कीर्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। आने वाला समय आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है और वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिला जुला कर ठीक है। इतना जरूर मैं कहूंगा कि अक्टूबर 2026 तक चोट चपेट और दुर्घटनाओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पीला पुखराज लगभग 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब पंडित जी से जान लेंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरह के फूल और पत्तियां शिवजी को अर्पित की जाएं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों।
0: देखिए, सावन के दूसरे सोमवार पर आप अलग अलग तरह के फूल और पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं और अलग अलग तरह के फूल और पत्तियों को अर्पित करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो अलग अलग तरह के फूल और पत्तियों को कैसे अर्पित किया जाए? अगर आप शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करें तो मनचाही संतान की, योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करें शिवलिंग पर, कम से कम 3 या 9 बेलपत्र अर्पित करें तो इच्छा की पूर्ति होती है और आयु वृद्धि होती है, आयु की रक्षा होती है। अगर आप शिवलिंग पर जपा कुसुम यानी गुड़हल का फूल अर्पित करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होते हैं, मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से, झगड़े झंझट से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आप बेले का फूल शिवलिंग पर अर्पित करें तो सौभाग्यवती और सुशील पत्नी की प्राप्ति जीवन में होती है। अगर आप हर सिंगार के फूल अर्पित करें तो धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। छोटे छोटे हर सिंगार के फूल अपने हाथ में लेकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं सावन के सोमवार में तो धन और संपत्ति आपको मिलेगी। शमी के पौधों के जो पत्ते हैं जिनको शमी पत्र कहा जाता है, इनको अर्पित करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। याद रखिए, शिव जी की पूजा में केतकी और केवड़ा ये अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप शिव जी की पूजा में केतकी और केवड़ा अर्पित करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल होगी।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: तुला राशि, इस समय आपके लिए लाभकारी यात्रा हो सकती है। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार को किस मनोकामना के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए।
0: सावन का दूसरा सोमवार बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है। आप फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी कामना पूरी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सावन के दूसरे सोमवार पर किस मंत्र का जप करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए सावन के दूसरे सोमवार पर आप मंत्र पढ़िएगा, ओम हों जूं सह, ओम हों जूं सह। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहती हैं तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, आपको रोजगार में सफलता चाहिए, तो सावन के दूसरे सोमवार पर पढ़िएगा, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः। अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहे, तो सावन के दूसरे सोमवार पर मंत्र पढ़िएगा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर तरह का कल्याण चाहते हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, भक्ति का, भगवान की कृपा का वरदान चाहते हैं, तो सावन के दूसरे सोमवार पर अधिक से अधिक मंत्र पढ़िएगा, नमः शिवाय। मैं आपको बता दूं कि सावन के दूसरे सोमवार पर आप सुबह और शाम दोनों समय मंत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होगा सावन के दूसरे सोमवार पर मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप मंत्र का जप करें। कम से कम 11 माला अपने मंत्र का जप करें, रुद्राक्ष की माला से या अपनी अंगुलियों की सहायता से। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार की मध्य रात्रि को मंत्र जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी।
1: चलिए सावन के दूसरे सोमवार के बारे में और जानकारी पंडित जी से लें, उससे पहले जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, सर्दी जुखाम से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, परिवार में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर मेल करके आप पंडित जी तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेंगे?
0: जी, अगला प्रश्न मयूर गुप्ता जी ने हमें लिखा है और मयूर जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1991। जन्म का समय सुबह के 10:05। जन्म स्थान है मेरठ। मयूर कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ मिल करके अभी व्यापार करता हूँ और भविष्य में मैं मेरठ से निकल करके दिल्ली की तरफ सेटल होना चाहता हूँ। क्या मेरठ से निकलकर बाहर जाना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा कारोबार कैसा रहेगा? मयूर, आपकी कुंडली के हिसाब से मुख्यतः आपको मेरठ में अपने पिताजी के साथ ही व्यापार करना चाहिए। आपको दिल्ली की तरफ सेटल होने की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप ज़्यादा चाहें तो अपने काम का एक ब्रांच दिल्ली NCR में खोल सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन वैसे मेरठ में ही मुख्यतः रह करके अगर व्यापार करें तो आप तरक्की ज्यादा करेंगे। बेवजह की फिजूल खर्ची से आपको बचना है और पैसे के इन्वेस्टमेंट में हमेशा सावधानी रखनी है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के चौथे और आखिरी सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका होने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न नीरज जी ने हमें लिखा है और नीरज जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। 2 नवंबर 1986 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 6:55। जन्म स्थान है दिल्ली। नीरज कह रहे हैं कि 2 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार आरंभ किया है, लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, काम में दिक्कतें चल रही हैं, तो आगे मुझे अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए? नीरज, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप जो व्यापार कर रहे हैं उसको वाइंड अप करिए, उसको बंद करिए, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप व्यापार चलाएंगे उतना ही ज्यादा कर्जा आपके ऊपर बढ़ेगा। आप दोबारा से नौकरी की तरफ जाने का प्रयास करिए, आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। साल 2029 में मार्च के बाद दोबारा व्यापार के बारे में प्रयत्न करेंगे, लेकिन अभी व्यापार वाइंड अप कर दें और अभी नौकरी की तरफ चलें तो जिंदगी में थोड़ा सुधार होगा। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने, रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय करें तो चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे एक सावन के दूसरे सोमवार के बारे में, जो व्रत रखते हैं, क्या व्रत रखने से कोई विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसकी विशेषता क्या होती है?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोग सावन के सोमवार पर उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। खास तौर से जो अविवाहित कन्याएं हैं, बालिकाएं हैं, वो सावन के सोमवार पर जरूर उपवास रखती हैं ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके और योग्य वर की प्राप्ति उनको हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी बालक का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो सावन के दूसरे सोमवार या आगे आने वाले सोमवारों पर उपवास रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप सावन का उपवास तो रखिए सोमवार का, लेकिन मध्य रात्रि में जग करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करिए। कम से कम सावन के एक सोमवार पर भी अगर आप उपवास रख करके भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगे तो निसंदेह आपकी कामना पूरी होगी।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 10 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 10 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, संपत्ति और वाहन का लाभ मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो वर्ष बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में पंडित जी से जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या उपाय करने से, पूजा पाठ करने से, मंत्र जप करने से मृत्यु को टाला जा सकता है? देखिए, एक होता है मृत्यु का योग और दूसरी होती है मृत्यु। मृत्यु का योग टाला जा सकता है, लेकिन अगर किसी का समय पूरा हो गया है, मृत्यु का समय आ गया है, तो उसको किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता। इसीलिए उपाय करने पर तभी लाभ होता है जब मृत्यु का योग चल रहा हो। अगर मृत्यु का समय आ गया हो तो आप लाख उपाय कर लें, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता।
1: और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि 10 अगस्त 2026 यानी सोमवार का शुभ पहर क्या रहने वाला है।
0: दिनांक 10 अगस्त 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा।
1: और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की आपकी गुड लक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को भगवान शिव को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो। आज की गुड लक राशि है मेष। इनको शिव जी को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आज के लिए महा उपाय क्या रहने वाले हैं जिससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं परेशानियां हैं वो दूर हो सके।
0: जी, आज आपको बताते हैं महा उपाय में कि अगर आप सावन में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे। सावन में रोज सवेरे शिव जी को 9 बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद जल अर्पित करिए और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिए। सावन में जितने बार, जितने दिन आप ये उपाय करेंगे, आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा।
1: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी बढ़ा दी है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में तो खास जवानों को लगाया गया है बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है।

0: सावन के दूसरे सोमवार और सावन की शिवरात्रि सोमवार और मंगलवार को है, यानी लगातार दो दिन तक शिव भक्ति का उल्लास देखने को मिलने वाला है। ऐसे में हरिद्वार से दिल्ली आने वाली सड़क पर कांवड़ियों की भीड़ काफी बढ़ गई है, क्योंकि हर शिव भक्त ये चाहता है कि सोमवार और शिवरात्रि को भगवान शिव का जलाभिषेक करे। इसीलिए रास्तों पर शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। जैसे जैसे शिव भक्त कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा को लेकर पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई है। कांवड़ मार्ग पर संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाली जगहों की पहचान कर खास व्यवस्था की गई है। इन जगहों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवानों को तैनात किया गया है। ये जवान भीड़ के बीच लगातार निगरानी रख रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
1: पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और उसी तरह से इस पवित्र कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए या किसी तरह की घटना दुर्घटना करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कुछ राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के द्वारा कुछ न कुछ प्लान बनाया जाता रहता है, और जिसकी इंटेलिजेंस, रियल टाइम इंटेलिजेंस हम लोग को लगातार मिलती रहती है। तो इन्हीं इंटेलिजेंस पे काम करते हुए हम लोगों ने ना सिर्फ वहाँ पे BDDS की यूनिट्स, डॉग स्क्वाड्स की यूनिट्स लगातार चेकिंग के लिए लगाई है, ATS की यूनिट एक खड़ी करी, और हमारी खुद की जनपद पुलिस वहाँ पे हमने कई जगहों पे मोर्चे बना के और वहाँ पे राउंड द क्लॉक हमने आर्म्ड आदमी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है, जिसका सिर्फ एक काम है कि इस तरह के असामाजिक और राष्ट्र विरोधी अगर कहीं भी गतिविधि हमारे जो क्रिटिकल प्लेसेस है, जैसे शिव चौक, रामपुर तिराह, बागोवाली, इन जगहों के आसपास कोई भी इस तरह की जरूरत अगर करता है तो उसका जवाब जो है उसको पूरी तरह से बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि उसे उसका क्या जवाब देना है।
0: हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर करोड़ों शिव भक्त कांवड़िये मुजफ्फरनगर से होकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से मुजफ्फरनगर बेहद महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। दूसरा सोमवार और शिवरात्रि को लेकर इस इलाके में कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी चप्पे चप्पे पर बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। हापुड़ में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि कांवड़ियों को अपनी कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हापुड़ की DM कविता मीना और SP कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर जिले के शिव मंदिरों और ब्रिज घाटों पर कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की, जिसको देखकर श्रद्धालु में भी काफी उत्साह दिखाई दिया।
2: श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई तो उसमें प्रथम स्थल हमने चंदौली मंदिर लिया, बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। और उसके पश्चात सेकंड स्पॉट हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमेशा की तरह वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िये जल खा रहे थे और बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, ऊपर से कुछ वर्षा करते हुए हमको भी बहुत अच्छा लगा। पूरा भक्तिमय माहौल था और जो श्रद्धालु नीचे थे उनमें एक साथ की लहर दौड़।
3: हम लोगों ने दो जगह चंदौली मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर और घाट पे आज हम लोगों ने उस वर्षा की श्रद्धालुओं के ऊपर और बड़ा उत्साहजनक माहौल है। तो शिव भक्त उन्होंने खुले दिल से उस वर्षा का स्वागत किया है।
0: इसके अलावा हापुड़ की सीमाओं में कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सावन महीने को देखते हुए बांदा चित्रकूट मार्ग पर पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ रूट का निरीक्षण किया है। पेट्रोलिंग कर पुलिस टीम को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही प्रसिद्ध बाम्बेश्वर पर्वत पर विराजमान वामदेव शिव मंदिर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। झांसी मिर्जापुर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब नाथ धाम में सावन के दौरान उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए श्रावणी मेला को डिजिटल बनाया गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से श्रावणी मेला ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु घर बैठे बाबा गरीबनाथ मंदिर के गर्भगृह का लाइव दर्शन कर सकेंगे, साथ ही मंदिर और मेला क्षेत्र में भीड़ की स्थिति की लाइव जानकारी भी ले सकेंगे। इस ऐप के जरिए ठहराव स्थल, कांवड़िया शिविर भंडारा, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा शिविर की जानकारी भी हासिल हो सकेगी। फकुली से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक का रूट मैप भी ऐप पर उपलब्ध रहेगा। हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता, मुजफ्फरपुर से मणिदीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान, सीमा पर जवानों को बहनें राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया, जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ये वाटरप्रूफ है। सावन का पावन महीना चल रहा है, हरियाली से भरपूर इस महीने में प्रकृति के सुंदर रूप का उत्सव मनाने के लिए झूले झूलने की परंपरा है। और केवल इंसान ही नहीं बल्कि आपको बता दें भगवान भी इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, चाहे शिव पार्वती हों, श्री कृष्ण और राधा हों या फिर प्रभु श्री राम, इन सबकी गाथाओं में सावन के झूले का जिक्र जरूर मिलता है। और परंपरा के अनुसार अभी भी देश के कोने कोने में धार्मिक उत्सव के रूप में झूलनोत्सव मनाने की रीत है। इसी कड़ी में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी एक बार फिर से रामलला के झूलनोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। सावन के पावन महीने में यहाँ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का भव्य झूलोत्सव होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में हर साल श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि से श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन तक बेहद शानदार तरीके से झूलोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान रामलला फूलों से सजे स्वर्ण जड़ित हिंडोले यानी झूले पर विराजमान होते हैं और श्रद्धालुओं को उनके दिव्य दर्शन करने का अवसर मिलता है। माना जाता है कि झूलोत्सव की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। नया श्री राम मंदिर बनने के बाद इसे और भी शानदार तरीके से मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लिहाजा इस बार भी इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक में विचार विमर्श हुआ और अहम निर्णय लिए गए।
1: निर्णय उसमें यही हुआ कि भगवान जो राम लला हैं, उनका झूलनोत्सव अयोध्या की परंपरा के अनुसार विधि पूर्वक मनाया जाए। कुबेर टीला जहाँ वृक्ष भी है, भगवान दिव्य झूले में वहाँ पधार करके और सबके साथ वहाँ साजबाज से जाएंगे। उनका जो उत्सव है यानी गान बजान है वो परंपरागत अयोध्या की परंपरा से होगा।
0: अयोध्या की प्राचीन परंपरा के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर झूलोत्सव का शुभारंभ होगा। 15 अगस्त को संध्या काल में रामलला झूलोत्सव के लिए कुबेर टीला जाएंगे। इसके लिए मंदिर परिसर से पारंपरिक रूप से सजी धजी पालकी यात्रा निकलेगी। रामलला की पालकी उत्तरी द्वार से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के सामने से होते हुए परकोटे और परिसर का भ्रमण करते हुए प्राचीन कुबेर टीला पहुंचेगी। कुबेर टीला पर धार्मिक कार्यक्रम होगा, उसके बाद रामलला की पालकी वापस मंदिर परिसर पहुंचेगी। 15 से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को 2 से 3 घंटे विशेष झूलोत्सव और दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने इस बार झूलोत्सव कार्यक्रम के लिए खास व्यवस्था तय की है। उसके अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद ही झूलोत्सव शुरू हो जाएगा। भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ झूले पर विराजमान होंगे। झूलोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को दिन भर भगवान के दर्शन होंगे। दोपहर में भोग के समय कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद रहेंगे। इसके बाद दोबारा झूले पर दर्शन शुरू होंगे।
2: रामलला प्रातः कालीन श्रृंगार आरती के पश्चात जो सुबह में होती है, झूलन पर ही चारों भाई सहित विराजमान होंगे और वो भोग लगने तक मध्यान काल तक वही रहेंगे। भोग लगने के लिए पर्दा आएगा, वो झूलन पर भी पर्दा आ जाता है और फिर अंदर ठाकुर जी चले जाएंगे। भोग लगने के उपरांत फिर जब दर्शन की अवधि होती है मध्यान में, उसमें फिर झूलन पर ही रहेंगे। तो उससे आने वाले जो श्रद्धालुजन है जो सायंकालीन सत्र में नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी ठाकुर जी के झूलन उत्सव का दर्शन प्राप्त होगा।
0: बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था से सावन में अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अधिक समय तक झूलोत्सव के दर्शन का अवसर मिलेगा। खास बात ये भी है कि झूलोत्सव के दौरान रामलला को दिव्य पारंपरिक व्यंजनों का विशेष भोग लगाया जाएगा। रामलला को लगाने वाले भोग में मालपुआ, पूरी, खीर और सब्जी समेत कई पकवान शामिल होंगे। पूजा अर्चना और भोग की पूरी प्रक्रिया निर्धारित धार्मिक विधि विधान के अनुसार सम्पन्न होगी। इस बार झूलोत्सव के लिए रामलला के पुजारियों और अर्चकों की वेशभूषा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अर्चकों की पोशाक रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुसार रहेगी। वे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं। अर्चकों के केश और दाढ़ी को लेकर भी खास निर्देश दिए गए हैं। ये पंचकेश की परंपरा का पालन करेंगे, जिसमें बाल विशेष तरीके से रखे जाते हैं या फिर वे पूरी तरह केश विहीन रहेंगे। इसके साथ ही रामानंद परंपरा के अनुसार उन्हें तिलक भी धारण करना होगा। झूलोत्सव का आयोजन अयोध्या की प्राचीन धार्मिक परंपराओं के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, जबकि अयोध्या के साधु संतों और स्थानीय निवासियों के लिए नियमित दर्शन पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनके लिए प्रतिदिन या महीने में दर्शन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। वहीं संतों के विशेष दर्शन के लिए अयोध्या आने से कम एक दिन पहले सूचना देनी होगी। इसके बाद संतों को सम्मान पूर्वक रामलला के दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुनीस टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ बाकायदा एक रील भी डाली। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अन्य प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें प्रधानमंत्री ने ये कहा, देखिए कि जो खेलेगा वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल अपने नाम किए। भारत मेडल सूची में चौथे पायदान पर रहा।
4: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले।
5: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
3: तो आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
0: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहां इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत, संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर

0: बीच मेल जोल बढ़ाना था। वही अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहाँ भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देशभर में धूमधाम से जा रही है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होवित्जर तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होवित्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होवित्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होवित्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होवित्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होवित्जर को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होवित्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होवित्जर सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होवित्जर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेजी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स है उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 mm आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 MM होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है। पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है। इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की। पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रेडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रेडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, कि जैसे SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करे बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाई 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 एक मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30-60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
4: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा, खेलेगा। वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
5: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले।
6: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
4: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान। सीमा पर जवानों को बहनें राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया है। जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वाटरप्रूफ है। सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए, मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया। दर्द में भी गाया क्योंकि संगीत की खुशी सबसे अलग है।

0: बदल चुकी गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से। जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करे पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद्य में कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सद्गुरु है। कबीर के पद्य का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याणा स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरों एक गुपुत मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबही कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मी के अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणामूर्ति का। दक्षिणामूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित हैं। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 1,35,000 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है करीब 1,51,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। तो आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
2: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहां इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोच फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है, जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हरित की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिवभक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्ज़र तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्ज़र उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्ज़र की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है।

0: यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
1: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm हॉविट्जर को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई, ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका। और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे LOC के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
2: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
3: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्जर सिस्टम हासिल किया है।
0: LOC पर SH-15 होविट्जर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
1: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लैस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया है। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दाव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड वी लैप गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है, जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
1: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है, जिससे एक जगह फायर करके तुरंत जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है, और बहुत तेज़ी से फायर करता है, और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं, बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
1: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है, और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी कि फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है, और इसके जो काउंटर मेजर्स है उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
3: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है। इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरांवाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
3: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है। इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है, और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट, यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। एलओसी पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रेडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रेडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, कि जैसे SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर की गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपे 155 mm x 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको हॉविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है, जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है, और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा, खेलेगा। वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
6: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले।
7: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
5: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान। सीमा पर जवानों को बहनें राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया है। जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वाटरप्रूफ है। सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए, मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया। दर्द में भी गाया क्योंकि संगीत की खुशी सबसे अलग है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देशभर में धूमधाम से जा रही है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिवभक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप हैं अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्यम के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद्य में कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सद्गुरु है। कबीर के पद्य का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊं एक गुपुत मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह्य तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औधरदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मी के अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सर्जन पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र सृजन पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्त वत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: देखिए सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 135,000 पार्थिव शिव लिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है करीब 151,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
7: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजो की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भीड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहाँ भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा एआई तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान। लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देशभर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत। हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग। फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा। हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या। सावन झूला मेला में आस्था का मेला। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाहर डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।

0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे LOC के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
1: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
2: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: LOC पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
3: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं, इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे, पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
3: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
3: SH-15 SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड शूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है, जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है, और बहुत तेज़ी से फायर करता है, और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं, बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाओ और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
3: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है, और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूटर, यानी कि फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है, और इसके जो काउंटर मेजर्स है उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
2: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
2: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है, और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट, यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबन ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर की गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइट वेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 एक मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपे भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30-60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा। वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
6: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है सर, आप कुछ बोले।
7: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
5: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान। सीमा पर जवानों को बहने राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया है। जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वाटरप्रूफ है। सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया। दर्द में भी गाया क्योंकि संगीत की खुशी सबसे अलग है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देशभर में धूमधाम से जा रही है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से। जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद्य में कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सदगुरु है। कबीर के पद्य का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याणा स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरों एक गुपुत मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबही कहों कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मी के अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनीन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: देखिए, सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 1,35,000 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 1,51,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। तो आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
7: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसु प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसु, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत, संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजोउ की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है। दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम।

0: कांवड़ यात्रा हरिद्वार में डाक कावड़ की शुरुआत हरित की पैड़ी पर आस्था का मेला सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या सावन झूला मेला में आस्था का मेला श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाहर डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्सर सिस्टम हासिल किया है।

0: LOC पर SH-15 होविट्जर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
1: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं, इसको हमें काफी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बानी अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है कि भारत जब भी आज तेजी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लैस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर में उनकी पिटाई हुई, उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया है। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
1: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर माउंटेड है, जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है, और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
1: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है, और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूटर यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रेसिजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
2: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
2: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत ही उसकी लोकेशन पता करती है। 10 से 20 सेकंड में उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है। साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है, जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर्स से भी ज़्यादा तेज है, और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
6: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल PM सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले।
7: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
5: बात सावन की हो रही है तो अब बात करेंगे रक्षाबंधन की, क्योंकि बहनें जो हैं अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए भेजती हैं उनको, इसलिए डाक विभाग ने एक नई शुरुआत कर दी है। राजस्थान के पाली में पोस्ट ऑफिस में रक्षाबंधन पर्व के लिए देश के जवानों के लिए राखी के रक्षा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इसके जरिए डाकघर का उद्देश्य यही है कि देश के जवानों का सम्मान। सीमा पर जवानों को बहनें राखी के साथ सम्मान पत्र भेज सकती हैं। इसके लिए पोस्ट ऑफिस का सजाया सवारा गया है। जिस काउंटर पर यह व्यवस्था की गई है वहां पर ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ स्पेशल लिफाफा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये वाटरप्रूफ है। सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनू निगम की सर्जरी हो रही है और वो गाना गा रहे हैं। इसे सोनू निगम ने ही शेयर किया है। सोनू वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि देखिए मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे डॉक्टर नीलेश सतभाई और उनकी पूरी टीम के लिए अचानक एक छोटा सा परफॉर्मेंस दे दिया। दर्द में भी गाया क्योंकि संगीत की खुशी सबसे अलग।

0: जहां की रुख बदल चुकी,
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्यम के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा, सहज समाधि सिखावे। इस पद्य में कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सदगुरु है। कबीर के पद्य का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊं एक गुपुत मत सबही कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरो एक गुपुत मत सबही कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुप्त मत सबही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़रदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो सर्जन पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान है। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र सृजन पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणा मूर्ति का। दक्षिणा मूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्त वत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देखिए, सावन का महीना, देश भर में कांवड़ यात्राएं और शिव आराधना का दौर लगातार जारी है, लेकिन राजस्थान के पाली जिले में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है, जहां पर नागेश्वर महादेव मंदिर में देश का पहला रुद्राक्ष से बना शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं पर पूरे सावन में करीब 1,35,000 पार्थिव शिवलिंगों का विधि विधान के साथ पूजन किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों के नीचे हरियाली और प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिव का अनोखा अनुष्ठान किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि करीब 1,51,000 रुद्राक्ष से तैयार इस शिवलिंग को विशेष रूप से दमन से मंगवाया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से जुड़ा पवित्र माना जाता है, ऐसे में श्रद्धालु जो है इस शिवलिंग के दर्शन को लेकर विशेष मान्यता रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर सावन भर शिव चिंतामणि अनुष्ठान भी लगातार चल रहा है। अनुष्ठान के दौरान रोजाना विशेष मिट्टी से करीब 4,500 पार्थिव शिवलिंग तैयार किए जाते हैं। तो आपको दिखा दें उत्सव की कुछ और खास तस्वीरें। उत्सव जो है दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं, चीन से लेकर ब्रिटेन तक अलग अलग तरीके के उत्सव मनाए जा रहे हैं। आप देखिए यह रिपोर्ट और लीजिए उत्सव का आनंद।
3: पारंपरिक लोक संस्कृति की ये अनूठी छटा सबको मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये तस्वीरें मंगोलिया के नदाब फेस्टिवल की है। चीन के गांसू प्रांत के सूबई इलाके में धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया। चीन के गांसू, किंघाई, जिनजियांग और इनर मंगोलिया इलाके में रहने वाले मंगोलियाई मूल के लोगों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग लिया और अपनी लोक संस्कृति के खास रंगों की नुमाइश की। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी लड़कियां और युवा लड़कों ने इस दौरान अपनी परफॉर्मेंस से शानदार समा बांध दिया। आकर्षक संगीत और नृत्य से भरपूर इस उत्सव में मंगोलियाई लोक संस्कृति के अनूठे रंग देखने को मिले। मंगोलियाई भाषा में नदाम का अर्थ होता है खेल कूद और मनोरंजन। इस इलाके के बाशिंदों के लिए अपने रोजमर्रा के कामकाज के बाद वक्त गुजारने का शानदार जरिया रहा है। चीन में मंगोलियाई मूल के लोगों ने अपनी इस सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया, इसीलिए हर साल यहाँ इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में हुए लोक उत्सव की शानदार झलक। ये तस्वीरें हुनान के यांगजी गांव की है। इस इलाके के 48 गांव के लोक कलाकारों ने यहां पर एक साथ जमा होकर पारंपरिक लोक गीत संगीत और नृत्य से माहौल मनमोहक बना दिया। हुनान और गिजोंग की सीमा पर बसे इस इलाके को बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर इस उत्सव की परंपरा 10वीं सदी से जारी है। पुराने जमाने में इसका मकसद अलग अलग गांवों से यहाँ कारोबार के लिए आने वाले लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाना था। वहीं अब स्थानीय लोग अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसका आयोजन करते हैं। एक अनोखे लोक उत्सव की परंपरा चीन के सिचुआन प्रांत में भी है। दक्षिण पश्चिमी चीन के हुईली में यी टोर्च फेस्टिवल के मौके पर भेड़ों की भिड़ंत करवाई जाती है। दूर दूर से आए लोग यहां भेड़ों की लड़ाई देखने के लिए जमा होते हैं और अपनी भेड़ों को इसमें लड़ाते भी हैं। भेड़े इस इलाके के लोगों के जीवन यापन का एक हिस्सा रही है। अब इस उत्सव के जरिए लोग अपनी पुरानी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। इसका मकसद जीवन में संघर्ष और कड़ी मेहनत के प्रति जुनून को कायम रखना है।
4: आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। आगे।
3: दुनिया के कोने कोने में उत्सव मनाया जा रहा है। जमीन से आसमान तक जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें इंग्लैंड के ब्रिस्टल की है, जहां दुनिया भर से लोग सतरंगी और अतरंगी गुब्बारों के साथ सैर सपाटे के लिए जमा हुए हैं। ब्रिस्टल में 3 दिन का इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल चल रहा है। इसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स की उड़ान के शानदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इस बैलून उत्सव का आयोजन 1989 से होता आ रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए ये अपना शौक पूरा करने का एक शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने बनाई रील, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। CWG में भारत ने जीते थे 39 मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले की अभेद सुरक्षा, AI तकनीक से होगी संदिग्धों की पहचान, लाल किले के भीतर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम। देश भर में धूमधाम से जारी है पवित्र कांवड़ यात्रा, हरिद्वार में डाक कांवड़ की शुरुआत, हर एक की पैड़ी पर आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में दिख रहे हैं कांवड़ के अनोखे रंग, फतेहपुर में शिव भक्तों की विशेष पूजा, हापुड़ में मोदी योगी के पोस्टर वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सावन झूला मेला में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए वो मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे पाकिस्तान को खड़ा।

0: कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
1: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
0: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
1: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दाव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
0: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
1: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
0: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेजी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है। यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है। इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
2: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है। इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
2: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र-1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है, जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी बाकायदा शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वो गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और बाकी प्लेयर्स के साथ नजर आए। इनमें देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा जो खेलेगा, खेलेगा। वो खिलेगा। आपको बता दें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल 39 मेडल इस बार अपने नाम किए। भारत मेडल टैली में इस बार चौथे पायदान पर रहा।
9: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले।
10: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
3: जय। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली